0: इसी के साथ स्वर रंजनी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के

0: निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Navindra Chandra Ramgulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. A sessions court in Bhiwandi has remanded the three accused arrested in Maharashtra teacher eligibility test paper leak case to police custody till the 6th of July. Investigators suspect the involvement of an interstate examination racket. Bhiwandi police told the court that the accused had allegedly travelled from Delhi to Bhiwandi to sell the leaked question paper for 1 crore 50 lakh rupees. Investigators had sought 10 days of police custody to trace the source of the leaked paper, examine financial transactions, find out whether the paper was sold elsewhere in Maharashtra, and identify other members of the racket. Police officials said the probe has revealed the involvement of an interstate and national level network. The anti-corruption branch Delhi has arrested the then Director General Health Services, Dr. Vatsala Agarwal, and Deputy Controller of Accounts in the Central Procurement Agency, Neera Chopra, in the case related to alleged large-scale irregularities in procurement of medicines, surgical consumables and medical equipment. The agency informed that the allegations pertain to procurement of portable X-ray machines, medicines and other medical items at allegedly inflated rates through manipulated procurement processes. The United States and Iran have agreed to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. The move is aimed at resolving their dispute over the Strait of Hormuz after days of military escalation threatened to derail the fragile ceasefire. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephens Eustaquio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. And Indian men's hockey team displayed remarkable defensive resilience to defeat England 3-2 in the penalty shootout after a hard-fought nil draw in the reverse fixture of the FIH Hockey Pro League in London yesterday. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर. प्रातः के 6:10 और 18 सेकंड हुए हैं. अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना.

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है चिंतन राहुल सांकृत्यायन के जीवन से प्रसंग।

0: राहुल सांकृत्यायन एक बार रेल से तत्कालीन कलकत्ता यानी कोलकाता जा रहे थे। रेल में चढ़ते ही उन्हें उनके बचपन के एक मित्र मिल गए। दुआ सलाम के बाद उनके मित्र ने पूछा, कलकत्ता में कोई खास काम है? नहीं, बस यूं ही, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। नहीं, कुछ तो काम होगा? दोस्त ने फिर पूछा। अरे भाई, कुछ काम नहीं है, बस काफी दिन से कलकत्ता नहीं जा पाया था, सो इच्छा हो गई। दोस्त मन ही मन ये सोचकर चुप हो गया कि कोई बहुत बड़ा काम है जो मुझसे छुपाना चाहते हैं। चलते चलते अचानक रेल बीच जंगल में रुक गई और काफी देर तक रुकी रही। राहुल सांकृत्यायन और उनके दोस्त रेल से उतरकर रेल चालक के पास गए और उनसे रेल रुकने का कारण पूछा, तो पता चला कि रास्ते में पटरी में कुछ खराबी आ गई। ये भी पता चला कि अभी कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। चलो तब तक इस पास वाले गांव तक होकर आते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने अपने मित्र से कहा। क्यों, क्या करेंगे? उनका दोस्त बोला। अरे भाई, तब तक यहां भी क्या करेंगे? ना, मुझे नहीं जाना, दोस्त ने कहा। राहुल सांकृत्यायन अकेले ही उस गांव की ओर चल दिए। ठीक 2 घंटे बाद वापस आए तो मित्र ने पूछा, क्या देखा है गांव में? कुछ भी कहो दोस्त, सारे गांव एक से नहीं होते, सांकृत्यायन जी बस इतना कहकर चुप हो गए। हैरान परेशान उनका दोस्त फिर रेल चालक के पास गया और खबर लाया कि पटरी ठीक होने में अभी उतनी ही देर और लग सकती है। चलो तब तक एक और गांव में होकर आता हूँ। इस बार दोस्त से इतना कहकर सांकृत्यायन जी दूसरी दिशा की ओर चल दिए। करीब आधा घंटे के बाद रेल अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुकी थी। दोस्त खिड़की से दूर तक राहुल सांकृत्यायन को निहारे जा रहा था। इस बार सांकृत्यायन जी वक्त से बहुत पीछे रह गए थे। दोस्त ने उनका बैग देखा तो पाया 3-4 जोड़ी कपड़े और एक डायरी उसमें रखी थी। उसमें 2 दिन पूर्व के पुणे यात्रा के कुछ संस्मरण लिखे थे। रेल सरपट भागी जा रही थी। दोस्त बार बार उनके संस्मरण पढ़े जा रहा था। 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के 15 गांव में जन्मे राहुल सांकृत्यायन जब 3री कक्षा में पहुंचे तो उर्दू की पाठ्य पुस्तक में एक शेर पढ़ने को मिला। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। शायद यहीं से उनके बाल मन में कोई बात घर कर गई और पूरा जीवन घुमक्कड़ी में बिता दिया। राहुल सांकृत्यायन को नियमित शिक्षा का अवसर प्राप्त न हो सका, पर स्वाध्याय से उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास, संस्कृत, वेद, दर्शन और विश्व की अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बाल्यकाल से ही भ्रमण के लिए निकले राहुल जी जीवन भर कहीं भी जमकर नहीं रह सके। देश में ही नहीं, विदेशों में नेपाल, तिब्बत, लंका, रूस, इंग्लैंड, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, ईरान और चीन में इतना घूमे कि कई परिंदे भी इनकी उड़ान के आगे नतमस्तक थे। श्रीलंका में 19 महीने, तिब्बत में 1.25 बरस और नेपाल में लंबे समय तक अज्ञातवास में रहकर राहुल सांकृत्यायन ने साहित्य को अनगिनत अमिट रचनाएं दी।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड से बालकांड भाग 101।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपरता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्रीराम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे।

अभी आप श्री रामचरित मानस गान से बालकांड भाग 101 सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिंद महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च

0: सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजोन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मॉरिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मॉरिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षी अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart, Dr. Navin Chandra Ramgulam, in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the Special Economic Package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रभाकर नारायण पाठक के गाए हुए भजन।

अभी आप कार्यक्रम संगीतिका सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

हेलो दोस्तों, गीतों भरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त निधि वर्मा। दोस्तों, आज हम 30 मिनट के लिए, जी हां, आज हम 30 मिनट के लिए टाइम मशीन में बैठकर 90s में वापस चल रहे हैं। दोस्तों, वो ज़माना याद है ना, जब प्यार का मतलब था लेटर लिखना। जी हाँ, लास्ट बेंच पर बैठकर उसका नाम लिखना और दोस्तों से प्रपोज करवाना। उस समय माना कि मोबाइल नहीं था, पर उस वक्त में दिल के जो कनेक्शन हुआ करते थे ना, वो फुल सिग्नल वाले आते थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उसी दौर के सबसे आइकॉनिक गाने से, जो गाना सुनते ही शाहरुख और काजोल आंखों के सामने आ जाते हैं।

क्या बात है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये गाना सुनते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना। 90s के दिनों में कॉलेज क्रश का मतलब ही कुछ और था। कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की बेंच और उसकी एक छलक के लिए दो दो घंटे वेट करना, है ना, उसे प्रपोज करना। अगर उसको प्रपोज करना हुआ करता था ना, तो हम लोग सीधा दोस्तों को आगे

कर दिया करते थे, और अगर धोखे से उसकी हाँ हो जाती थी तो लगता था कि सारी दुनिया ही जीत ली हो। उस कॉलेज वाले पहले नशे के लिए ये एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

पहला नशा पहला खुमार, हाय आमिर खान साइकिल पर कौन नहीं दीवाना हुआ था इस गाने का। कॉलेज के बाद दोस्ती का जमाना आया, गोवा की ट्रिप हो और वो भी बिना प्लान के और दोस्तों के साथ, और साथ में थोड़ा सा प्यार।

0: दोस्तों अब बात करते हैं हम दिल्ली की बारिश की। जी हाँ, 90s में दिल्ली में बारिश हो और आप खिड़की के पास खड़े ना हो, ये हो ही नहीं सकता। 90s में बारिश का मतलब था उसका वेट करना और दिल बस यही कहता था आज वो आएगी, उसी का इंतज़ार वाले मूड के लिए एक और सॉन्ग।
1: तनक दिन तुम तनक दिन तुम तनक दिन।

चलिए अब चलते हैं उस दौर में जब दोस्त ही प्यार बन जाता था, और राहुल और अंजलि हर कॉलेज की कहानी।

कुछ कुछ होता है राहुल और अंजलि। अंजलि वाली दोस्ती से प्यार तक का सफर सबसे खूबसूरत होता है ना। बोलने में देर लगती है पर नज़रों से सब कुछ कह देते थे, और जब बात शादी तक पहुंच जाती थी तो सीन ही अलग हो जाता था ना। करण अर्जुन वाली फैमिली, ढोल नगाड़े और ये गाना।

दोस्तों 30 मिनट का सफर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 90s का प्यार सच में खास हुआ करता था, ना स्टेटस था ना रील्स, बस दिल से दिल तक। प्रोग्राम में अपना साथ बनाए रखने के लिए शुक्रिया, इसी वादे के साथ कि जल्दी होगी आपसे नए टॉपिक पे मुलाकात। तब तक के लिए गीतों भरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम से अपनी दोस्त निधि वर्मा को दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि।

0: भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
4: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
5: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
6: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
7: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने

0: सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honour, also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Naveen Chandra Ramgoolam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। भारत के महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर INS तरकश और INS अक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशल्स के आवाम को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरक तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहर हिंद खित्ते में एक अहम समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरक अहद का भी इरादा होता है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान मौजूदा तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत की जानिब से दिए गए खसूसी मुआशी पैकेज के निफाज में हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी के तहत भारत मॉरिशस की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत से इत्तेफाक किया और आलमी खित्ते जनूब के तई अपने मुश्तरक अहद से भी इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सेशल्स का माहौलियाती तहफ्फुज़ और मुस्तकिल तरक्की के मैदान में आला तरीन क़यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइज़न अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमीनी के हाथों दिया गया है, जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तसव्वुर का एतराफ़ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहिक हो गया था और आबनए हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। ये ऐलान आबनए हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने तजारती जहाज़ों पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमले करने से बाज रहेंगे और मुजाकरात के दौरान इन जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त जारी रहेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत व मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अदा करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू और कश्मीर, शिमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनक्किद की गई थी। गुजरात के वडोदरा शहर में आज GSFC यूनिवर्सिटी में 4th दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसका उनवान है रीजनल एस्पिरेशंस ग्लोबल एम्बिशन। मरकजी वुजरा राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वुजरा और आलमी सिफारतकार इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती गुजरात के खित्ते में सनअती तरक्की की रफ्तार तेज करना है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज्यादा सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें जापान, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूक्रेन और रवांडा समेत शराकत दार मुल्कों के 151 माहरीन और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मरकजी गुजरात की इकतसादी तरक्की पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के लिए तैयार शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, जिनमें सेमी कंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, माहौलियात के लिए साजगार हाइड्रोजन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ज़राअत, खला, दिफा और मसनू जहानत के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 150 से ज्यादा स्टॉल्स पर

0: मुश्तमिल इस बड़ी नुमाइश में इलाकाई MSMEs, तरक्की याफ्ता टेक स्टार्टअप्स और कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमूल और GSFC वगैरह हिस्सा लेंगी। वडोदरा से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से निश्र किया जा रहा है। भिवंडी में एक सेशंस अदालत ने उन तीन मुलजिमों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है जिन्हें महाराष्ट्र टीचर अहलियत इम्तिहान टेट के पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशकारों को शक है कि ये लोग इम्तिहान के बैन रियासती रैकेट में मुलव्वस हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
2: भिवंडी पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन इफ्शा किए गए TET सवालनामे को 1,50,00,000 रुपए में बेचने के लिए दिल्ली से भिवंडी गए थे। ये पेपर असल में कहां से इफ्शा हुआ, तफ्तीशकारों ने यह जानने के लिए इन लोगों को 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में तलब किया है। पुलिस इस सिलसिले में माली लेन देन के बारे में जानना चाहती है और ये जानना चाहती है कि आया ये पेपर महाराष्ट्र में किसी और जगह भी फरोख्त किया गया है। पुलिस रैकेट के दीगर अरकान की भी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अफसरान ने बताया कि अब वो इस सिलसिले में दो मफरूर मुलजिमीन को तलाश कर रहे हैं। TET इम्तिहान इतवार 28 जून को होना था लेकिन इस केस की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। इस वाक़े के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते को एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है। मुंबई से शैलजा तिवाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: ओडिशा में आज सुबह लाखों की तादाद में अकीदतमंद पुरी पहुंचे। आज श्री जगन्नाथ मंदिर में पवित्र देव स्नान यात्रा या स्नान यात्रा रिवायती शानो शौकत के साथ मुनक्किद की जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
0: भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र स्नान यात्रा में शामिल होने के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में यकजा हुई। सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक तीनों देवताओं को रस्मी तौर पर स्नान बेड़ी तक लाया गया जहां वैदिक मंत्रों के जाप, शंखों की आवाज और भजनों के साथ उन्हें स्नान कराया जाएगा। मस्कूरा त्यौहार देव स्नान पूर्णिमा के पवित्र मौके पर मनाया जाता है और सालाना रथ यात्रा से कबल इन तीनों देवताओं के दर्शन किए जाते हैं। अजीमुशान रथ यात्रा आइंदा महीने की 16 तारीख से शुरू होगी। इस दौरान सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज सिक्किम और मगरबी बंगाल के सैली हिमालयाई खित्ते में बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान जुनूबी मगरबी मानसून की मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, आसाम, मेघालय, केरला और माहे में आइंदा 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। आसाम के धेमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आरजी तौर पर रुकावट आ गई है। समझा जाता है कि ये रुकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तौदे खिसकने की वजह से आई है। खित्ते में तौदे खिसकने का ये हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।
0: धेमाजी जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की है और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहां जमा हो गया है अगर उसे आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है। यहां दरिया, झरनों, दलदली जमीनों, पानी के जखीरों और दीगर नशेबी इलाकों के पास रहने वालों से कहा गया है कि वो चौकन्ना रहें। कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त से मुतालिक जिला अथॉरिटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें, मकामी हुक्काम के साथ तआवुन करें और अगर ज़रूरी हो तो महफूज तर जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं और यहाँ पानी कौमी शाहरा नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था जिसके बाद मस्कूरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमरीका

0: के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराहे रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नशर करेगा। ये मुजाकिरा MSME की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफाई अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि बहरुल काहिल की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम माहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शहसुर्खी है, पीएम मोदी को सेशेल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। रोजनामा इनकलाब ने प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान महफूज और आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ अहम बैन अलावामी खबरें इस तरह हैं, जंगबंदी माहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी, ईरान अमरीका फिर आमने सामने, कशीदगी में इजाफा, साबिक वजीर आजम शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का ऐलान, इबोला वायरस की वजह से सऊदी अरब ने 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज सैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे दिव्यांश श्रीवास्तव से संतूर वादन राग बसंत मुखरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी, कलाकार थे दिव्यांश श्रीवास्तव। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम अवर गेस्ट। आज इस कार्यक्रम में सुनिए स्वस्थ शरीर और मन के लिए योग। योग विशेषज्ञ कविता दत्ता से बात कर रहे हैं नीतीश अरोड़ा।

0: जेड़े जरूरी हैं ते तुहानू प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नौजवानों नू ठीक रस्ते अते तरक्की वल ले जा सकता है।
1: हुणे असीं सुन रहे सी एक वार्ता जिसका विशा सी सोशल मीडिया ते नौजवान पीढ़ी ते वार्ताकार सन अमरजीत सिंह ते आओ हुण सरवण करदे हां सबद। सब तो पहला भाई दविंदर सिंह रागी ते साथियां दी आवाज विच सरवण करदे हां सबद तिलक जंजू राखा प्रभ ताका।

0: ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और

0: 1,450 after the two powerful magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes. Venezuela has recorded 430 light to moderate aftershocks, Rodriguez said in the latest government update on the national emergency. Earlier on Saturday, he said on state television that 3,238 people have been injured and 3,142 families affected by the disaster. Indian stock markets opened flat today, with investors and traders closely monitoring developments surrounding the US-Iran ceasefire and upcoming diplomatic discussions. Nifty opened at 24,062, up 6 points, while Sensex started marginally lower at 77,055, down 45 points in the early trade today. Meanwhile, the international benchmark Brent crude rose 1% to $72.78 per barrel, while US West Texas Intermediate crude gained more than 2% to nearly $71 per barrel. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eshtukuyo of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-host Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July 4th. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। सबसे पहले आपको बताते हैं अपना ईमेल आईडी, जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश, अपनी पसंद के गीत के साथ भेजना है। तो नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है iprediodelhi@gmail.com। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपका हमसफर सिद्धार्थ सिंह। और चूंकि ये फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपनी पसंदीदा गीत की तो आप हमसे फरमाइश कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप हमें संदेश भी भेज सकते हैं। और आप जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है जिंदगी में क्या होना चाहिए, क्या कुछ खास होना चाहिए, इसके बारे में भी अगर आप हमें कुछ लिखकर भेजेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं देख रहा हूँ कि समय हमारे इनबॉक्स में बहुत सारे संदेश लगातार आ रहे हैं। और सबसे पहले जो संदेश आया है, लिखते हैं, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। और इनके साथ ही शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमें सुन रहे हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, इन्होंने धन्यवाद दिया है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मैसेज भेजा है और अपनी पसंद हमसे साझा की है। और हमारे पास एक और मैसेज है, नमस्कार, अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल करें, मैं इंतज़ार में हूँ, धन्यवाद। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां, नाज तलहत जहां, फरहत जहां और परिवार के सभी सदस्य इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लेकिन आप जिंदगी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, ये भी हमें ज़रूर लिखकर बताएं। और पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा ने भी अपना संदेश भेजा है और लिखते हैं कि आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और हमें लिखते हैं, आदाब, नमस्कार आरजी सिद्धार्थ, आपको और हमें किसी भी गीत में शामिल करें। ये लिखती हैं सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आपका हर पल खुशियों से भरा हो। तो ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, ज़िंदगी के जो पल हैं वो अगर खुशियों से भरे नहीं होंगे तो जिंदगी में काम कैसे चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी हर मोड़ पर कुछ नया सबक दे जाती है, जो मुस्कुरा कर चल पड़े मंजिल उसी को मिल जाती है। तो आगे बढ़ना ही, चलते रहना ही जिंदगी का नाम है, और जिंदगी के रास्ते ये उतार चढ़ाव भरे हैं। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि वक्त की ठोकरों ने इतना सिखा दिया हमें, अब हर दर्द भी मुस्कुराना आ गया हमें।

जी हाँ, हम तो सात रंग हैं, दो जहाँ रंगी बनाएंगे तो बिल्कुल बनाएंगे, और क्यों ना बनाएं, क्योंकि जिंदगी इन्हीं खूबसूरत रंगों का नाम है। और जो आपने गीत सुना, ये फिल्म थी सत्ते पे सत्ता। और आपको बता दें कि 1982 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, आरएन सिप्पी की ये फिल्म थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर खासा धूम मचाई थी। और इसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया होगा। आपको याद होगा कि एक भोले भाले से रवियानंद और दूसरे खूंखार बाबू। और यहां भी आपको यह बता दें कि यह जो फिल्म है सत्ते पे सत्ता, यह फिल्म हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स से प्रेरित मानी जाती है। और इसको थोड़ा कस्टमाइज किया गया था, भारतीय परिवेश के अनुसार इस फिल्म को ढाला गया था। और ये जो सातों भाई होते हैं, ये क्या जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, और इसमें क्या मतलब पूरी तरह से जिस तरह से इस पूरी फिल्म को फिल्माया गया है। और हमारा अगला संदेश इस समय स्क्रीन पर आ रहा है, लिखते हैं सिद्धार्थ सिंह जी, स्वागत है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। रविंद्र सिंह छापड़ा, इंद्रजीत कौर छापड़ा और स्वीटी छापड़ा लिखते हैं, हम भी आपके नियमित श्रोता है, गुजारिश है आपसे अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बिल्कुल, आपका हर पल खुशियों से भरा हो। और बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी दुआएं दी हैं, इतना अच्छा बताया है, तो बिल्कुल हम आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। और इसके अलावा हमारे पास अगली फरमाइश उत्तमनगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल गीतिका और भानु प्रकाश की आई है। इसके अलावा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अगला संदेश, जी हाँ ये तो हमने नाम पढ़ दिया है। और ये आप कई कई बार हमारे को श्रोता जो है वो संदेश रिपीटेडली भेजते हैं, तो हम आपका नाम ज़रूर शामिल करेंगे। आप हमें बार बार एक ही संदेश ना भेजें ताकि हमें ढूंढने में दिक्कत ना हो। और हमारा अगला जो संदेश है वो ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से आया है। और ये कहते हैं कि प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है। और हमारे अगले श्रोता लिखते हैं, रिस्पेक्टेड हो सिद्धार्थ जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जिंदगी में अपने साथियों दोस्तों को धोखा ना दें और गाते मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। और बिल्कुल, कितना प्यारा संदेश दिया है। और ये संदेश है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, चैतन्य, मेघा और साथ में चंडीगढ़ से सुन रहे हैं राहुल, रचिता और केशु। तो आपने जो बात कही है कि जिंदगी में गाते मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांट रही है, क्योंकि इसी का नाम है जिंदगी। हमारे अगले श्रोता लिखते हैं सिद्धार्थ जी, सत श्री अकाल, जी हाँ आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और सत श्री अकाल। हैलवेज बी हैप्पी, जिंदगी हंसने गाने का नाम है, पल दो पल। बिल्कुल, जिंदगी पल दो पल हंसने का नाम है। और ये हमारे अगले श्रोता राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और घुटना जैन हमें मुल्लापुर दाखा से लिखते हैं कि इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और इसके अलावा हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार जी, आप आरजे जी हमें भी शामिल करें सर, इंतज़ार कर रहे हैं कब से बेसब्री से। तो आप इंतज़ार कर रहे हैं हमारा बेसब्री से, तो हम भी आपका नाम पढ़ने के लिए एकदम बेकरार हैं, क्योंकि इंतज़ार की भी अपनी एक अजब कहानी है, मिलने की खुशी से पहले तड़प निभानी है। तो इंतज़ार का मज़ा वही जान सकता है जिसने इंतज़ार किया है। और किसी ने कहता है कहा है कि उम्र गुजर गई तेरी राहों में नज़र बिछाते बिछाते, मगर उम्मीद ने आज तक दामन नहीं छोड़ा। तो इंतज़ार करिए, क्योंकि इंतज़ार का अपना मज़ा अलग है। और अगर आप शिद्दत से किसी की चीज़ को आप चाहें तो वो आपको ज़रूर मिलती है। हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय सर सिद्धार्थ जी नमस्कार, बेहतरीन प्रस्तुति के साथ साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं, जिंदगी के बारे में बेहतरीन बातें बताई जा रही हैं, हम भी प्रोग्राम आनंद उठा रहे हैं। धर्मेंद्र छीपा भोपालगढ़ राजस्थान से लिखते हैं, उनके साथ में कपिल, ईशान, पूजा, ये भी हमें लिखते हैं कि इनको प्रोग्राम सुनना
अच्छा लग रहा है और हमें भी आपके साथ इस प्रोग्राम को करना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आपके प्यारे प्यारे संदेश आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मुकद्दर से ज़्यादा कभी किसी को मिला नहीं और वक्त से पहले कभी कुछ हुआ नहीं। मुकद्दर भी उसी का साथ देता है जो मुश्किलों में भी हौसला नहीं खोता है।

जी हाँ श्रोताओं, लकीरों पर नहीं अपने इरादों पर यकीन रख, मुकद्दर भी झुक जाता है जब हौसले बुलंद हों, और मुकद्दर की लिखी हर बात मंजूर नहीं होती। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो तकदीर बदल देती हैं, और इसी तरह की जो फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर 1978 में बॉक्स ऑफिस पर खासी धूम मचाई इस फिल्म ने, और इसका निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था। उनकी ये वन ऑफ द बेस्ट और सबसे ज़्यादा सफल फिल्मों में गिनी जाती है। और जिस तरह से यहाँ पर अमिताभ बच्चन का जो किरदार था सिकंदर का, जो एक अनाथ बच्चे से अमीर इंसान बनने तक का सफ़र तय करता है, लेकिन शायद प्रेम में ये सफ़र अधूरा रह जाता है। लेकिन हम अधूरी बात नहीं करेंगे, बात ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि हरजिंदर सिंह भाटिया हमें लिखते हैं, सिद्धार्थ जी आपने मेरा मैसेज तो पढ़ लिया लेकिन नाम नहीं शामिल किया। तो स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, पप्पी और सुनू, मुझे लगता है कि आपकी शिकायत जो है वो ज़रूर दूर हो गई होगी। और इसके साथ ही हमें हमारे अगले श्रोता है, ये लिखते हैं, नमस्कार जी, नाम सर हमें नाम हमारा शामिल करिए ज़रूर से। बिल्कुल कर लिया, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य और इसके अलावा पीयूष, कोयल, डुक्कू, आपका नाम हमने शामिल कर दिया है अपने कार्यक्रम में। और हमारा अगला संदेश आया है, लिखते हैं, सप्रेम नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति आदरणीय सिद्धार्थ सर जी, खूबसूरत गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जो सच्चाई है उसी को गीत में गाया गया है। बिल्कुल एकदम सही बात कही आपने। प्रकाश, प्रिंस, निखिल, यशस्वी, छत्तीसगढ़ पलारी से हमें लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं कि इस गाने की जो लिरिक्स है, जो बोल हैं, वो असल में ज़िंदगी के जो मायने हैं उसे बताया गया है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर और प्यारा गीत है ये। और इसके अलावा हमें लिखा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष और विनोद खडसे जी ने, कि इनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा अनवर साबरी जी हमें लिखते हैं, प्रसारक जी प्यार भरा आदाब नमस्कार, आप हमें किसी भी गीत में शामिल करें तो हमने आपको शामिल कर लिया। अनवर, शन्नो, मुदस्सिर और ज़रीफ अंसारी लिखते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज किया। और सच कहें तो जब आपके संदेश हमें मिलते हैं, जब हमें भी लगता है कि आप कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो हमारा हौसला बिना वो बहुत बढ़ जाता है। और श्रोताओं, जो हमसे अभी भी जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आप अपना संदेश हमें ipradiodelhi@gmail.com पर भेज सकते हैं, जिसमें हम आपके पसंदीदा गीत लगा तार सुनवा रहे हैं। और इसके अलावा हम अगर अगले संदेश की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम मुझे दिख रहा है अनीता मुखी, सिमरन, शांति नगर, सोनीपत से, और साथ में सुदर्शन जी भी हैं। ये लिखते हैं कि ज़िंदगी का सफ़र है ये, कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी का सफ़र शानदार है। बिल्कुल शानदार है ज़िंदगी का सफ़र, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इसके अलावा हमें जी ये संदेश हम ले चुके हैं, और ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहनी हमें सुन रहे हैं। बिल्कुल आप इसी तरह से हमें सुनते रहिए, हमें आपके संदेशों का लगातार इंतज़ार है। और अब मैं आपसे ये कहूँगा कि मिलन की घड़ी आई तो हरगम भूल गए, तेरी मुस्कुराहट में हम खुद को ही पा गए। बरसों की दुआओं का असर आज दिखा है, तेरे मिलने से दिल का हर एक जख्म हंस पड़ा है।

0: पार्टी चाहिए,
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ श्रोताओं, जानकार बनिए और सतर्क रहिए। तो अभी आपने फिल्म खेल खेल में का ये गीत सुना, जो कि 1975 में रिलीज हुई फिल्म थी। रवि टंडन ने इसका निर्देशन किया था और इस पूरी फिल्म में अगर ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी की जो केमिस्ट्री थी वो अपने आप में पूरी फिल्म की जान थी और बेहद एक हम ये कह सकते हैं कि युवा वर्ग में ये फिल्म काफी लोकप्रिय हुई और बहुत लोगों ने इसको पसंद किया। और शायद तभी कहते हैं कि मुलाकात का वो पल कुछ यूं खास हो गया, तुम मिले तो हर अधूरा एहसास पूरा हो गया। और हमारे एहसास भी पूरे तभी होते हैं जब आपके संदेश हम यहाँ पर लगातार अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। हमारा अगला संदेश आया है, लिखते हैं, आदाब नमस्कार, किसने पुकारा मैं आ गई, और शुक्रिया के साथ राजधानी रायपुर से नीलू नीलम डॉक्टर वंदना कुमार बिट्टू कुमार हमें सुन रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर ज़िंदगी के ऊपर कुछ आपके विचार, कुछ आपकी बातें हमें मिलेंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा आपसे साझा करने में। और आपके नाम तो हम ले ही रहे हैं, आपके पसंदीदा गीत भी सुनवा रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आपके संदेश भी हमें मिले तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लिखते हैं अगला संदेश है, आदाब नमस्कार आरजी सिद्धार्थ, आपको हमें किसी भी गीत में शामिल करें। और धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयन बाबू, ये लिखते हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो। तो आपकी इतनी अच्छी दुआओं के लिए आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो अगला संदेश आया है, ये चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा हमें लिखते हैं और लिखते हैं आपका दिन शुभ हो। तो आपका भी दिन बहुत बहुत शुभ हो, आपके प्यारे प्यारे संदेश हमें मिल रहे हैं। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप अपना संदेश हमारी ईमेल आईडी IPRadioTally@gmail.com पर प्रेषित कर दें। हम आपके संदेश के साथ आपका पसंदीदा गीत आपके नाम के साथ सुनवाएंगे। और जी ये लिखते हैं, मुकद्दर का सिकंदर सॉन्ग सुनवा दीजिए, हमने आपको बिल्कुल सुनवा दिया। संदीप मुखर्जी और आपके साथ में ज्योति मन्नत और पूरा परिवार हमें जालंधर से सुन रहा है, हमें भी अच्छा लगा। और इसके अलावा लिखते हैं कि जो समाज अपनी कहावतों और मुहावरों को संजो कर रखता है वो अपनी संस्कृति और पहचान को भी जीवित रखता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ये संदेश हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शुकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि ने ये प्यारा सा संदेश हमें भेजा है। और इसके अलावा आपको बता दें, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, सीता और गीता ये हमें संदेश भेजते हैं। और आप गीत सुनना चाहते हैं इस फिल्म का, बिल्कुल। हम इसके अलावा और भी हमारे पास संदेश आ रहे हैं, दिखते हैं कोई भी गीत सुनवा दें। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, बिल्कुल हम आपको आपकी पसंद का नगमा ज़रूर सुनवाएंगे।

जी हाँ श्रोताओं, जो आपने गीत सुना वो फिल्म थी हम किसी से कम नहीं, और ये अपने ज़माने की एक 1977 की बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा सफल फिल्मों में थी। और इस फिल्म में एक बार फिर से आपको जो ऋषि कपूर, तारिक, काजल किरण, अमजद खान और जीनत अमान प्रमुख भूमिका में थे। और जो फिल्म में जो रोमांस, कॉमेडी, एक सस्पेंस और संगीत का शानदार मिक्सचर था, इसमें एक खोए हुए हार के इर्द गिर्द कहानी आगे बढ़ती रहती है। और काफ़ी ज़्यादा ये फिल्म मशहूर हुई थी। और लगातार आपके संदेश हमें मिल रहे हैं, लिखते हैं, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, बन जाते हैं रिश्ते नाते जहाँ जिसका नसीब।

होता है। बहुत अच्छी बात। ये हीरामर शेंडे और सिद्धार्थ गोंडाने हमें लिखते हैं किशोर नगर अमरावती से। बहुत प्यारा संदेश आपने बहुत अच्छी बात लिखी है। लिखते हैं प्रिय प्रसारक जी, प्यार भरा आदाब और नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आप लिखते हैं हमें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, प्रस्तुति अच्छी लग रही है, किसी भी गीत में शामिल करें। अनवर शन्नो मुदस्सिर और ज़रीफ अंसारी ने ये संदेश हमें भेजा है। इसके अलावा लिखते हैं नमस्कार, राय रब की सुननी चाहिए और फैसला अपने दिल से लेना चाहिए। ओके, प्रस्तुति और गाने पसंद आ रहे हैं। डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमें लिख रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और दिल से, पता है क्या होता है कि राणा साहब की जो दिल से दिल की बात होती है वो कभी गलत नहीं होती, हमेशा दिल की बात सुननी चाहिए। और लिखते हैं हमारे अगले श्रोता, नमस्कार सिद्धार्थ भाई जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इंद्रप्रस्थ चैनल के लिए बेशुमार मोहब्बतें, हमारी भी आपके लिए ढेर सारी मोहब्बत है। कैसे आपसे दूर रह सकते हैं। चंडीगढ़ सिटी से लिखते हैं सतीश अनेजा, बिमल अनेजा हमें। और इसके अलावा लगातार श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं। लिखते हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, कमल पटेल, मनोज हिरवे जी हमें संदेश भेज रहे हैं। और इसके अलावा हमें एक संदेश आया है रोहन जी का। लिखते हैं सिद्धार्थ सर जी सप्रेम नमस्कार, जिंदगी में आने वाले लोग या परिस्थितियां हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती हैं या आजमाती हैं। हर चुनौती से सीखकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। कितना खूबसूरत मैसेज इन्होंने दिया है कि जिंदगी में जो चुनौतियां हैं वो तो लगातार आती रहती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह ऐसा कहना है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन ने। बिल्कुल आपके संदेश लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे अगले कॉलर लिखते हैं, डियर हो सिद्धार्थ जी नमस्ते, सदा खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है। ओ, मेरा मेल जरूर शामिल करिए। रौनक तो आपके संदेश से आई है, क्योंकि मुझे जब पता लगता है कि आप हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, तो सच कहूँ दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। और ये जो हमारा आपका रिश्ता है ना, बहुत ही अनमोल रिश्ता है। और आप जब हमें संदेश करते हैं, बिल्कुल अगला देखिए, एक और संदेश हमारे पास मुझे ब्लिंक कर रहा है, सतीश अनेजा जी का है। हम आपका संदेश शामिल कर चुके हैं। और इसके अलावा बसंत कुमार सिन्हा जी हमें कहाँ से लिखते हैं, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, बिल्कुल आप एयरपोर्ट से हमें संदेश भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और इसके अलावा स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुलाल सिंह और अविराज सिंह भी हमें लिख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। और श्रोता, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि फिल्म 1979 में एक फिल्म आई थी नूरी, और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया था। और ये उनके निर्देशन में बनने वाली सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी, जिसमें फारूक शेख इस फिल्म के नायक थे। और उनकी सादगी और जो सहज अभिनय था उसको लोगों ने खूब सराहा, और बहुत ही अच्छे एक से एक गीत थे इस फिल्म में। और जो ये जो नूरी एक लव स्टोरी है, इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा लोगों ने। तो आइए क्यों ना सुने इस फिल्म का ये गीत।

0: चोरी चोरी कोई आए।
1: जी हाँ, चोरी चोरी कोई आए, तेरे आने से जिंदगी में बहार आ गई, सूनी पड़ी हर राह फिर से गुलजार हो गई।

जी हाँ, चोरी चोरी कोई आए, लेकिन हम तो बिल्कुल भी चोरी से नहीं आते हैं। जब हम आते हैं तो हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी श्रोताओं को पता चल जाता है हमारा संदेश। अगला है, लिखते हैं सिद्धार्थ, हमारा राम राम स्वीकार करें, आपको भी राम राम। लिखते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से जीना चाहिए। आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज जी, वेद प्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह। और लिख रहे हैं, कोई भी सदाबहार गीत शामिल करें तो बहुत अच्छा है, आपका गीत हम शामिल कर रहे हैं। और यहाँ पे एक नबी हसन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल रसीद, अनम यशव, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हमें भेजते हैं और लिखते हैं कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। बिल्कुल, हमें अच्छा लग रहा है जानकर कि आपको पसंद आ रहा है ये कार्यक्रम। और लिख रहे हैं कि डियर प्रोग्राम एंकर सिद्धार्थ जी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम आवर साइड, प्लीज़ इंक्लूड आवर रिक्वेस्ट ईमेल इन द सॉन्ग। और बिल्कुल, हमने वी हैव इंक्लूडेड योर रिक्वेस्ट। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से पूरा मल्होत्रा परिवार हमें सुन रहा है। इसके अलावा बजाज परिवार भी, टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल और जयवीर और डॉक्टर अमनदीप हमें सुन रहे हैं। और लिखते हैं कि बड़ा अच्छा सा संदेश ये भेज रहे हैं हमें। हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि सिद्धार्थ जी नमस्कार, जिंदगी जीना ही नहीं इसे जिंदा दिल्ली से जीना सीखो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुश्किलों के समंदर में मुस्कुरा कर तैरना सीखो। चुनौतियों तो हर कदम पर आएंगी ही, धूप है जीवन में तो छांव भी आएंगी ही। हार के डर से घुटनों पर बैठ जाना क्या, जीत की जिद में तूफानों से टकराना सीखो। अपने हिस्से की खुशियां खुद तलाशो, छोटी छोटी बातों में हंसने का बहाना ढूंढो। दिल खोल कर हंसो और औरों को भी हंसाओ, इस खूबसूरत सफर को जिंदा दिली से सजाओ। बिल्कुल, कितनी अच्छी सी बात और कितना प्यारा सा संदेश आपने हमें भेजा है। और हम तो यही कहेंगे कि आपसे मिलकर, आपसे बात कर इस कार्यक्रम को करने के बाद मुझे भी बेहद खुशी मिल रही है। और आपसे हम यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा, ये दिन आपके लिए शुभ हो। इसी के साथ अपने होस्ट सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। तो आइए सुनते हैं देश दुनिया के समाचार अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
1: तो दोस्तों, आइए हम आपको लेके चलते हैं एक कहानी की तरफ, जो कि है एक लड़की के बारे में। वो लड़की गौरी, जो बचपन से अपने सपने संजोती है, शादी के सपने। तो आइए हम जानते हैं उसके सपनों की हकीकत के बारे में। शादी, हाँ दोस्तों, शादी लड़की का सपना होता है। वो बचपन से ही अपने राजकुमार के सपने सजाती है। छोटी उम्र में ही वह गुड्डे गुडियों की शादी कराती है। ये सपना हकीकत में देखने लगती है। कहते हैं हर लड़की का एक नहीं बल्कि दो परिवार होता है, पहला जहां वो पैदा होती है और दूसरा जहां उसकी शादी होती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की गौरी की कहानी है, जो शादी के सपने सजा रही थी। पढ़ाई लिखाई खत्म होने पर गौरी के माँ बाप उसके लिए एक लड़की की तलाश में लग गए। वो लड़का जो उसका हमसफर बन सके। गौरी बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। आइए सुनते

0: बेटा गौरी, अब देख, जब हम तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है, पर तू भी बता दे तुझे कैसा लड़का चाहिए।
1: हाँ बेटा देख, हम तो चाहते हैं लड़का खानदानी हो, पढ़ा लिखा हो और घर में इकलौता हो, ताकि तुझे किसी चीज की कभी कोई कमी ना हो, तू रानी बन के रहे बेटा, रानी।
2: नहीं नहीं पिताजी, मुझे अमीरी गरीबी नहीं देखना, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे अपनी कमाई में भी खुश रखे और हम छोटे से घर में एक साथ अपने सुख दुख बांट सके, और कुछ नहीं चाहिए।
0: अरे तू बावली हो गई है क्या गौरी, ये सब तो सिनेमा की बातें हैं जो बड़े पर्दे पर ही अच्छी लगती हैं। आज के जमाने में पैसा ही खुशियों को खरीदता है। अब बस हमें जैसा लड़का ढूंढना है, हम तेरे लिए ढूंढ रहे हैं, तू चिंता मत कर।
3: ये सच है कि हर माता पिता अपनी बेटी के लिए एक आलीशान ससुराल चाहते हैं, जहां वो रानी बन के रहे, पर क्या पैसा प्यार से ज्यादा कीमती होता है?
2: अरे अंकल आप, नमस्ते अंकल, आइए बैठिए, मैं पिताजी को बुलाकर लाती हूँ। पिताजी।
1: आया बेटे। अरे रमेश, कैसे आना हुआ तुम्हारा, बताओ कोई मेरे लायक काम है तो आओ बैठो।
4: अरे भाई साहब, मुझे पता चला कि आप अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको एक लड़के के बारे में बता सकता हूँ?
1: हाँ, मगर हम ऐसे लड़के की तलाश में हैं जो घर में इकलौता रहे और सरकारी नौकरी भी करता हो, बाकी हमारी कोई और इच्छा नहीं है।
4: हाँ हाँ, आप चिंता ना करें, बिल्कुल यही खूबियां हैं, अगर आप कहें तो मिला दूं उससे।
3: और रमेश गौरी के पिता से उस लड़के को और उसके परिवार को मिलवाता है। गौरी और उस लड़के दिनेश की शादी हफ्ते भर में ही हो जाती है, शादी के कुछ ही दिनों बाद।
5: अरे गौरी, तुम इतनी रात तक क्यों जग रही हो? देखो मैं तो अपने दफ्तर से देर से आता हूँ, तुम मेरा इंतजार मत किया करो, खाना बना के खा के सो जाया करो।
3: शादी के बाद जो प्यार एक लड़की अपने पति से चाहती है, वो प्यार गौरी को नहीं मिल पाता, और थोड़े समय बाद तो दिनेश पूरे पूरे दिन घर नहीं आता था, और रात को देर से शराब पीकर घर में घुसता था।
2: आप आज शराब पीकर आए हैं? आपको पता है ना मुझे आपकी कितनी चिंता होती है, आप देर से आते हैं और आज तो आपने शराब भी पी ली, आप शराब मत पिया कीजिए।
5: तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? रुक, मैं तुझे बताता हूँ।
2: आ, आ, अरे मत मारो मुझे, मेरे बाल, प्लीज मत मारो।
3: दिनेश गौरी को नशे में खूब मारता है और गौरी रोती है, चिल्लाती है, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। सुबह उठकर गौरी दिनेश की माता को रात के बारे में बताती है।
0: अच्छा बहू, तू मुझे ये सब बता रही है, अगर ये समय तू काम में लगाती तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। मुझे तो पता है मेरे बेटे का शौक है पीना, और उससे तू जबान लड़ाएगी तो गुस्सा ही करेगा ना, हाथ ही उठाएगा ना, बड़ी भोली बनती फिरती है घर में।
3: गौरी बहुत निराश हो जाती है, और ये सोचकर कि उसके माता पिता भी परेशान होंगे, वो उन्हें भी नहीं बताती। पर हाँ, दिनेश अब अपनी हदों से आगे बढ़ गया था, वो रोज देर रात से शराब पीकर आता और गौरी को जानवरों की तरह मारता था। अब तो जैसे गौरी टूट ही चुकी थी। समय जरूर बीत गया था, पर हाँ, परिस्थितियां अभी भी बदली नहीं थी। एक दिन गौरी की पुरानी सहेली उसे बाजार में मिलती है।
6: अरे गौरी, तू कैसी है?
2: अरे प्रिया, मैं अच्छी हूँ, तू सुना?
6: मैं भी अच्छी हूँ, मुझे माफ करना यार, तेरी शादी में नहीं आ पाई, कहीं बाहर गई हुई थी परीक्षा देने को।
2: अच्छा,
6: पर तू अब ये बता, जीजू कैसे हैं?
2: हाँ ठीक है वो।
6: और सुना है तेरा नया ससुराल, वो तो बहुत ही बड़ा है।
2: हाँ।
6: काफी पैसे वाले लोग लगते हैं।
2: हाँ वो तो है, लेकिन
6: तो तेरी शादी काफी अमीर खानदान में हुई है।
2: तू वो सब छोड़, लेकिन मैं समझ सकती हूँ यार, तू क्यों नहीं आई होगी। इसके पीछे जरूरी कोई काम होगा। चल चल अब मैं घर जाती हूँ, मुझे बहुत काम है, अब हम कहीं और मिलेंगे।
6: अरे रुक तो सही, क्या बात है, तेरे चेहरे पे ऐसी उदासी क्यों छाई हुई है? मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ, इतनी उदास पहले तो कभी नहीं रहती थी। तू लगता है मुझसे कुछ छुपा रही है। देख मैं तेरी सहेली हूँ, मैं तेरे को बचपन से जानती हूँ। हंसते रहने वाली लड़की कभी उदास चेहरे में ऐसे अच्छी नहीं लगती। बता क्या बात है।
3: और गौरी रोते रोते अपनी सारी परिस्थितियों का बयान प्रिया को करती है।
6: देख गौरी, तू रो मत और कमजोर मत पड़, क्योंकि लड़की व पत्नी को मारना शादी के बाद कानूनी जुर्म है। हम इसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने हिम्मत रखी और तूने मुझे बताया, वरना आजकल की लड़कियां इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि ऐसी परिस्थितियों को देखकर अपनी जान दे देती हैं। पर क्या

0: ये एक समस्या का हल है? नहीं, समस्याओं से लड़ना ही हिम्मत का काम होता है, ना कि उससे डरकर जान दे देना।
1: गौरी को प्रिया की बातें सुनकर और हिम्मत मिलती है और वो दोनों उसी समय दिनेश के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। गौरी छुपके से अपना सामान लेके अपने ससुराल से निकल जाती है और अपने माता पिता के पास पहुंचती है।
2: बेटी, तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना?
1: तभी गौरी सारी बातें और हुई घटना के बारे में अपने माता पिता को बताती है।
3: बेटी, हमें माफ कर दे, हमने अपनी बच्ची के जीवन को बर्बाद कर दिया। काश हम पैसे और शान शौकत नहीं, पर एक प्यार करने वाला लड़का अगर अपनी बेटी के लिए ढूंढते जैसा उसे चाहिए था। तूने हमारी वजह से कितना सहा, फिर भी यह सोचकर कि हम परेशान होंगे, हमें पता तक लगने नहीं दिया। बेटा, आज तूने बता दिया कि लड़कियों में कितनी सहन शक्ति होती है और वो अपनी परिस्थितियों को अंत तक बदलने की कोशिश करती है और आखिर में अपनी बहादुरी से निर्णय लेती है।
1: हाँ, ये बिल्कुल सही है कि लड़कियों में सहन शक्ति व परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत होती है, पर यह भी सच है कि हर लड़की गौरी नहीं होती। पर बहुत से जीवन है जो रेल की पटरी पर लेटकर, आग में झुलसकर और पंखे पर लटककर अपने आप को खत्म कर देते हैं। पर क्या यही समस्याओं से बचने का हल है? नहीं, हम भी इतनी हिम्मत रखें कि हमारी बहादुरी और हमारा आत्मविश्वास ही हमें हमारी परिस्थितियों का हल बताए, ना कि जीवन का अंत। ये कहानी हर माता पिता के लिए एक प्रेरणा है कि हमारी बेटियां कीमती हैं, उन्हें पैसों की कीमत नहीं परंतु कीमती हाथों में दें। और हर लड़की अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि परिस्थितियों से भागना ही उसका हल नहीं होता। अगर गौरी भी ऐसा करती तो शायद उसे बहादुर लड़की हम नहीं कहते, जिसने परिस्थितियों से भागकर नहीं पर उससे लड़कर उसका हल निकालना चाहा।
4: दोस्तों, ऐसी ही कई गौरियां हमारे समाज में यहां वहां विद्यमान हैं, जो ऐसी कई परेशानियों से जूझ रही हैं। अगर आपके पास या आपके नजदीक में कोई अगर आपको ऐसा घटना मिले तो दोस्तों, आप उसकी जिम्मेदारी लें और उसके उत्थान के लिए आप आगे बढ़ें।

0: अब श्रोताओं, समय है कि कुछ श्रोताओं के नाम आपके सामने हम रखें जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं। और फूलग्राम जिला भिवानी से कुछ लिसनर्स हैं, कुछ श्रोतागण हैं जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और दूसरों को भी हमारे कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। तो इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मुन्नीलाल प्रजापति, सुमित्रा देवी जी, जय भगवान प्रजापति जी, मट्रो रणबीर, रणबीर प्रजापति जी, गुड्डी संतोष जी, शंकर मास्टर और अनुप। ये हमारे श्रोता हैं जो फूलपुर ग्राम जिला भिवानी से हैं, हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में आपका नाम प्रसारित हो, या फिर आप कविता या फिर कहानी लिखने का शौक रखते हैं, तो हमें जरूर बताएं। तो आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद।
1: छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा।
2: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। आइए सबसे पहले सुनते हैं हरजीत हरमन को।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमंजरी। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिथिलेश कुमार सिंह का गाया राग मुल्तानी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमंजरी। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना मिथिलेश कुमार सिंह की गाया राग मुल्तानी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से कुछ पलों के बाद आप सुनेंगे समाचार, इसके बाद कार्यक्रम घर आंगन।

0: प्रसारित किया जाएगा। 12 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian Naval Band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction, for leadership in environmental conservation and sustainable development. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State UT Police at 5 p.m. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundresh and Sheel Nagoo questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. The delegation will also hold focused roundtable discussions with Indian and Greek industry leaders at the Athens Chamber of Commerce and Industry, covering infrastructure, digitalization and defense, and food and agriculture. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampurna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. In Assam, fears of a major flood have intensified in the Himaji district following reports of a temporary blockage in the upstream course of the Gai Nadi in the hills of Arunachal Pradesh. The obstruction is believed to have been caused by a massive landslide triggered by days of heavy rainfall in the region. The Himaji district administration has issued an urgent public advisory and warned that the blockage could trigger a sudden flash flood. In Jammu and Kashmir, with the annual Sri Amarnath Yatra set to begin on July the 3rd, all preparations have been completed for the smooth conduct of the pilgrimage. Our correspondent reports that a full-scale dry trial run was conducted today to assess security arrangements, convoy movement and overall preparedness before the official commencement of the pilgrimage. Benchmark domestic equity indices were trading in the negative zone during the forenoon session today. The Sensex fell 152 points to 76,948, while the Nifty dropped 26 points to 24,030 when reports last came in. On the sectoral front, weakness persisted across auto, telecommunication and IT, while healthcare, pharma and metal sectors were bucking the trend. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Estakio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage.

आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी कल्पना और आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर भी। और दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हमारे पास आपके लिए एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि आपने सबसे पहली भारतीय डिश क्या बनाई और उस पर आपको क्या मज़ेदार कमेंट मिला था। हमें भेज दीजिए अपने उत्तर। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और दोस्तों, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से दोहे के साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी हमें सदैव ऐसी बातें करनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिन्हें सुनकर दूसरे लोग खुश हों और हम भी खुश हों। आज है संत कबीरदास जी की जयंती और उनके विचार आज भी हमें सत्य, समानता और मानवता का मार्ग दिखाते हैं। कबीर के दोहे केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की सीख है। समय का सदुपयोग, आत्मचिंतन, गुरु का सम्मान और मधुर वाणी का महत्व, उनकी ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। सच है ना, हम उनकी सीखों से रोजमर्रा के जीवन में ऐसे बंधे हैं कि उन्हें भूलना या उनसे दूर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे धरती कहे पुकार के फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। और चलिए देखते हैं कि हमारे किसी श्रोता ने हमें ईमेल किया है क्या। जी हाँ, बिल्कुल, नवीन भाटिया जी हमारे नियमित श्रोता हैं और उन्होंने हमें ईमेल किया है कि दाल चावल बनाए थे और डैडी ने काफ़ी पसंद किया था और हम दोनों ने काफ़ी चाव से खाया था। अरे वाह, तो जल्दी से आप भी दोस्तों, जो आप कार्यक्रम अभी जिसने सुनना शुरू किया है वो भी, उनके लिए प्रश्न ये है, आपको याद दिला दूँ कि भाई आपने पहली भारतीय डिश जो है वो क्या बनाई थी और उस पर आपको क्या मज़ेदार कॉमेंट्स मिले थे, तो वो आपको हमें ईमेल करना है fmgoldga@gmail.com पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक शेर सुनाती हूँ कि जिस घर में एक स्त्री हिम्मत से खड़ी रहती है वहाँ उम्मीद हर मुश्किल से बड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्रियों के अपने कठिन संघर्ष रहे हैं, लेकिन उन संघर्षों से जूझते हुए हर युग में स्त्रियों ने खुद को मजबूती से स्थापित किया है। एक समय था जब स्त्रियां शिक्षा से भी वंचित रहीं और तब भी उन स्त्रियों ने पूरी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ अपना घर संभालना सीखा। लेकिन जब समय बदला और स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने लगीं, आत्मनिर्भर बनने लगीं, तब इन स्त्रियों ने संभाला अपना घर भी और दफ्तर भी, बिना कहीं कमजोर पड़े पूरी क्षमता से दोनों जगह 100% जिम्मेदारी निभाई। यानी इन स्त्रियों ने एक के बाद दूसरी फिर तीसरी जिम्मेदारी संभालने का साहस किया। उन्होंने कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपने सीखने का क्रम बढ़ाया, अपनी क्षमताएं बढ़ाई और हर राह पर बड़े प्यार से आगे बढ़ती चली गई, चलती ही गईं।

दोस्तों अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने। तो चलिए आज आपको एक बहुत अच्छी सी जानकारी देती हूँ, जिसे सुनकर निश्चित रूप से आपको गर्व महसूस होगा। ये राजस्थान के एक गांव की कहानी है। उस गांव ने ये साबित कर दिया कि बेटी जीवन की हरियाली है, घर की फुलवारी है और आंगन की तुलसी है। राजस्थान के पिपलांत्री गाँव के श्याम सुंदर जी ने बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाकर पौधे लगाने की परंपरा का सूत्रपात किया, तो गांव के अन्य लोग भी इससे जुड़े। ये पहल सिर्फ पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं, बल्कि बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने की सोच भी बनी। समय के साथ इस परंपरा के कारण ही लगभग 3 लाख से अधिक पेड़ लगाकर गांव वालों ने गांव की बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया, जिससे बरसात और पानी का स्तर भी सुधरा। और देखो ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम पहल चलाकर हम सबको प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया। और मुझे तो यही लगता है कि शायद असली नारी सशक्तिकरण यही है, जब बेटियों का, महिलाओं का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। और मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि माता पिता की जान है अभिमान बेटियाँ, ईश्वर का सबसे कीमती वरदान बेटियां, शोभा है दो कुलों की ये बोझा न मानिए, देते हैं भाग्य वालों को भगवान बेटियां।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और आइए अब फिर से हम चेक कर लेते हैं भाई, हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं तो हमें मेल कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं। ये ईमेल भेजा है गौरव खारी जी ने, वो लिखते हैं, मैंने सबसे पहले भारतीय खाने में आलू के पराठे बनाने की कोशिश की थी, जो कि सिर्फ मैं अकेला ही खा पाया। कोई बात नहीं, कई बार ऐसे अनुभव भी हो जाते हैं कि फिर बाद में अच्छा बनने लगता है, शुरुआत में तो थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है। चरणदास जी लिखते हैं, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और ये भी लिखते हैं कि भारतीय खाना खाकर इनको बड़ा मज़ा आता है, और बनाने का तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, पर चलिए धन्यवाद, आप जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भावना शर्मा जी लिखती हैं कि मैंने पहली बार शाही पनीर बनाया था, फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने मुझे गाइड किया था, और सबकी मम्मी शिकायत करती है मेरे पापा ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। कितनी अच्छी बात है ना कि आपने पापा से खाना बनाना सीखा। वैसे आजकल तो कुकिंग हर कोई करता है। भास्विता लिखती हैं कि मैंने पहली डिश कढ़ी बनाई थी, बोलते हैं कि मुश्किल होती है पर बना दी थी मैंने और अच्छी बनी थी, ऐसा खाने वाले बोल रहे थे। अरे वाह, आपको बहुत बधाई, आपने पहली बार में ही बढ़िया बना दी। और ये आताशी गोयल हैं, लिखती हैं कि शुरुआत भले छोटी थी लेकिन मेहनत और अपनापन इतना था कि पहली चाय ने ही सबका दिल जीत लिया। चलो भाई, आपने चाय बनाई, बहुत अच्छी बात है, और सबका दिल जीता ये उससे भी अच्छी बात है। भूमिका जी लिखती हैं, जब मैं छोटी थी तो मेरे गाँव घर के बगल में एक दादी रहती थी, मैंने सबसे पहले उनके यहाँ चूल्हे पर पराठा बनाया था, लेकिन गलती है कि मुझे बनाना नहीं आता था तो मैं उसे रोटी की तरह सेकने लगी, जिससे मुझे डांट पड़ी, लेकिन बाद में सीख गई, अब मैं आलू के पराठे काफ़ी अच्छे बनाती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, चलो अब आप सीख गई। तो ऐसे ही हमारे अन्य श्रोता, देखिए राधा शुक्ला जुड़ी हैं, तो वो भी कह रही कि भाई हमने दाल चावल बनाया था, तो लग रहा है दाल चावल और आलू के पराठे बनाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो बढ़िया है, आप जो लोग जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं हमारे अन्य श्रोता, वो भी हमें ईमेल करें और भेज दें कि भाई उन्होंने पहली भारतीय डिश क्या बनाई थी, हमें ईमेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com, और तब तक आपको सुनाती हूँ ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे हीर रांझा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। तन्हाई में करनी तो है एक बात किसी से, लेकिन वो किसी वक्त अकेला नहीं होता। तो दोस्तों, कभी कभी थोड़ी देर के लिए एकांत भी चुनना ज़रूरी है, ताकि खुद को समझा जा सके, खुद से बातें की जा सके। और शायद यही कारण है कि आज के युवाओं को रूम रॉटिंग भारी है। युवाओं के लिए छुट्टी का मतलब अब भागदौड़ नहीं, बल्कि रुकना और आराम करना हो गया है। रूम रॉटिंग में युवा करते हैं आराम। चलिए बताती हूँ कि ये होता क्या है। किसी शांत जगह पर आराम करते हैं, देर तक बिना किसी दबाव के सोते हैं, बाहर जाने का दबाव नहीं लेते, बिना प्लान के दिन बिताते हैं, हल्की फुल्की बातें करते हैं और अपना मनपसंद खाना खाते हैं। आजकल के युवा बहुत तनाव, चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। ऐसे में रूम रॉटिंग वाली छुट्टी उनके रिकवरी मोड को ऑन कर उन्हें आगे बेहतर करने के लिए तैयार करती है। और कितनी अच्छी बात है कि वे कुछ देर खुद के साथ रहते हैं, बिना दबाव के जीते हैं, शांत रहते हैं और सबसे ज़रूरी कि फ़ोन और सोशल मीडिया से भी दूरी बना लेते हैं, कुछ घंटे बस खुद के। अच्छी बात तो ये है कि ये युवा प्राकृतिक जीवन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, हर बात में रील फोटो के लिए नहीं रुकते, बल्कि असली पल जीते हैं। कभी बालकनी में घंटों बैठ नज़ारे देखते हैं, कभी खुद से मनपसंद खाना बनाते हैं, कभी कुछ एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं, तो कभी बस बगीचे की सैर से खुश हो जाते हैं। खुद के साथ खुश रखने का ये ट्रेंड खुद से कुछ कहने सुनने का भी अवसर देता है।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म अलग अलग से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ श्रोताओं के ईमेल और पढ़ते हैं। गौरी शंकर वर्मा जी ने हमें मेल किया है कि कल्पना बेटा राम राम सन 1974 की बात है, मैं और मेरी बड़ी बहन ने मिलकर हलवा बनाया। माँ कहीं गई हुई थी लेकिन वो खराब हो गया, बाद में फिर माँ ने सिखाया बस अब तो केवल हलवा बना सकते हैं और कोई चीज़ नहीं। कोई बात नहीं, आप हलवा बनाते हैं तो क्या हुआ, आप मिठास बांटते हैं, ऐसे ही बांटते रहिए। अगले हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं, उग्रसेन यादव जी हैं, और वो लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा है, सॉन्ग सिलेक्शन भी अच्छा है और खाने पीने की बात का तो ये हिट प्रोग्राम है। थैंक यू, आप जुड़े हुए हैं। अक्षिका गोयल ने हमें लिखा है, इन्होंने कुछ शायराना अंदाज में लिखा है कि पहली चाय थी पर यादगार बन गई, मेहनत और प्यार से हर घूट खास बन गई, बहुत अच्छा। और ज्ञानेन्द्र दीक्षित जी हैं, वो हमें लिखते हैं कि डिश का नाम मटर पनीर, सबको बहुत पसंद आई थी और मेरी माता जी को सबसे ज़्यादा, क्या कहने। और हमारी जो रेगुलर लिसनर हैं दर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, वो कह रही हैं कि भाई घर आंगन प्रोग्राम उन्हें अच्छा लग रहा है और कह रही हैं हमने भी सबसे पहले सूजी का हलवा बनाया था और सबने स्वाद से खाया था। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं और अपने विचार हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। हमारे जो अन्य श्रोता हैं वो भी हमें बताएं कि उन्होंने अपनी पहली भारतीय डिश कौन सी बनाई थी और उन्हें क्या कॉमेंट मिला था। हमें भेज दीजिए fmgoldga@gmail.com पर। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आंगन कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ आपसे मनोरंजक बातें, मधुर की संगीत ही नहीं बल्कि आपकी फिक्र भी करते हैं और इसीलिए नई नई काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप रहें सुरक्षित। तो गर्मी का मौसम है तो ऐसे में कई बार हमारा मोबाइल ओवरहीट हो सकता है जिससे हम किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें और हम भी, इसके लिए कुछ आसान से उपाय आपको बताती हूँ, छोटे छोटे जो करने हैं। आजकल के फास्ट चार्जर जो हैं वो मोबाइल को जल्दी चार्ज तो करते हैं लेकिन बहुत गर्म भी कर देते हैं। ऐसे में फ़ोन को किसी मोटे रबर या लेदर कवर में ढककर बिल्कुल चार्ज ना करें बल्कि कवर से निकाल कर चार्ज करें ताकि हीट बाहर निकल सके। नेविगेशन के लिए फ़ोन को सीधे धूप के संपर्क में ना रखें, यदि ज़्यादा देर रखना पड़े तो ऐसे में एसी वेंट वाले फ़ोन होल्डर आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब ज़रूरत नहीं हो तो वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और अन्य जो सेवाएं हैं वो बंद रखें, इससे फोन पर दबाव कम पड़ता है। साथ ही ऑटो ब्राइटनेस मोड ऑन रखें और गेमिंग जो है हैवी गेमिंग उससे बचें। फोन जरूरी चीज है, इसके बिना काम तो नहीं चल पाता लेकिन इसे अपनी जिंदगी में शामिल करें पूरी सावधानी के साथ।

श्रोताओं, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे हिमलता की आवाज़ में, फिल्म आप तो ऐसे ना थे। और वैसे तो गर्मी की छुट्टियों में सब कहीं ना कहीं घूमकर आ चुके हैं, लेकिन अगर आप नहीं गए हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप आम के शौकीन हैं, तो दिल्ली हाट जनकपुरी में 3 जुलाई से 5 जुलाई 2026 लगने वाला है मैंगो फेस्टिवल, जहाँ पर न सिर्फ आम की विभिन्न किस्में मिलने वाली हैं, बल्कि आम से बने अलग अलग शेक्स, डेजर्ट्स, स्ट्रीट फूड और कैंडी भी होंगी। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और हस्तनिर्मित सामान भी होगा, जो आप खरीद सकते हैं। समय है दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे तक। तो 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए एंट्री फ्री है, बाकी सबके लिए ₹20 टिकट है। तो परिवार सहित एक बार घूम कर आइए, जनकपुरी ईस्ट उसका निकटतम मेट्रो स्टेशन है, अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो। इसके अलावा एक और सूचना यह है कि साथ ही अगर आप ब्यूटी पार्लर या स्किन केयर व्यवसाय से जुड़े हैं या इनमें रुचि रखते हैं, तो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 29 यानी आज और 30 जून दो दिन सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक लगा है ब्यूटी एक्सपो, जहां पर मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर के लाइव डेमो सेशंस होंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, साथ ही ब्यूटी उद्योग से जुड़े प्रोफेशनल्स से भी आप मिल सकते हैं। यहाँ पर एंट्री के लिए आपको ₹1500 रजिस्ट्रेशन शुल्क काउंटर पर ही देना होगा। तो जाइए और अपने हुनर को तराशिए, ताकि किसी की खूबसूरती में आप 4 चांद लगा सकें।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। और आइए अब बात करेंगे इंडियन सुपर फूड के नाम से पहचान बनाने वाले मीठे रसीले फूल महुआ की। पहले पहल आदिवासी समुदायों द्वारा इसे उपयोग किया जाता था और आज ये महुआ उन परिवारों की आजीविका भी बन रहा है। हाँ, हम लोग थोड़ा थोड़ा इससे दूर हो चुके हैं, लेकिन अब समय है इसके पास जाने का और इसे अपनी प्लेट तक लाने का। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों में मिलने वाला ये फूल अब पारंपरिक उपयोग से आगे पहचान पा रहा है। आदिवासी समुदाय, ग्रामीण स्त्रियां और स्वयं सहायता समूह इसकी मदद से लड्डू, सिरप, कुकीज और अन्य उत्पाद जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। महुआ के फूल, फल, तेल और छाल सहित लकड़ी के भी अपने अलग अलग और विशेष लाभ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसमें

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं अनपढ़ फिल्म से और जिसे गा रही हैं लता मंगेशकर जी। तो आज का घर आंगन कार्यक्रम जो है वो हमें यहीं संपन्न करना पड़ेगा क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें आगे आपसे बात करने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन अगली मुलाकात आपसे ज़रूर होगी, जल्दी होगी इसी कार्यक्रम में घर आंगन के साथ। सुनते रहिए इसे और जुड़े रहिए और मुझे दीजिए अनुमति, यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

कि देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का। श्रोताओं, साल 2000 में हिंदी सिनेमा एक नए दौर में कदम रख रहा था और इसी दौरान एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार दिया, रोमांस को एक नया चेहरा दिया और युवाओं के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जिसका जादू आज भी बरकरार है।

0: जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार है की। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि प्यार, जुदाई, रहस्य और रोमांच का एक ऐसा सफर था जिसने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और आखिरी पल तक अपनी सीटों से बांधे रखा। एक तरफ मासूम प्यार की खूबसूरती तो दूसरी तरफ रहस्य और रोमांच का ऐसा मेल जिसने इस फिल्म को अपने दौर की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल कर दिया। फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था राकेश रोशन ने, जबकि इसकी कहानी और पटकथा को आकार देने में मशहूर लेखिका हनी ईरानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस फिल्म के जरिए राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को बड़े पर्दे पर लॉन्च किया, लेकिन शायद उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये डेब्यू हिंदी सिनेमा के सबसे सफल डेब्यू में से एक बन जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसने फिल्म की रिलीज से पहले ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली।
1: ओए, कहाँ जा रहे हो तुम?
2: मैकडॉनल्ड से हैमबर्गर लाने जा रहा हूँ, तुम खाओगी?

जी हाँ श्रोताओं, कहो ना प्यार है ये आज की फिल्म है और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और आपको बताते हैं एक दिलचस्प किस्सा जिसने बॉलीवुड को एक नई सुपरस्टार हीरोइन और एक हीरो दिया। जब इस फिल्म की तैयारी चल रही थी तब करीना कपूर को इसकी लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया था। उनकी और ऋतिक की जोड़ी को लेकर काफ़ी उत्साह था। करीना ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। राकेश रोशन ने मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में बड़ा सेट लगवाया था और एक गाने की शूटिंग से शुरुआत करने वाली थी, लेकिन फिर कुछ मतभेद के कारण मुख्य शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 4 दिन पहले करीना ने फिल्म छोड़ दी। अब सोचिए, सेट तैयार था, लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, टीम के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। इस बीच किस्मत से ने एक नया मोड़ लिया। एक शादी समारोह में राकेश रोशन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त अमित पटेल से हुई। उनके साथ उनकी बेटी अमीषा पटेल भी थी। राकेश रोशन को अमीषा स्क्रीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। उन्होंने पूछा कि क्या वे फिल्मों में काम करना चाहेंगी और यहीं से अमीषा पटेल की बॉलीवुड यात्रा शुरू हो गई। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। आज भले ही वे सुपरस्टार हों लेकिन उनका सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। वे काफ़ी शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। खुद को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने घंटों डांस की प्रैक्टिस की, एक्टिंग सीखी और अपनी आवाज़ पर खूब मेहनत की। इस फिल्म में ऋतिक के 2 बिल्कुल अलग किरदार निभाने का मौका मिला था। एक तरफ मासूम और भावुक रोहित तो दूसरी तरफ आत्मविश्वासी और आकर्षक राज। राकेश रोशन चाहते थे कि दर्शक एक ही फिल्म में ऋतिक की एक्टिंग, डांस और एक्शन तीनों का पूरा जलवा देखे। अपने फिजिक पर काम करने के लिए ऋतिक ने सलमान खान की भी मदद ली थी और ऋतिक ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो जो हुआ वो तो इतिहास ही।

बन गया। ऋतिक रोशन रातों रात देश भर के युवाओं के दिलों की धड़कन बन गए। कहा जाता है कि उन्हें लगभग 30,000 शादी के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन लाखों दिलों की धड़कन बन चुके ऋतिक ने जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन खान से शादी कर ली और अपने फैंस का, खासकर महिला फैंस का दिल थोड़ा सा तोड़ दिया। और इसी तरह एक फिल्म में ने बॉलीवुड को दो नए सितारे दिए, ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। वहीं सहायक कलाकारों की मजबूत टीम में दिलीप ताहिल, मोनीश बहल, आशीष विद्यार्थी, सतीश शाह और फरीदा जलाल जैसे अनुभवी कलाकार शामिल थे, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाया। तो चलिए संगीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से एक और गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी कोई बहुत अनोखी नहीं थी, लेकिन इस फिल्म को पर्दे पर पेश करने का जो तरीका था वो अनोखा था, और इसका जो हीरो था वो बिल्कुल अनोखा था। कहानी में एक जैसी शक्ल वाले दो युवक रोहित और राज, एक ही लड़की सोनिया की ज़िंदगी में अलग अलग समय पर आते हैं, और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, इंसान को ज़िंदगी में प्यार कई बार हो सकता है, लेकिन हर बार उसकी वजह और एहसास

अलग होती हैं। सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। रोहित उसकी ज़िंदगी में मासूम मोहब्बत बनकर आता है, जबकि राज उस समय उसका सहारा बनता है जब वो अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही होती है। इसके बाद कहानी प्यार, रहस्य और रोमांच की ऐसे सफर पर निकलती है जहां कई छिपे हुए राज सामने आते हैं। तो श्रोताओं, अगर ये राज आपको भी जानना है तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। ये आपको उस दौर में ले जाएगी जब फिल्मों में रोमांस की मासूमियत, गीतों की मिठास और कहानियों का जादू कुछ अलग ही हुआ करता था। तो चलिए इसी जादू को महसूस करते हैं इस सॉन्ग के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, किसी भी फिल्म की सफलता में उसकी कहानी और कलाकारों का योगदान तो होता ही है, लेकिन कहो ना प्यार है कि कामयाबी में इसके संगीत ने भी उतनी ही अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार राजेश रोशन ने, वहीं इसके गीत इब्राहिम अश्क, सावन कुमार टाक और विजय अकेला ने लिखे थे। खास बात ये थी कि फिल्म का संगीत उस दौर के युवाओं की पसंद और भावनाओं को बेहद ही खूबसूरती से छुआ था। राकेश रोशन ने इस फिल्म के जरिए अपने पुराने दोस्त महमूद के बेटे लकी अली को भी बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर एक बड़ा मौका दिया। उस समय लकी अली अपने पॉप एल्बम की वजह से युवाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय थी। फिल्म में

उन्होंने दो गाने गाए और दोनों ही गाने लोगों के दिलों में बस गए। खास तौर पर उनका सूफियाना अंदाज फिल्म के संगीत को एक अलग ही पहचान देता है। इसके अलावा उदित नारायण, कुमार शानू और बाबुल सुप्रियो जैसे शानदार गायकों ने भी ऋतिक रोशन के किरदार को अपनी आवाज़ दी। गीतों के बोल और धुनों का ऐसा मेल बना कि एल्बम का लगभग हर गाना सुपरहिट साबित हुआ। फिल्म के संगीत को लॉन्च करने का कार्यक्रम भी खास रहा। राकेश रोशन के करीबी दोस्त जितेंद्र और ऋषि कपूर ने अंधेरी के द क्लब में इसका म्यूजिक रिलीज किया था और फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके गाने हर तरफ सुनाई देने लगे। साल 2000 में कई बड़ी फिल्मों के म्यूजिक एल्बम को पीछे छोड़ते हुए कहो ना प्यार है के लगभग 1 करोड़ म्यूजिक एल्बम और कैसेट बिके थे। ये अपने आप में एक बड़ा ही रिकॉर्ड था। तो आइए अब सुनते हैं इसी फिल्म का एक ऐसा ही गीत जिसने लाखों दिलों को धड़कना सिखाया।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारे पास हमारे प्यारे श्रोताओं का मेल आ गया है, उसे हम पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। और हम आगे बढ़ते हैं और ये मेल आया है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का, स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुनरूर, गुलराल और विराज जी का आया है ठाकुरा वाला से। और ये है वीरम गांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार, प्रमिला भावसार। और ये है कुमकुम जी विजय रतनमाला मोताला महाराष्ट्र से। और संदीप मक्कर जी का आया है ज्योति मन्नत भारत, कमल सहानी पिंगा वाला चौक, जालंधर पंजाब से। और ये हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी। और इंद्रानगर भवरपुर से राधेश्याम और राजू, चंपा और जगदीश का, दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का।

ये मेल आया है राकेश रोशन, ये लिखते हैं राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है बेहद सुपरहिट फिल्म है और आपकी प्रस्तुति लाजवाब है, धन्यवाद आपका। सुरेश यादव, अनीता यादव, सोनल प्रसाद यादव और नेहरू चौक से

और ये मेल आया है हमारे पास पीएस निर्मला विशाल नारायण सोपान और आशीष का, और ये हैं महाराष्ट्र से।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अब हम पहुंच चुके हैं फिल्म के आखिरी पड़ाव पे। श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है कहो ना प्यार है से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातों को बताने का। फिल्म की कहानी का अंत कैसे हो, इसे लेकर मेकर्स काफ़ी सोच विचार कर रहे थे। यही वजह है कि फिल्म के लिए दो अलग अलग एंडिंग शूट की गई, और एक एंडिंग में राज की मौत हो जाती है और सोनिया अकेली रह जाती है, जबकि दूसरी एंडिंग में राज बच जाता है और दोनों की प्रेम कहानी खुशी खुशी पूरी होती है। आखिरकार राकेश रोशन और उनकी टीम ने दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हैप्पी एंडिंग को चुना, और शायद यही फैसला दर्शकों के दिलों तक फिल्म को और गहराई से पहुँचाने में कामयाब रहा। श्रोताओं, साल 2000 में रिलीज़ हुई कहो ना प्यार है सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बन गई जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 80 करोड़ रुपए का कारोबार किया और उसी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पुरस्कारों की बात करें तो इस फिल्म ने एक नया इतिहास रच दिया। ऋतिक रोशन को इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों पुरस्कार मिले, जो अपने आप में एक अनोखी उपलब्धि थी। इतना ही नहीं, कहो ना प्यार है ने कुल 92 पुरस्कार जीते। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने में भी अपना नाम दर्ज कराया। ये अपने दौर की सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। आज भी ये फिल्म अपनी बेहतरीन कहानी, डांस और संगीत के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो चलिए, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के लास्ट सॉन्ग की तरफ।

श्रोताओं, हमारे कुछ श्रोता अभी भी हैं, वो हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। तो इसी के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम फिर हाजिर होंगे दिन के 2:30 पर एक ही कलाकार प्रोग्राम लेके। तब तक आप अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स ते भारत एक

0: पेश करेंगी। हुकूमत ने कारोबार में सहूलत पैदा करने की गर्ज से तरीक़ेकार को बेहतर बनाने से मुतालिक एक नोटिस मुतारिफ कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आम्मा की एक अर्जदाश्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है, जिसमें राम मंदिर अतियात के केस में मुबैना माली बेजाब्तियों की छानबीन अदालत की निगरानी में कराने की दरख्वास्त की गई थी। हरियाणा और राजस्थान ने आज अमित शाह की मौजूदगी में जमुना के पानी की तकसीम से मुतालिक एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली में वोटरों की खसूसी जामे नजरसानी मुहिम SIR के तहत वोटरों को इलेक्टोरल फॉर्म्स घर घर जाकर तकसीम किए जाने का अमल कल से शुरू होगा। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल के आखिर से पहले तक बांग्लादेश वापस चली जाएंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में लॉस एंजलिस में खेले गए पहले नॉकआउट मैच में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ह पुलिस दस्तों और रियासत व मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अता करेंगी। ये इनामात मुसल्ह दस्तों, मरकजी पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शुमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दियों वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदामात उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अता किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनाकिद की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के अपने दौरे के तीसरे दिन आज विक्टोरिया में नवाशक्ति विनय नगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां भारत निजात अफराद से मुलाकात भी की। बाद में वजीर आजम ने पीस पार्क में वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलाए अकीदत नजर किए। जनाब मोदी सेशल्स का अपना 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। कल वजीर आजम मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वजीर आजम हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक मार्चिंग दस्ते ने शिरकत की। इसके अलावा भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। खैर सगाली के एक खसूसी जज्बे के तौर पर INS तरकश और INS इश्क शाक को पोर्ट विक्टोरिया पर लगनअंदाज किया गया, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाज़ा होता है। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहरीन खत्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहद की भी अक्कासी होती है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़ुज़ और पायदार तरक्की के शोबे में क़यादत पर सेशल्स के आला तरीन एवार्ड गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने सेशल्स की कौमी असम्बली से भी खिताब किया, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेशल्स और भारत ऐसी दुनिया के क़याम के ख्वाहिशमंद हैं जहाँ तरक्की के फ़ायदे सबको हासिल हों और जहाँ बैन अल-अक़वामी इदारों में असर हाजिर के हक़ाइक की अक्कासी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मफाद आम्मा में दायर की गई उस दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जानिब से चढ़ावा वसूल किए जाने में मुबैना माली बेजाबतियों की अदालत की निगरानी में तहकीकात और फोरेंसिक ऑडिट कराए जाने की दरख्वास्त की गई है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की एक बेंच ने हिदायत दी है कि इस दरख्वास्त को उस फहरिस्त में शामिल किया जाए जिस पर गर्मी की तातील के बाद अदालत के दोबारा खुलने के बाद सुनवाई होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के दरमियान पानी की तकसीम

0: वोटरों को इलेक्टोरल इनुमरेशन फार्म तकसीम किए जाने का काम कल से शुरू होगा। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओज कल से अगले महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर इनुमरेशन फार्म तकसीम करेंगे और मजाज वोटरों से पुरकरवा कर वसूल करेंगे। जनाब कुमार ने बताया कि 5 अगस्त और 4 सितंबर के दरमियान दावे और इतराजात पेश किए जा सकते हैं। हतमी वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। उन्होंने बताया कि राय दहिंदगान इनुमरेशन फार्म www.voters.eci.gov.in पर भी ऑनलाइन पुर कर सकते हैं। आला इंतखाबी अफसर ने सभी मजाज राय दहिंदगान से जोर देकर कहा है कि वो बीएलओज के साथ तआवुन करें और मुकर्रर वक्त के अंदर अपने फॉर्म जमा कराएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो इस साल के खत्म होने से पहले बांग्लादेश वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों, सजाए मौत और अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद वो ये कदम उठाएंगे। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी अगराज पर मबनी बताया और मौजूदा हुकाम पर इल्ज़ाम लगाया कि बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे से अवामी लीग का वजूद खत्म करने के लिए अदलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ने जनविश्वास तरमीमी एक्ट 2026 के जरिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत एक इम्प्रूवमेंट नोटिस तरीक़ेकार का आगाज़ किया है। नए निज़ाम में पहली बार ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबारियों को ये छूट दी गई है कि वो सज़ा की कार्रवाई शुरू किए जाने से पहले खामियों को दूर कर दें। सार्फिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि इसका मकसद रजाकाराना तौर पर ज़ाब्तों की पाबंदी करने और मुकदमात को कम करने की हौसला अफजाई करके कारोबार में आसानी को फ़रोग देना है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट में राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के सदर नशी सीपी राधा कृष्णन ने जनाब खड़गे को हलफ दिलाया। अमेरिका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहक हो गया था और अब नाए हुरमुज से मुतालिक तनाज़े को हल करना है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमेरिका के लॉस एंजल्स में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। कनाडा के खिलाड़ी स्टेफिनो स्टीक्यो ने इजाफी वक्त के दूसरे निस्फ की दूसरी मिनट में फैसलाकुन गोल किया। फीफा आलमी कप 2026 के मेजबान मुल्कों से एक कनाडा ने आखिरी मिनटों में मजबूत दिफा का मुजाहरा किया। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक अवार्ड पेश करेंगी। हुकूमत ने कारोबार में सहूलत पैदा करने की गर्ज से तरीक़ेकार को बेहतर बनाने से मुतालिक एक नोटिस मुतारिफ कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आम्मा की एक अर्जदाश्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया जिसमें राम मंदिर अतियात के केस में मुबैना माली बेजाब्तियों की छानबीन अदालती निगरानी में कराने की दरख्वास्त की गई थी। हरियाणा और राजस्थान ने आज अमित शाह की मौजूदगी में जमुना के पानी की तकसीम से मुतालिक एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली में वोटरों की जामे नजरसानी मुहिम SIR के तहत वोटरों को इलेक्टोरल फॉर्म्स घर घर जाकर तकसीम किए जाने का अमल कल से शुरू होगा। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल के आखिर से पहले तक बांग्लादेश लौट जाएंगे। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. 3-decade pending Yamuna water sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current Class 10 batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow.

0: अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर

0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
4: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने दिन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीतकार की जिनकी कलम ने कई सुंदर गीत लिखे। 1 अक्टूबर 1932 को कानपुर में इनका जन्म हुआ और इसी गंगा जमुनी तहजीब के माहौल में उनका बचपन बीता। स्कूल के दिनों से ही इन्हें शायरी और कविता लिखने का शौक था, फिर आगे चलकर ये एक

जी हाँ श्रोताओं, शायद आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ गौहर कानपुरी साहब की। बचपन से ही इन्हें गीत और उर्दू शायरी लिखने की दीवानगी थी। यही दीवानगी इन्हें कानपुर से मुंबई लेकर गई, पर सपने पूरे करने का रास्ता आसान नहीं था। मुंबई पहुंचकर इन्होंने सालों तक संघर्ष किया। करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1967 में पहला ब्रेक मिला। फिल्म प्यार की बाजी में अपना पहला गाना लिखा। संगीतकार जिमी के डायरेक्शन में इन्होंने हसीनों का दीदार करना बुरा है टाइटल से एक कव्वाली लिखी जो बहुत मशहूर हुई। गौहर साहब उर्दू शायरी से प्रेरित थे और फिल्मी गीतों में इसकी खुशबू भर देते थे। कानपुर से मुंबई तक का सफ़र आसान नहीं था, पर इनकी कलम कभी रुकी नहीं। तो चलिए सुनते हैं फिल्म जख्मी से इनका ये दिल को छू लेने वाला गाना।

जी हाँ श्रोताओं, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। और ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है और अपने समय में ये गीत बहुत हिट भी हुई थी। श्रोताओं, गौहर साहब अपने कानपुर की पहचान को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे कानपुरी पेन नेम जोड़ा। गौहर साहब को शुरुआत में एक दो गाने ही मिलते थे। एक फिल्म के दौरान इनकी मुलाकात बप्पी लहरे से हुई। बप्पी लहरे उस समय बहुत सी फिल्मों में म्यूजिक दे रहे थे। दोनों की जोड़ी बाद में कई हिट गीतों की बनी, लेकिन असली सफलता 1975 में जख्मी फिल्म से मिली, जिसका गाना अभी आपने सुना। ये पहली फिल्म थी जिसमें गौहर साहब ने पूरे गाने अकेले लिखे थे। जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, अभी अभी थी दुश्मनी दोस्ती हो गई, जैसे गाने सुपरहिट हो गए। दोस्तों, सालों के संघर्ष के बाद एक फिल्म ने सब बदल दिया। गौहर साहब के गीतों में रोमांस था, दर्द था और ज़िंदगी की हकीकत भी थी। दूसरी तरफ बप्पी दा के साथ इनकी जोड़ी ने तो कमाल कर दिया। संग्राम, हैवान, फिर जन्म लेंगे हम जैसी फिल्मों के गीत लिखकर इन्होंने खुद को एक बेहतरीन गीतकार बनाया। तो चलिए अब सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं गौहर कानपुरी और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, सावन को आने दो फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग जो था बहुत पॉपुलर हुआ। जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज़ में ये गाना सुनकर लोग भावुक हो जाते थे। गौहर साहब की कलम से जो प्यार और भावनाओं की खूबसूरती बयां होती थी, इनकी और बप्पी लहरी की जोड़ी ने 70 के दशक में कई यादगार गीत दिए। इसके अलावा इन्होंने नदीम श्रवण, राम लक्ष्मण और अनु मलिक

के साथ भी काम किया। गौहर साहब का स्टाइल क्लासिक था, इनके गीतों में गहराई थी जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। हालांकि बड़े नामों के साथ काम करने के बावजूद उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला जिसके ये हकदार थे, लेकिन उन्हें मुशायरों के लाइव मंच पर ज़्यादा सुकून और कामयाबी मिली। वे मुंबई की लाइमलाइट से ज़्यादा मुशायरों के मंच पर जनता से सीधे जुड़ना पसंद करते थे। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, और ये जो फिल्म है उसका नाम है दुल्हा बिकता है।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं गौहर कानपुरी। दोस्तों, आगे चलकर 80 के दशक में भी गौहर कानपुरी साहब ने गीत लिखने का काम जारी रखा। जख्मी इंसान, बेसहारा, फकीर बादशाह, आखिरी मुकाबला जैसी फिल्मों के गाने लिखे। फिर 90 के दशक में भी फिल्म जान तेरे नाम और बाजीगर फिल्म का ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरी जाने जान जैसे अमर गीत लिख डाला। शाहरुख खान की फिल्म का ये गाना आज भी लोग सुनते हैं। गौहर साहब ने करीब 300 गाने 120 फिल्मों के लिए लिखे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वे लाइमलाइट से दूर ही रहते थे। बावजूद इसके गौहर साहब ने ये साबित किया कि अच्छे शब्द हमेशा याद रहते हैं। चलिए इन्हीं की याद में सुनते हैं अगला गीत फिल्म जान तेरे नाम से, जिसे इनकी कलम से लिखा था इन्होंने। कुमार शानू की आवाज़ में गाया ये गीत उस दौर का सबसे बेहतरीन रोमांटिक और दर्द भरे गानों में गिना जाता था।

जी हाँ दोस्तों, इन गानों में जो खूबसूरती थी, जो लफ्ज़ों को बयां करने का तरीका था, वो बिल्कुल अलग था, निराला था। गौहर साहब का करियर 25 साल से ज़्यादा चला। इन्होंने न सिर्फ फिल्मी गीत लिखे बल्कि भजन और गज़लें भी लिखी। इनकी कलम से निकले शब्द सरल थे लेकिन गहरा असर छोड़ जाती थी। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं जैसे गाने बच्चों को भी बहुत पसंद आए। ये एक मजबूत और मेहनती इंसान थे। 10 साल इंतज़ार के बाद ब्रेक मिला, फिर भी लगातार मेहनत करते रहे। गौहर साहब की ज़िंदगी सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, धैर्य और मेहनत ज़रूरी है। इनके गीत आज भी रेडियो यूट्यूब पर सुनाई देते हैं। नई पीढ़ी को पता चलता है कि 70 और 80 के दशक का जो संगीत था वो कितना खूबसूरत था। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं जख्मी फिल्म का ये बेहतरीन सा गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं गौहर कानपुरी, और आपके मेल हमारे पास आ चुके हैं, तो मेल भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। और ये आया है अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णलाल खत्री, मोहम्मद जफर सादिक, शंकर गुल शर्मा, और ये हैं हमें ईमेल करते हैं, और इनके साथ हैं बागपत से ममता और संजय ढींगिया मेरठ से, और नवाब खान हैं मुंबई से, नवाब खान, इशरत मास्टर अजहर खान और अजीम खान, और साथ में है धनोरी तेलीवाल उत्तराखंड से, निसार सलामी, नौसाद सलामी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और ये लिखते हैं कि ये कार्यक्रम सुन रहे हैं।

हमारे साथ जुड़ चुके हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना, और ये है हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा से, और ये लिखते हैं कि ये गौहर कानपुरी जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुन रहे हैं, गौहर कानपुरी जी के गीत और उनकी फिल्मी सफ़रनामा पर रोचक जानकारी पसंद आ रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है राजकुमार डूंडी जी, और ये है गांव नथाना पंजाब से हरिचिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, और ये वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और गुरमंत कौर मनु, और ये हैं हमारे साथ कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। ये हम आपको बता दें कि गौहर कानपुरी साहब वो राइटर थे जिन्होंने जीवन के लगभग हर रंग को कागज़ पर उतारा था। इनकी सबसे खास बात ये थी कि इनके लफ्ज़ बेहद आसान हुआ करते थे, पर कलम का ये जादूगर आज ही के दिन यानी 29 जून 2002 को हम सभी को छोड़कर चला गया, पर आज भी इनके गीत लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। गौहर कानपुरी जी की विरासत भारतीय साहित्य और सिनेमा में हमेशा अमर रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले शो में आपको ऐसे ही किसी खास कलाकार के बारे में अनसुनी बातें बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और आप ये कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनने का मज़ा लीजिए, और कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे होगा मैटिनी शो और वो पेश करेंगी हमारी साथी का आरजे प्रीति त्यागी जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 3 बज चुके हैं और वक्त हुआ है कार्यक्रम मैटनी मेलेडीज़ का। जी दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट दोस्त प्रीति त्यागी कार्यक्रम मैटनी मेलेडीज़ में। दोपहर का ये वो वक्त है जो कि थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि इस वक्त में ना तो सुबह की तरह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, ना ही रात की तरह सन्नाटा होता है। बस एक थोड़ा सा ठहराव होता है, और उस ठहराव के बीच में अगर हम वो खुश मिजाज या वो खुशनुमा गीत संगीत सुने जो कि हमारे दिल को तरोताज़ा कर दे, तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम मैटनी मेलेडीज़ में आज हम आपको लेकर जाएंगे बॉलीवुड के उसी सुनहरे दौर में, जहाँ पर जो गीत और संगीत थे वो लोगों के दिलों को एकदम छू जाते थे। तो करते हैं शुरुआत किशोर कुमार की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

बिल्कुल, हमारा दिल यूं ही गाता रहेगा क्योंकि आज का जो ये सेगमेंट है मैटिनी मेलोडीज, उसमें हम ऐसे समंदर में आप लोगों को गोते खिलाएंगे, उस वक्त में ले जाएंगे जिस काल को कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री का स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन पीरियड। और जब ये वो वक्त था जब गानों में न सिर्फ आवाज़ होती थी बल्कि रूह हुआ करती थी, जान हुआ करती थी। जब उस दौर का अगर हम जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में एक त्रिमूर्ति का नाम उभर कर आता है, एक ऐसा चेहरा जिसके गम में भी एक अदा थी, जिन्हें जमाना कहता था दिलीप कुमार। ऐसी आँखें जिसमें पूरी दुनिया का फलसफा और मासूमियत थी, नीली आँखें, जी हाँ समझ गए होंगे ना, जी हाँ राज कपूर साहब, और एक ऐसा अंदाज जिसकी मुस्कराहट पर पूरा जमाना अपनी धड़कने हार जाता था, जिन्हें हम सब प्यार से देवानंद कहते हैं। तो दोस्तों, इन सितारों ने न सिर्फ पर्दे को सजाया बल्कि हमारे जो पुरानी पीढ़ी है, जो हमारे माता पिता हैं, उन सभी को मोहब्बत करना सिखाया। तो थाम के बैठ जाइए अपने चाय के कप, कुर्सी पर आराम से बैठिए और मैटिनी मेलोडी में आज सजेगी इन्हीं तीनों शहनशाहों की महफिल। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सफ़र में सुनते हैं ये खूबसूरत सी आवाज़ जिसकी खनक आपकी कानों में मिश्री घोल देगी। तो लीजिए सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज़ में।

दोस्तों, अगर हम बात करें दिलीप कुमार साहब यानी कि ट्रेजेडी किंग की, तो उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में ज़रूर बात करेंगे जिसके गानों ने थिएटरों में तालियों की गूंज पैदा कर दी थी। और साल था सन 1957, फिल्म नया दौर। मोहम्मद रफ़ी साहब की बुलंद आवाज़ और ओपी नैयर साहब का वो तांगे की थाप वाला बेमिसाल संगीत, सुनवाते हैं आपको वही संगीत। और आप सभी से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी इस त्रिमूर्ति के बारे में कुछ बातें या उनसे उनके फिल्मों से जुड़े हुए कुछ किस्से आपके पास हैं, आपकी यादें हैं, तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ में। और शेयर किस तरह से करना है वो तो आपको मालूम ही है। हमें रहेगा इंतज़ार आप सभी के संदेशों का।

है दोस्तों, इस गाने में वो तांगे की आवाज़ आज भी हमारे पैरों को नाचने के लिए मजबूर कर देती है। और दिलीप साहब का वो देसी अंदाज इस गीत में वाकई, और ऊपर से उनके चेहरे की वो प्यारी सी मासूमियत वाकई में लाजवाब। चलो, गम और संजीदगी के बाद अब रुख करते हैं उस इंसान की तरफ जिसने बॉलीवुड या कहें कि इंडियन सिनेमा को दिलाई एक इंटरनेशनल पहचान, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने वाले। जी हाँ दोस्तों, हमारी इसी त्रिमूर्ति के दूसरे पिलर राज कपूर साहब। राज कपूर साहब का जो कैनवस था, फिल्मों को लेकर उनका जो नज़रिया था, उनकी जो सोच थी वो एकदम अलग थी, और उनकी जो फिल्मों का संगीत होता था वो तो वाकई दिल को छू जाता था, क्योंकि उनके साथ जुड़े थे शंकर जयकिशन साहब, और साथ ही मुकेश जी की वो रूहानी आवाज़ जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। वैसे पता है, कहते कि जब राज कपूर साहब रूस गए तो वहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन सड़क पर चलते हुए अगर रूसी लोग राज कपूर साहब को देखते तो उन्हें देखकर गाना गाते थे, आवारा हूँ। चलिए तो दोस्तों, आज हम आवारा तो नहीं, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म अनाड़ी का वो बेहद ख़ास सा गाना आपको सुनवाते हैं जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हमें सिखाता है। मुकेश जी की आवाज़ में वो प्यारा सा गीत, किसी की मुस्कराहट।

0: बर्थडे।
1: जी दोस्तों, जीना इसी का नाम है। वाकई राज साहब ने इस एक लाइन में जिंदगी का पूरा सार, पूरा फलसफा हमें बता दिया। जी हाँ, तभी तो, यही तो उनकी खासियत थी। उनकी फिल्मों में जो संगीत होता था वो फिल्म की जान हुआ करता था। चलिए, देसी अंदाज और सादगी की बातें हो चुकी हैं तो महफिल में स्टाइल का तड़का लगना भी ज़रूरी है, और स्टाइल के मामले में जो हमारे तीसरे लेजेंड हैं उनकी तो कोई भी सानी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, झुक के चलना, तेज़ी से डायलॉग बोलना और आँखों से शरारत करना, समझ गए होंगे ना आप। जी हाँ दोस्तों, एवरग्रीन देवानंद साहब। देवानंद साहब के बारे में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। फिल्म काला पानी, जो कि 1958 में आई थी, उस दौरान जब वो काला कोट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए दीवानी हो जाती थी। यहाँ तक कि कोट को उनके काले कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगानी पड़ी। तो ऐसे थे हमारे स्टाइल आइकन देवानंद साहब। और जब देवानंद साहब के गानों की बात हो तो किशोर कुमार और SD बर्मन साहब के बिना तो भाई बात ही नहीं बनती। तो चलिए इस जो शो को आगे चलाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा प्यारा प्यारा सा गीत।

साहब जो कि माने जाते थे स्टाइल आइकन, और उनकी जो खूबसूरती थी उसका कुछ अलग ही चार्म था। और उसी टाइम का एक किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब ये जो तीनों स्टार्स थे अपने कामयाबी के एकदम टॉप पर थे, एकदम शिखर पर थे, और ऐसे वक्त का एक किस्सा है कि एक शाम राज कपूर साहब अपनी गाड़ी से मुंबई के लिंकिंग रोड से गुजर रहे थे और उनकी नज़र अचानक से गई देवानंद साहब पर, जो कि हमेशा की तरह डिज़ाइनर शर्ट, हाथ में सिगरेट लेकर कुछ सोच रहे थे। राज साहब ने देवानंद साहब को देखते ही सर बाहर निकाला और ज़ोर से चिल्लाए, ओए देव, तू इतना हैंडसम क्यों है यार। और राज साहब देवानंद को देखने में इतना खो गए थे कि उन्होंने अपने स्टेयरिंग पर ध्यान ही नहीं दिया और उनकी जो गाड़ी थी वो फुटपाथ पर चढ़ते चढ़ते बची। देवानंद साहब हंस पड़े और उन्होंने राज साहब को गले लगाया। ये था उन तीनों के, या कहें कि इन दोनों के बीच का प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम मैटनी मेलेडी के साथ और आज हमने बात की उन तीन शहंशाहों के बारे में जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया, एक अलग ही ऊंचाइयों पर लेकर गए। और दोस्तों, उन दोनों के, या कहें कि उन तीनों के बीच में जो प्यार था वो भी एक अलग ही एहसास वाला था। और आज के दौर में अगर हम देखें तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उस दौर में जब राज कपूर साहब देवानंद जी को बोलते हैं कि तू इतना हैंडसम क्यों है और इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। अब वही एक किस्सा देवानंद साहब और दिलीप कुमार जी का भी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देवानंद साहब और दिलीप कुमार जी की एकमात्र फिल्म है जो कि सन 1955 में आई थी और उस फिल्म का नाम था इंसानियत। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार और देवानंद साहब ने एक साथ शेयर की थी स्क्रीन। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद साहब हमेशा बहुत ही जल्दबाजी में रहते थे, डायलॉग फटाफट बोलते थे, और दिलीप कुमार साहब बिल्कुल इसके अपोजिट अपनी गंभीर और ठहर ठहर कर, रुक रुक कर अभिनय करने की शैली खेले जाने जाते थे। और शूटिंग के दौरान एक दिन दिलीप साहब ने देवानंद साहब के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि देव, तुम्हारी जो ये बेफिक्री और तेजी है ना, इसे कभी मत छोड़ना, ये तुम्हारी ताकत है। मैं पर्दे पर रोकर लोगों का दिल जीतता हूं और तुम अपनी मुस्कुराहट के साथ लोगों का दिल जीतते हो। और देव साहब ने इस बात को गांठ बांध लिया और ताउम्र अपनी फिल्मों में वो इसी जिंदा दिली के साथ में रहे। तो दोस्तों, कार्यक्रम मैटनी मेलेडी में मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, लेकिन जाने से पहले ये कुछ संदेश हैं जो कि हम तक आए हैं, उनको ज़रूर मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल छीपा पूजा परिहार के साथ। और ये अगला संदेश सुदर्शन मुखी अनिता सिमरन जी ने भेजा शांतिनगर सोनीपत से। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे वो संदेश जिनके जरिए हमारे सभी श्रोता हम तक जुड़े। तो अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति और छोड़े जाती हूँ आप सभी के साथ इंसानियत फिल्म से खूबसूरत से गीत के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 3:30 हुए हैं, वक्त हुआ है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

उर्दू मजलिस के सभी सामेईन की खिदमत में नसरीन बेगम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम सदाए सुखन। सामेईन, अदब व शायरी किसी भी कौम की तहजीब व सकाफत की आईनादार होती है। अदीब व शायर अपने कलम

के ज़रिए माशरे की रहनुमाई करते हैं और इंसान के एहसासात, जज्बात और ख्यालात को अल्फाज का जामा पहनाते हैं। उनकी तख्लीकात न सिर्फ इल्म और आगही का जरिया बनती हैं बल्कि माशरती इसलाह और फिक्री बेदारी में भी अहम किरदार अदा करती हैं। उनकी सदाए सुखन जमानों तक गूंजती है और आने वाली नस्लों की रहनुमाई करती है। ऐसे ही एक अदीब तंजो मजा निगार कन्हैया लाल कपूर हैं। कन्हैया लाल कपूर 27 जून सन 1910 में लॉयलपुर में पैदा हुए और 5 मई सन 1980 में पूना महाराष्ट्र में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने उर्दू तंजो मजा को एक नई जहत अता की और अपनी शगुफ्ता, बर्जस्ता और फिक्र अंगेज तहरीरों की बदौलत अदब में नुमाया मकाम हासिल किया। उनकी तहरीरों में समाजी बुराइयों, इंसानी कमजोरियों और माशरती तजादात पर हल्के फुल्के मगर मौसर अंदाज में तंज मिलता है। कन्हैया लाल कपूर का मुताला वसी था। अंग्रेजी अदब से उन्हें शनासाई हासिल थी। फितरत इंसानी से वो बखूबी वाकिफ थे। हर जमाने के लोग उनकी तसनीफ से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। फलसफा कनात, कामरेड, शेख चिल्ली इसी तरह के मजामीन हैं। अदबी मौजूआत में चीनी शायरी और गालिब जदीद शोरा की मजलिस में मयारी मजामीन हैं। उनकी मशहूर तसानीफ संगो खिश्त, चंगो रबाब, शीशा उतीशा, बालो पर, गुस्ताखियाँ वगैरह है। इन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आइए सामीन बेगम अख्तर की आवाज़ में गजल सुनते हैं। कलाम है तस्कीन कुरैशी का।

सामीन, अभी आप बेगम अख्तर की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था तस्कीन कुरैशी का। शाम गम की सहर नहीं होती, शाम गम की सहर नहीं होती, या हमी को ख़बर नहीं होती। हमने सब दुख जहाँ के देखे हैं, हमने सब दुख जहाँ के देखे हैं, बेकली इस कदर नहीं होती। ईशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। ईशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। सामईन, ये अशार इब्ने ईशा के हैं। इब्ने ईशा उर्दू अदब के एक मुमताज़ शायर, अदीब, कालम निगार, सफ़रनामा निगार थे। उनका असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। वो 15 जून 1927 को ज़िला जालंधर में पैदा हुए। उनका इंतकाल 11 जनवरी 1978 को लंदन में हुआ। इब्ने ईशा उर्दू में अपनी सादा, दिलकश और तंजिया अंदाज तहरीर के लिए मशहूर हैं। उनकी शायरी में मोहब्बत, जुदाई, वतन से वाबस्तगी और इंसानी जज्बात की अक्कासी मिलती है। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। आइए सामीन, जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है इब्ने ईशा का।

सामीन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था इब्न इंशा का। सामीन, इब्न इंशा देश देश नगर नगर घूमे। उन्होंने जहाँ कुछ देखा वहीं उसे कलम बंद करके छपने भेज दिया। उन्होंने खूब लिखा। उर्दू की आखिरी किताब और खुमारे गंदुम काबिल ज़िक्र है। उनके सफ़रनामे, आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर वगैरह उर्दू अदब का कीमती सरमाया हैं। उनके शेरी मजमूए, चांद नगर, इस बस्ती के एक कूचे में, दिले वहशी वगैरह हैं। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। आइए सामीन, गुलाम अली की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है इब्ने इंशा का।

सामीन, अभी आप गुलाम अली की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था इब्ने इंशा का। कभी भुलाया नहीं, याद भी किया नहीं है। कभी भुलाया नहीं, याद भी किया नहीं है। ये कैसा जुर्म है जिसमें कोई सज़ा नहीं है। कुछ यूं ही जर्द जर्द सी नाहिद आज थी। कुछ यूं ही जर्द जर्द सी नाहिद आज थी। कुछ ओढ़नी का रंग भी खिलता हुआ न था। सामीन, इन अशार की खालिक किश्वर नाहिद है। किश्वर नाहिद मारूफ शायरा अदीबा के अलावा समाजी खिदमतगार भी हैं। उनकी पैदाइश 18 जून 1940 को ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुई। किश्वर नाहिद जदीद उर्दू शायरी की नुमाया आवाज़ समझी जाती हैं। उनकी शायरी में औरतों के हकूक़, समाजी इंसाफ, आज़ादी फ़िक्र और इंसानी वक़ार जैसे मौजूआत नुमाया हैं। उन्होंने अपनी जुर्रत मंदाना इजहार ख़याल के ज़रिए उर्दू अदब में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। उन्हें उर्दू शायरी में फेमिनिज़म यानी तानीसियत की बानी और अलामत माना जाता है। उनका पहला शेरी मजमूआ लब गोया 1968 में शाया हुआ। उसे खूब पजीराई मिली। उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा और तराजिम भी किए। उनकी तसानीफ़ बाकी मांदा ख्वाब, बुरी औरत की कथा, बेनाम मुसाफत, वर्क वर्क आईना, मुट्ठी भर यादें, गुस्ताखी वगैरह हैं। बकौल किश्वर नाहिद, तलाश दरिया की थी बज़ाहिर सराब देखा। तलाश दरिया की थी बज़ाहिर सराब देखा। वो कौन आँखें थीं जिनके खातिर ये ख्वाब देखा। आइए सामेईन, शुमना राय बिस्वास की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है मिर्ज़ा गालिब का।

सामीन, अभी आप शुमोना राय विश्वास की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मिर्ज़ा गालिब का। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम सदाए सुखन। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 4 बजने को आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश

0: नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों पर सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण विस्तार का उल्लेख किया और कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है। इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने, नवाचार को समर्थन देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखलाओं की गहराई बढ़ाने के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने की योजना के अंतर्गत 5 संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। औषधि विभाग ने बताया कि आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना और चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना MDCSS नामक 2 उप योजनाओं के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग ने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रस्ताव अगले 23 अगस्त या उससे पहले विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करने होंगे। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्यवाही से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान की कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and the State UT Police. These awards are given in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other secret agencies. The awards reflect India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the northeast and along the country's borders. They also recognize acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. In the presence of Home Minister Amit Shah, the governments of Haryana and Rajasthan today signed an agreement in New Delhi for the construction and implementation of the Yamuna Water Project. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the agreement has resolved the nearly 3-decade-old water-related problem faced by the people of Haryana and Rajasthan. The minister informed that under this agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to Rajasthan through 3 underground pipelines from the next month to October. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-day visit to Seychelles today. The Prime Minister said in a social media post that his visit to Seychelles has been fruitful with concrete results that will improve the Seychelles-EU relationship. He said it is good that these 50 years of relations that have passed have been marked by a deep trust and shared progress. The PM said the next 50 years must be defined by innovation.

0: The Prime Minister said in a social media post that his visit to Seychelles has been fruitful with concrete results that will improve the Seychelles-EU relationship. He said it is good that these 50 years of relations that have passed have been marked by a deep trust and shared progress. The PM said the next 50 years must be defined by innovation, sustainability and shared prosperity. The Prime Minister said he was pleased to be able to participate in the National Day celebration, and especially at a time when this. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda today launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi. The launch includes Arogya Setu 2.0, Ayushman Sarthi chatbot, Ayushman app, Sushrut Clinic, National Health Claims Exchange, and health standards to strengthen India's digital public infrastructure for health. A Delhi court would extend it till July 11th the judicial custody of 10 accused in the NEET UG 2026 paper leak case being investigated by the Central Bureau of Investigation, CBI. The accused were produced before the Rouse Avenue court through video conferencing on the expiry of the earlier judicial custody. Early on June 15, the Rouse Avenue court had extended the judicial custody of the 10 accused till today. The CBI has so far arrested 13 accused in the case and is investigating an alleged network involved in procuring and circulating NEET UG question papers ahead of the examination. The Central Board of Secondary Education, CBSE, today issued guidelines on the three-language policy. In a statement, the board said the current batch of class 10th will not have to follow the new language policy. It also said that for the current batches, studying in class 7th, 8th and 9th will also not be required to give the board examination in the third language when they reach class 10th. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom. Strengthening trade, investment and strategic economic cooperation are among the top focus areas of his visit. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall of sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. Heat wave conditions are predicted over Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar and Uttar Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 4:10 हुए हैं और वक्त हुआ है गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी का। थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति हैं अनम पुत्री मोहम्मद शकील, निवासी पल्लवपुरम मेरठ। इनकी उम्र 20 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच, चेहरा लंबा सांवला रंग, प्याजी रंग का कोट सेट इन्होंने पहना हुआ है। और इनके बारे में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं पल्लवपुरम थाना से। ये सूचना के मुताबिक विष्णु प्रसाद पांडे हैं, पुत्र टामलाल पांडे, निवासी गायत्री स्टेट कॉलोनी थाना परतापुर मेरठ। इनकी उम्र 29 वर्ष, कद 5 फीट, बालों का रंग काला, आधे सर पर इनके बाल हैं और चेहरा गोल, चेहरे पर मूछें हैं, आंख नाक कान औसत, टी शर्ट इन्होंने पहनी हुई है। और अगर इनके बारे में कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना परतापुर में। थाना गंगानगर जनपद मेरठ के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अरुण कुमार, पति शहनवाज, निवासी बक्सर, थाना गंगानगर मेरठ। इनकी उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, चेहरा सामान्य, शरीर की बनावट सामान्य, रंग सांवला। इन्होंने गुलाबी शर्ट, काली पैंट, काले जूते पहने हुए हैं और नीले रंग का एक बैग भी इन्होंने लिया हुआ है। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार, थाना गंगानगर मेरठ से। थाना ब्रह्मपुरी से मिली सूचना के मुताबिक विलुप्त व्यक्ति का नाम है दीपक कुमार, पुत्र इंद्रपाल। इनकी उम्र 28 वर्ष है, कद 5 फीट 6 इंच, बाल काले, चेहरा गोल, रंग गेहुआ, ब्लू कलर की कैप्री और वाइट रंग की टी शर्ट इन्होंने पहने हुए हैं, लाल रंग के इन्होंने जूते पहने हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना अध्यक्ष ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ से। परतापुर थाने से मिली सूचना के मुताबिक

गुमशुदा व्यक्ति का नाम है नवनीत कुमार, पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी खनौदा। इनकी उम्र 18 वर्ष है, कद 5 फीट 5 इंच, बाल काले, रंग गेहुआ, चेक शर्ट और जीन्स पैंट इन्होंने पहनी हुई है। इनके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक अंकित यादव, पुलिस स्टेशन पल्लवपुरम, जनपद मेरठ से। पल्लवपुरम थाना से मिली सूचना के मुताबिक अगले विलुप्त व्यक्ति का नाम है अनिकेत, पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी ग्राम खनौदा। इनकी उम्र 22 वर्ष है, कद 5 फीट 5 इंच, बढ़े हुए बाल, काले और सुनहरे, रंग गेहुआ, टी शर्ट और जीन्स इन्होंने पहनी हुई है। और अगर इनके बारे में कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक अंकित यादव, पुलिस स्टेशन पल्लवपुरम, जनपद मेरठ से। खरखौदा थाने की तरफ से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है कुमकुम, पुत्री राजभवन। कुमकुम की उम्र 20 वर्ष है, कद 160 सेंटीमीटर, चेहरा लंबा, बाल काले, इकहरा बदन है, रंग गेहुआ, आंखों का रंग काला है। इनके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना प्रभारी, थाना खरखौदा, जनपद मेरठ से। दौराला जनपद से मिली सूचना के मुताबिक अगले व्यक्ति का नाम है सीमा, पत्नी रामू, निवासी ग्राम सकौती, थाना दौराला। इनकी उम्र 45 वर्ष है, कद 152 सेंटीमीटर, बालों का रंग काला, चेहरा सामान्य, आंख नाक कान औसत, गोल चेहरा, इकहरा बदन और बाल सुनहरे हैं। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना दौराला, जनपद मेरठ से। अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 4:15 होने को हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: मन का सुंदर होता वास।
1: जीवन की हर राह बने फिर खुशियों का एहसास, संतुलित भोजन योग व्यायाम बने हमारी शान, छोटी छोटी अच्छी आदतें दे जीवन को मान, तन मन दोनों स्वस्थ रहे तो बढ़ता है विश्वास, मुस्कानों से भर जाता है जीवन का हर श्वास। आओ मिलकर आज करें हम इतना सा संकल्प, स्वस्थ रहे हम स्वस्थ रहे जग, यही हो अपना कल्प। हर बदलाव की शुरुआत एक विचार से होती है और हर नए विचार के केंद्र में होता है युवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचियता।
2: और मैं हूँ सिद्धांत।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवा कार्यक्रम युववाणी। युववाणी केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की आवाज है।
2: बिल्कुल, यहाँ हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो आज के युवाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ सुनते हैं, नई जानकारियाँ साझा करते हैं और समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका को समझते हैं।
1: और आज का हमारा विषय है हेल्दी माइंड हेल्दी वर्ल्ड, यानी स्वस्थ मन स्वस्थ विश्व।
2: दोस्तों, जब मन स्वस्थ होता है तो सोच सकारात्मक होती है,
1: और जब सोच सकारात्मक होती है तो हर चुनौतियाँ आसान लगने लगती हैं।
2: तो आइए इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं आज का पहला गीत, फिल्म दिल से छैया छैया।

0: अब बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट आज की बात की ओर। आज का विषय है स्वस्थ युवा सशक्त भारत।
1: सिद्धांत कहते हैं ना कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि आपकी अच्छी सेहत है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज हम अपनी सेहत को उतनी ही प्राथमिकता दे रहे हैं जितनी जरूरत है?
0: शायद नहीं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन इस दौड़ में अक्सर हम अपनी सबसे बड़ी पूंजी अपनी सेहत को ही अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
1: बिल्कुल, और अक्सर हमें यही लगता है कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन क्या वास्तव में भी ऐसा ही है?
0: जी नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार स्वस्थ का अर्थ केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना है। और जब बात भारत की हो तो हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, इसलिए स्वस्थ युवा ही सशक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल।

0: सही कहा आपने, और इसी बात को भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2024-25 ने भी रेखांकित किया है। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ता स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, परिवार के साथ कम समय बिताना और निष्क्रिय जीवन शैली युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। सिद्धांत, आपको क्या लगता है इससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है?
1: जी, मुझे लगता है पहली शुरुआत अपनी दिनचर्या से करनी होगी। समय पर सोना, संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना, ये छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, और शायद सबसे जरूरी है अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी हम अपने लक्ष्य पर बेहतर ढंग से ध्यान दे पाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, आखिर एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।
0: इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब समय है अगले गीत का। ये गीत हमें हर मुश्किल का सामना करने और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आइए सुनते हैं दंगल का टाइटल ट्रैक दंगल।

0: अब साथियों हमारे विशेष सेगमेंट मेरा पहला माइक के पहले भाग के अंतर्गत आज आप सुनेंगे हमारी युवा दोस्त भावना चौधरी जी की प्रस्तुति।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मनोरंजन जो मन करे जीवन में घोले गीत। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे भावना और आप सभी का स्वागत है दिल्ली आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट। अक्सर हम पढ़ाई और करियर के बीच में मनोरंजन को सिर्फ एक समय बिताने का जरिया समझते हैं। मनोरंजन में हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, मीम्स देखते हैं और मुस्कान लाने का एक सेकंड का जरिया समझते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है दोस्तों, अपनों के साथ समय बिताना, अपने परिवार के साथ समय बिताने का कितना अच्छा सुकून मिलता है हमें। इसी पर हम एक गाना सुनने वाले हैं, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये गीत? फिर से आपका स्वागत है हमारे युवाणी कार्यक्रम में, और मैं हूँ आपके साथ आरजे भावना, और हम बात कर रहे हैं मनोरंजन पर। जब हम मनोरंजन की बात करते हैं तो हमारे आज के युवाओं के हाथों में स्मार्टफोन और 15 सेकंड की मीम्स और रील्स में ही उनकी पूरी दुनिया बसी हुई है। लेकिन कभी आपने सोचा है दोस्तों कि पुराने टाइम में हम जब अपनों के साथ बैठकर टीवी देखते थे तो वो पल कितना ही अच्छा होता होगा, है ना? उस टाइम पे जब हम अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे तो हमारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। लेकिन आज के टाइम पे हम भागदौड़ भरी जिंदगी में बस कुछ सेकंड का ही सुकून ले पाते हैं। तो इसी सुकून के साथ, इसी सोच के साथ चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जिंदगी

देखते दोस्तों हमें पता ही नहीं चला कि जाने का समय भी हो गया। लेकिन जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी छोटी छोटी खुशियों को ऐसे मरने मत दीजिए, छोटी छोटी खुशियों में ही अपने स्माइल को बरकरार रखिए, है ना। तो बच्चे बनिए और अपनी स्माइल को बरकरार रखिए और अपनों के साथ खुशियां बांटिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ मैं यानी आरजे भावना लेती हूँ आपसे इजाजत। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी नए कार्यक्रम, किसी नए मोड़, किसी नए सफर में। तब तक के लिए सुनते रहिए दिल्ली आकाशवाणी यू वार्निंग प्रोग्राम। धन्यवाद।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना हमारी साथी भावना चौधरी जी की प्रस्तुति। तो चलिए अब बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक की ओर।
1: सिद्धांत, जब भी युवाओं और खेल की बात होती है तो सबसे पहले जिस खेल का नाम जहन में आता है वो है क्रिकेट।
0: बिल्कुल, और आज हम एक ऐसे युवा क्रिकेटर की जिसकी कहानी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है, वैभव सूर्यवंशी। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व क्रिकेट के मंच तक पहुंचने का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है।
1: और सिद्धांत, सबसे हैरान करने वाली बात तो उनकी उम्र है।
0: सही कहा, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपने सपनों को समझना और उन्हें आकार देना शुरू करते हैं,
1: उसी महज 15 वर्ष की आयु में वैभव ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।
0: उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम की, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार हासिल किया और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए।
1: इतना ही नहीं, उन्होंने T20 क्रिकेट के महान बल्लेबाज क्रिस गेल से जुड़े एक लंबे समय से कायम रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। यानी प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए उम्र नहीं बल्कि जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास की जरूरत है।
0: बिल्कुल, समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व क्रिकेट के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाना आज की नई पीढ़ी के लिए प्रेरक संदेश है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती।
1: और शायद यही वजह है कि ऐसी कहानियां केवल खिलाड़ियों की सफलता नहीं बल्कि हर युवा के आत्मविश्वास की कहानी बन जाती है।
0: इसी प्रेरणा के साथ अब समय हमारे अगले गीत का,
1: तो आइए सुनते हैं जोश, जुनून और हौसले से भर देने वाला फिल्म चक दे इंडिया का जोशीला शीर्षक चक दे इंडिया।

0: तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, एक ऐसे विषय के साथ जो आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्राथमिकता बन चुका है, दुनिया में बढ़ती फिटनेस अवेयरनेस।
1: बिल्कुल, आज स्वास्थ्य के प्रति केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं है जागरूकता, बल्कि ये वैश्विक बदलाव का रूप ले चुकी है।
0: बिल्कुल, आज दुनिया के कई देश इस बात को समझ चुके हैं कि विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो।
1: यही वजह है कि जापान, फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देश इस बदलाव का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आए हैं। वहां अनुशासित जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम लोगों की दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा है।
0: और शायद यही कारण है कि इन देशों की औसत जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे अधिक मानी जाती है।
1: लेकिन रचेता, तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल,
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार शारीरिक निष्क्रियता और बढ़ता तनाव आज वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल हो चुके हैं।
0: यानी यह सिर्फ किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा चिंता है।
1: और यही कारण है कि दुनिया भर में लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है।
0: यह वैश्विक बदलाव हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे लेकिन सकारात्मक सुधार करें और अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
1: क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और एक मजबूत सशक्त राष्ट्र की नींव रखता है।
0: और जब बात हो नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के जज्बे की, तो संगीत भी उसी भावना को और मजबूत बना देता है।
1: बिल्कुल, तो आइए इसी जोश और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुनते हैं फिल्म रॉकस्टार का जोश से भर देने वाला गीत सड्डा हक।

0: तो चलिए रचयिता, अब समय हमारे अगले सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री का। आइए जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में 29 जून का दिन किन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है।
1: बिल्कुल सिद्धांत, इतिहास हमें केवल अतीत की घटनाओं से परिचित नहीं कराता बल्कि उनसे सीख लेकर बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा भी देता है।
0: सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1893 की। आज ही के दिन भारत के महान सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म हुआ था। उनके सम्मान में हर वर्ष 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। उन्होंने भारत की आर्थिक योजना और आधुनिक सांख्यिकी को नई दिशा दी।
1: और अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीकी क्रांति की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज अगर किसी युवा से पूछा जाए कि उसका ड्रीम स्मार्टफोन कौन सा है तो यकीनन बहुत से लोगों के जहन में सबसे पहला जो नाम होगा वो आईफोन का होगा। और सिद्धांत, मुझे लगता है कि आपके जहन में भी सबसे पहला ख्याल आईफोन का ही आया होगा।
0: बिल्कुल, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सपने की शुरुआत 29 जून 2007 को हुई थी, जब दुनिया का पहला आईफोन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। ये सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन नहीं था बल्कि इसने संचार, इंटरनेट और स्मार्टफोन की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की थी। शायद इसीलिए आज भी लाखों युवा अपना पहला आईफोन खरीदना एक सपना मानते हैं।
1: और जब बात खेल जगत की हो तो 29 जून की तारीख क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी यादगार रहेगी।
0: जी हाँ, 29 जून 2024, वो दिन जिसे शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट प्रशंसक कभी भूल पाए, जब भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप अपने नाम किया तो पूरा देश जश्न में डूब गया। करीब 17 वर्षों के इंतजार के बाद मिली इस जीत ने करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर गर्व और खुशी की मुस्कान ला दी।
1: और यही तो खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है, एक जीत केवल ट्रॉफी नहीं दिलाती बल्कि

0: दिलों को एक साथ जोड़ देती है और ये विश्वास दिलाती है कि मेहनत, धैर्य और टीम वर्क के दम पर हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: यानी 29 जून हमें विज्ञान, तकनीक, खेल और ज्ञान हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता है।
0: और इसी प्रेरणादायक सोच के साथ अब समय है एक और बेहतरीन गीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म लक्ष्य का जोश और हौसले से भर देने वाला गीत, कंधों से मिलते हैं कंधे।

0: तो चलिए सिद्धांत, अब समय है हमारे कार्यक्रम के सबसे तेज और रोचक खंड क्विक बज का, जहां कम समय में नजर डालते हैं हम देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर।
1: तो शुरू करते हैं पहली खबर से। भारत में डिजिटल हेल्थ सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में काम जारी है।
0: दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कई देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने की दिशा में नए कदम उठाए हैं।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग अब शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI रोजमर्रा की जिंदगी का और बड़ा हिस्सा बनने वाला है।
0: देश के युवा खेल, स्टार्टअप, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।
1: और आखिर में एक छोटी सी याद दिलाना चाहेंगे, रोज कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, ये तीन आदतें बेहतर स्वास्थ्य की सबसे मजबूत नींव हैं।
0: इसी सकारात्मक संदेश के साथ क्विक बज यहीं समाप्त होता है।
1: अब समय हमारे आज के अंतिम गीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का बेहद खूबसूरत गीत दिल धड़कने दे।

0: तो इसी के साथ आज के युवाणी कार्यक्रम का सफर यहीं समाप्त होता है। आज हमने बात की स्वस्थ जीवन शैली की, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझा, युवा क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी की प्रेरणादायक कहानी से प्रेरणा ली, दुनिया में बढ़ती फिटनेस जागरूकता पर चर्चा की, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों को याद किया और क्विक बस के माध्यम से देश दुनिया की कुछ खास जानकारियों से भी रूबरू हुए।
1: उम्मीद है कि आज की हमारी बातचीत ने आपको कुछ नया सोचने, बेहतर जीवन शैली अपनाने और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, एक स्वस्थ मन ही सकारात्मक सोच की शुरुआत करता है और सकारात्मक सोच ही एक बेहतर समाज और बेहतर विश्व का निर्माण करता है।
0: तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नियमित व्यायाम कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए और जीवन में हमेशा सीखते तथा आगे बढ़ते रहिए।
1: आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। मैं हूँ रचियता।
0: मैं हूँ सिद्धांत। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का युवा।

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र लालस और दीपिका दास। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
2: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's defense investiture ceremony, in which Honorable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring the Ati Vishisht Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal and Sarvottam Yudh Seva Medal.
1: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, साथ ही मौजूद हैं इस वक्त सीडीएस जनरल एनएस राजासुब्रमणि, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहां पर पधारेंगी और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा। हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि 105 बहादुरों को, सैनिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए 56 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएं देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध में विशेष बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 7 सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे।
2: Dear listeners, as we witness these distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the

0: Honorable President.
1: हम ये बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार, उपराष्ट्रपति जी इस वक्त पधार चुके हैं और वे विराजमान हैं और उन्हीं के साथ ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ तीन तीन सैनिक मौजूद हैं जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे और आगे की रोज में वे लोग इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे। ये ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहाँ पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में।
0: Total of 105 awards will be conferred to the awardees today, a very prestigious event that honors armed forces, security personnel for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
1: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुबेदार प्रेम बहादुर गुरंग बैंड मास्टर हैं महा रेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। और ये बिगुल की आवाज़ आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करती हुई गणतंत्र मंडप में पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियां पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई, नीले रंग का बॉर्डर और थोड़ा सा सुनहरी गुलाबी रंग उनकी साड़ी में, उनके आगे और पीछे उनके एडीसी चलते हुए धीरे धीरे सधे हुए कदमों से राष्ट्रपति जी अपने आसन तक जाती हुई, इनके ठीक पीछे बुद्ध की प्रतिमा।

0: वंदे मातरम और राष्ट्रगान। अब रक्षा सचिव राजेश जी अनुमति प्राप्त करते हुए आज के समारोह
1: की। महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने अभिवादन कर स्वीकृति दी और अब ये रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है।
2: The first set of awards that
3: अति विशिष्ट सेवा मेडल और साधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल तरुण चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल उड़ान पायलट।

0: लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय VSM द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने सैल्यूट करते हुए सदैव कदमों से और प्राप्त करेंगे वे अति विशिष्ट सेवा मेडल। और ये तालियां इस बात का परिचायक कि सैनिक ने राष्ट्र की सेवा की है।
0: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल बा।
2: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला अपनी सैनिक परिधान में कोर ऑफ इंजीनियर्स के आप अधिकारी हैं और अपना सम्मान प्राप्त करके राष्ट्रपति जी का सैल्यूट करते हैं।
0: हरबिंदर सिंह वांद्रा सेना मेडल।
1: कोर ऑफ सिग्नल्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मान देते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद
0: लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह YSM SM सलामी देते हुए राष्ट्रपति जी को और अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए सदैव कदमों से राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गौरव का क्षण इन सैन्य अधिकारियों के लिए और परिवार के सदस्य खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिवादन करते हुए
0: लेफ्टिनेंट जनरल साक्षी बनते हुए रंजीत सिंह।
2: लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी saluting the president and marching towards the dais.
1: Artillery ke adhikari hain aap Lieutenant General Ranjit Singh Regiment of Artillery ke ati vishisht seva medal aur ye salute
0: Lieutenant General Ajay Kumar vishisht seva medal.
2: Lieutenant General Ajay Kumar vishisht seva medal the infantry.
1: Infantry ke adhikari Lieutenant General अजय कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
2: डेकोरेटेड विद अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क इन्फेंट्री के अधिकारी हैं और भारतीय सशस्त्र सेना भारतीय सेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दिए इसलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Lieutenant General Shamsher Singh, we are here receiving Ati Vishesh Seva Medal from the Honorable President.
0: Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi, Sena Medal, Vishesh Seva Medal.
1: The Brigade of the Guards ke Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi, Sena Medal aur Vishesh Seva Medal prapt kar chuke hain, jaate hue Rashtrapati ji ke samne aur अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
2: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेवा मेडल रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज इन्हें मिलने जा रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल। द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं आप राष्ट्रपति जी के सामने जाकर उन्हें सैल्यूट करते हुए और अपना मेडल प्राप्त करते हुए।
0: लेफ्टिनेंट जनरल चियारथ गोपालन मुरलीधरन।
2: Lieutenant General Chiarath Gopalan Muralidharan, the Army Medical Corps.
1: Army Medical Corps के अधिकारी हैं Lieutenant General Chiarath Gopalan Muralidharan. भारतीय सेना की ओलिव ग्रीन वर्दी धारण किए हुए राष्ट्रपति जी से अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए। परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री
0: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Lieutenant General Puneet Ahuja, recipient of Sena Medal and Vishesh Sena Medal, the Brigade of the Guards, to receive his Ati Vishesh Seva
1: Brigade
2: Medal.
1: of Guards ke Lieutenant General Puneet Ahuja, VSM, प्राप्त कर चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। राष्ट्रपति जी ने उनके सीने पर ये मेडल उनकी शान बढ़ाने के लिए लगाया। पुत्री और पत्नी
0: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई, विशिष्ट सेवा मेडल, विल रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: नौसेना का अधिकारी वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई वीएसएम प्राप्त कर चुके हैं। आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। भारतीय नौसेना की सफेद वर्दी और इस वक्त प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल रजत कपूर।
1: वाइस एडमिरल रजत कपूर जाते हुए राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ पहले सैल्यूट किया है, नेवी का जो अलग सैल्यूट होता है, उसके बाद जाते हुए मंच की तरफ और अब प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल रजत कपूर रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली।
1: और अब बारी भारतीय नौसेना के एक और अधिकारी वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली की।

0: आप अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के, भारतीय नौसेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है, इसीलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है आज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदारावाली रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
2: वाइस एडमिरल सुशील मेनन विशिष्ट सेवा मेडल।
0: और अगली बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की वाइस एडमिरल सुशील मेनन की। विशिष्ट सेवा मेडल इनके सीने पर टंगा हुआ है, जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने और पहुंचकर अपना पदक प्राप्त करते हुए।
2: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी।
0: नौसेना के ही सम्मानों की बारी अब आगे आते हुए वाइस एडमिरल अनिल जग्गी पहले मंच के सामने जाकर राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं, उसके बाद में पदक प्राप्त करने के बाद भी सैल्यूट करते हैं, फिर अपने स्थान तक जाते हैं।
1: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: सर्जन रियर एडमिरल वर्तमान में सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे विशिष्ट सेवा मेडल।
0: रबारी सर्जन रियर एडमिरल, अब सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे की, जिन्हें वीएसएम मिल चुका है और आज प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: सर्जन रियर एडमिरल नाउ सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
0: और अब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बारी, एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट, जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेहताब सिंह देसवाल flying pilot receiving the Ati Vishisht Seva Medal.
2: Air Marshal Kondan Kolangara Abu Ahmed Sanjeev Vishisht Seva Medal.
0: Air Marshal Kondan Kolangara Abu Ahmed Sanjeev VSM Aeronautical Engineering Mechanical ke sadasya hain, prapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal.
2: एयर वाइस मार्शल वर्तमान में एयर मार्शल सेटीपल्ली श्रीनिवासा राव विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर वाइस मार्शल नाउ एयर मार्शल सेटीपल्ली श्रीनिवासा राव विशिष्ट सेवा मेडल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
0: एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के एयर वाइस मार्शल, अब एयर मार्शल हैं आप सेटीपल्ली श्रीनिवासा राव, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारी राष्ट्रपति जी को।
2: अपर महानिदेशक डॉनी माइकल प्रेसिडेंस तटरक्षक मेडल, तटरक्षक मेडल।
1: एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉनी माइकल पीटीएम टीएम।
0: भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डॉनी माइकल अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। मुस्कुराकर फोटो खिंचाते हुए उनकी धर्मपत्नी तालियां बजाते हुए सैल्यूट करके वापस अपने स्थान तक जाते हुए।
2: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
1: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय सेवा मेडल बीएसएम रिटायर्ड।
0: नारी शक्ति का प्रतीक सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, अब सेवानिवृत्त है, लेकिन आज सम्मान करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें प्रदान करती हुई, और ये इतनी सारी तालियां इस बात का प्रतीक हैं।
2: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा सेना मेडल बार विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा सेना मेडल वीएसएम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्टिलरी

0: रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल पहले से लगा हुआ है और आज प्राप्त हुआ है इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पहल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अब बारी है इन्फेंट्री के ही एक और अधिकारी मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल की, विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्राप्त हो चुका था, आज इन्हें मिल रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल, VSM, द इन्फेंट्री, रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दैट विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर जनरल सुजीत, beg your pardon, मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, SM VSM, द आर्मी एयर डिफेंस।
0: आर्मी एयर डिफेंस के अधिकारी मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्हें प्रदान कर रही हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को
1: मेजर जनरल आशीष शाह, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल आशीष शाह, सेना मेडल, द आर्मर्ड कॉर्प्स, मार्चिंग टुवर्ड्स द ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल आशीष शाह, महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए और प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल अमर राम दसानी, युद्ध सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल अमर राम दसानी, युद्ध सेवा मेडल, द इन्फेंट्री।
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल अमर राम दसानी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सामने मौजूद हैं और प्राप्त कर रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: मेजर जनरल विकास चौधरी, युद्ध सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल विकास चौधरी, युद्ध सेवा मेडल, द इन्फेंट्री, टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: सैल्यूट करते हुए और जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं। और एक जोशीली मुस्कान उनके चेहरे पर, सलामी देते हुए
3: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल,
0: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, आर्टिलरी का अधिकारी, राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
2: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
3: मेजर जनरल वूदे परिदा, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, the Regiment of Artillery, saluting the President and receiving the Ati Vishesh Seva Medal.
0: The Regiment of Artillery ka adhikari Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal inhe pradan kiya ja chuka hai, Ati Vishesh Seva Medal.
3: Major General Sumit Mehta, Vishesh Seva Medal.
2: Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, the Armored Corps.
0: Armored Corps ke adhikari Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal. Ab Rashtrapati ji ne pradan karengi Ati Vishisht Seva Medal.
3: Major General Vikrant Suresh Deshpande.
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं आप मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे, राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
2: मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे, द इन्फेंट्री।
3: मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडवाल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Major General Kuleshwar Singh Datwal, earlier recipient of Sena Medal and Vishesh Sena Medal, will receive Tati Vishesh Seva Medal.
0: Infantry Kadikari Major General Kuleshwar Singh Datwal विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज अलंकृत होंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल से। ये एक और खुशी की बात कि उनकी पुत्री
3: मेजर जनरल विवेक नारंग,
2: मेजर जनरल विवेक नारंग फ्रॉम द इन्फेंट्री सल्यूटिंग द प्रेसिडेंट।
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल विवेक नारंग, राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना पदक ग्रहण करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। गर्वीली मुस्कान, उनकी पुत्री और पत्नी तालियां बजाकर।
3: मेजर जनरल परमवीर सिंह पुनिया सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल परमवीर सिंह पुनिया सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल विल रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी परमवीर सिंह पुनिया विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करेंगे राष्ट्रपति जी से।

0: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के ही अधिकारियों की बारी चलती हुई, बहुत सेवा की इन्होंने राष्ट्र की, सशस्त्र सेनाओं की, और अब बारी है मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर की।
2: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर, YSM SM, रिसीविंग राष्ट्रीय विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेना मेडल, सेना मेडल, सल्यूटिंग द प्रेसिडेंट एंड रिसीविंग राष्ट्रीय विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: युद्ध सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं इन्फेंट्री के मेजर जनरल अरिंदम साहा, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। टुडे इट्स हिज टर्न टू रिसीव दैट विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी SM BSM मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें मिलता हुआ।
0: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें प्राप्त होता हुआ राष्ट्रपति जी के हाथों, जो कि सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं।
0: मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल मनदीप सिंह, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल मनदीप सिंह, सेना मेडल, इज एन एक्स रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के अधिकारियों की सीरीज चलती हुई, मेजर जनरल मनदीप सिंह की बारी है प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: रियर एडमिरल निर्भय बापना, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड रियर एडमिरल निर्भय बापना, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: अब आरी आ रही है नौसेना के अधिकारियों की, रियर एडमिरल निर्भय बापना, विशिष्ट सेवा मेडल आज सम्मानित हो रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल से राष्ट्रपति जी के हाथों से।
0: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी।
2: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी, मेडिकल, टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना की चिकित्सा विंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी, राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
2: The next recipient of Ati Vishesh Seva Medal is Air Vice Marshal Sanjeev Vashishth, VM Flying Pilot.
1: अबारी भारतीय वायु सेना के इस पायलट की, Air Vice Marshal Sanjeev Vashishth, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज गणतंत्र मंडप में उन्हें प्राप्त होता हुआ।

0: एयर वाइस मार्शल वडपल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर वाइस मार्शल वडपल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू रिसीव दैट विशिष्ट सेवा मेडल।
2: और अब वायुसेना के एक और अधिकारी एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार, एयर वाइस मार्शल वडपल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मॉडल, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल विंग के अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा।
0: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान VM फ्लाइंग पायलट
2: अब भारतीय
1: रिसीविंग दति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह।
1: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह एडमिनिस्ट्रेशन फाइटर कंट्रोलर।
2: भारतीय वायुसेना के फाइटर कंट्रोलर हैं AS एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, आपको प्राप्त होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल आपकी सेवाओं के लिए।
0: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा VM फ्लाइंग पायलट इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: और अब बारी अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा की। आप एक पायलट हैं।
0: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे विशिष्ट सेवा मेडल, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज एक और उपलब्धि इनके कैरियर में जुड़ती हुई इन्हें मिलता हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे VSM रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
1: मेजर जनरल संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल द जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट रिटायर्ड इज रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल द जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट रिटायर हो चुके हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी के कर कमलों से। और सैल्यूट।
0: मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख सेवानिवृत्त।
1: मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स रिटायर्ड इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अति विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
2: आर्मी मेडिकल कोर के मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख अब रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर उड़ान पायलट सेवानिवृत्त।
1: एयर वाइस मार्शल

0: Colonel Satish Kumar Mathur, flying pilot, retired.
1: और अब राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर, आप वायुसेना में उड़ान पायलट थे, रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से।
2: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
0: Air Vice Marshal Nand Kumar Nair, VSM Aeronautical Engineering Electronics, retired, receiving the Ati Vishisht Seva Medal.
1: भारतीय वायु सेना के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विंग में रहे और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम संभालने वाले एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर अब रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए
2: ब्रिगेडियर पवन धुल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: Brigadier Pawan Dhol, VSM, the Army Medical Corps.
1: Army Medical Corps के अधिकारी Brigadier Pawan Dhol विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की, प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से। अब बारी सैल्यूट की।
2: सुबेदार एच होकाटो सेमा, 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉटपट कांस्य पदक विजेता, वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित।
0: सुबेदार एच होकाको सेमा, 9 असम, रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड्स।
1: सुबेदार होकाको सेमा, कौन नहीं जानता इन्हें, भारतीय सेना के हैं लेकिन अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, शॉटपट के खिलाड़ी रहे हैं 9 असम के। राष्ट्रपति जी के सामने अपना पदक प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: अब उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध, संघर्ष, युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: हमारे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। आर्मर्ड कोर हेडक्वार्टर साउथ सदर्न कमांड का नेतृत्व करते हैं, उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से।
0: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, PVSM AVSM, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
3: एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट है, आज प्राप्त करते हुए युद्ध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल मनीष खन्ना, AVSM VM फ्लाइंग, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, AVSM SM, द पैराशूट रेजिमेंट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
1: अगला युद्ध उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव को मिलता हुआ, अति विशिष्ट सेवा मेडल, पैराशूट रेजिमेंट हेडक्वार्टर के आप अधिकारी हैं।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: गढ़वाल राइफल्स हेडक्वार्टर 9 कोर के अधिकारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत।
0: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, AVSM VSM, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर, AVSM YSM, फ्रॉम द असम रेजिमेंट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: द असम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर, अति विशिष्ट

0: सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ AVSM एंड YSM फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति जी के
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ AVSM, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द उत्तम युद्ध सेवा मेडल इज वाइस एडमिरल तरुण सोपती, AVSM VSM।
0: नौसेना का अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल अब मिलता हुआ उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
2: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: लड़ाकू विमान उड़ाते हैं आप, एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
2: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिस इवनिंग।
0: और अब बारी है एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी की, आप फ्लाइंग पायलट हैं और युद्ध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर कमोडोर प्रभात मलिक, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
2: एयर कमोडोर प्रभात मलिक, वायुसेना मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: वायुसेना के ही एक और अधिकारी अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, एयर कमोडोर प्रभात मलिक।
1: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर, उड़ान पायलट।
2: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर, फ्लाइंग पायलट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: और अब बारी वायुसेना के एक और अधिकारी की कि वे जाएं और राष्ट्रपति जी से उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करें। यह हैं ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर।
3: परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सर्वप्रथम वाइस एडमिरल वर्तमान एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल नाउ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
0: और अब बारी परम विशिष्ट सेवा मेडल की। सबसे पहले एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं, AVSM है, VSM है, प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, AVSM, YSM, VSM फ्रॉम द इन्फेंट्री, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: परम विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रृंखला में अब बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा

0: मेडल इन्फेंट्री के अधिकारी हैं।
1: वाइस एडमिरल संजय बात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल।
2: The next recipient of the Padam Vishisht Seva Medal this evening is Vice Admiral Sanjay Vatsayan, AVSM NM.
0: भारतीय नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल संजय वात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल नेवी मेडल प्राप्त कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करके राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं।
1: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल।
2: Vice Admiral Ajay Kochar, Ati Vishish Seva Medal, Nau Sena Medal, receiving the Param Vishish Seva Medal.
0: और अब जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के सामने अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित AVSM VM VSM फ्लाइंग पायलट इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अब राष्ट्रपति जी से परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने जा रहे हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अब भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
1: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल वायु सेना मेडल।
2: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल वायु सेना मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: परम विशिष्ट सेवा मेडल की श्रृंखला में अब माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर मार्शल तेजिंदर सिंह आप पायलट हैं, भारतीय वायुसेना के अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
1: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना के एक और अधिकारी एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
1: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक उत्तम युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक उत्तम युद्ध सेवा मेडल From the infantry, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
0: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
1: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Lieutenant General Navneet Singh Sarna, Ati Vishish Seva Medal, Seva Medal, Vishish Seva Medal from the Regiment of Artillery, receiving the Param Vishish Seva Medal.
0: Regiment of Artillery ka adhikari Lieutenant General Navneet Singh Sarna, Ati Vishish Seva Medal, Seva Medal, Vishish Seva Medal, isi shrinkla mein aaj judne ja raha hai, Param Vishish Seva Medal.
1: Lieutenant General रशिम बाली उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली UYSM AVSM SM VSM फ्रॉम द इन्फेंट्री टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी यू YSM, AVSM,

0: पाकिस्तान फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही UISM, AVSM, YSM, SM from the infantry, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: Infantry के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही प्राप्त करते हुए अपना सम्मान परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: The next recipient of the Param Vishisht Seva Medal this evening is Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha, AVSM, SM from the infantry.
1: Infantry ke ek aur adhikari Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha Ati Vishisht Seva Medal prapt kar chuke hain, prapt karte huye Param Vishisht Seva Medal.
2: Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha, Sena Medal.
0: Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha, Sena Medal, from the Army Air Defence, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: Army Air Defence ke adhikari Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha aprapt karte huye Param Vishisht Seva Medal.
2: Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal.
0: Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal, to receive the Param Vishisht Seva Medal.
1: Armored Corps के अधिकारी हैं आप, Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से।
2: Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
0: Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: Abari Nari Shakti ki वाइस एडमिरल आरती सरीन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं और आज गौरव से प्राप्त कर रही हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल अतुल आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल अतुल आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
0: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे हैं मैकेनिकल विंग में, एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल सूरज सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उड़ान पायलट सेवानिवृत्त।
0: The next recipient of Param Vishisht Seva Medal this evening is Air Marshal Surat Singh, AVSM, VM, VSM, retired.
1: भारतीय वायुसेना के पायलट रहे हैं Air Marshal Surat Singh, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
3: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
0: Lieutenant General Arvind Walia, Ati Vishisht Seva Medal, retired, receiving the Param Vishisht Seva Medal.

0: करने के बाद रिटायर होने के बाद आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, फ्रॉम द इन्फेंट्री, रिटायर्ड।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी, भारतीय सेना को आपने अपनी सेवाएं दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, रिटायर्ड।
0: और अब बारी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की। सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना की अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप रिटायर हो चुके हैं और प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार, रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड, विल रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: कोर ऑफ सिग्नल्स में आपने काम किया था, लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं रिटायर होने के बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, सेवानिवृत्त।
2: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेना मेडल एंड वायु मेडल, रिटायर्ड, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना में रहकर आपने बहुत उड़ाने भरी है, एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
0: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अगला परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के आप अधिकारी रहे हैं।
1: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल, इज नाउ रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के कर कमलों से। मेडल प्राप्त करने के बाद उन्हें सैल्यूट करते हुए
1: मेजर जनरल रुपेश मेहता, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल रुपेश मेहता, सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल, फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल रूपेश मेहता की बारी है अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल ग्रहण करने की। आप विशिष्ट सेवा मेडल से पहले ही अलंकृत हो चुके हैं।
3: अब सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, PVSM, AVSM, CM, फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट, हेडक्वार्टर्स, नॉर्दर्न कमांड।
0: सात बहादुरों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सबसे पहले बारी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की परम विशिष्ट

0: सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, मद्रास रेजिमेंट के आप अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा
1: मेडल। एयर मार्शल नगेश कपूर, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
2: एयर मार्शल नागेश कपूर, PVSN, AVSN, VM, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने की बारी अब है भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर मार्शल नागेश कपूर की। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप फ्लाइंग पायलट हैं भारतीय वायुसेना के।
1: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, UISM, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी।
0: कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी, विशिष्ट सेवाएं दी आपने, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल।
2: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेना मेडल, वायुसेना मेडल, फ्रॉम फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना के एक और उत्कृष्ट अधिकारी पायलट एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और अपने
1: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, सेवा निवृत्त।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, PVSM, AVSM, NM रिटायर्ड।
0: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अब प्राप्त कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। आपने भारतीय नौसेना में युद्ध के दौरान
1: एयर मार्शल दी थी। नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, सेवा निवृत्त।
2: एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना के एक उत्कृष्ट अधिकारी और पायलट एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा निवृत्त।
2: The next recipient of सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल is एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, AVSM, VSM, फ्लाइंग पायलट, रिटायर्ड।
0: भारतीय वायुसेना के एक और पायलट रहे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को। और इसी के साथ आज के जो रक्षा अलंकरण थे उनका समापन होता हुआ रक्षा सचिव राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए।
3: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
0: माननीय राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी।

0: रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण यह था जिसमें विशिष्ट सेवा पुरस्कार आज सशस्त्र सेनाओं के विशिष्ट अधिकारियों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति जी अब गणतंत्र मंडप से सबका अभिवादन करते हुए धीरे धीरे बाहर जाती हैं। उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और उनके ठीक पीछे अन्य अधिकारी। और ये बता दें कि आज 105 अधिकारियों को ये विशिष्ट अलंकरण यहाँ पर प्रदान किए गए, जिसका आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी के जरिए सुन रहे थे।
1: As this solemn ceremony draws to a close, let us offer our deepest respect to all the awardees and their families. May we always remember that the spirit of duty that drives our armed forces. I, Lipika Das, along with my co-commentator, Mahindra Singh Lales, OB in charge, Prabha Kumar, with our technical team, Ashok Kumar Mishra, Sumit Katiyar, Hemraj Meena, and producer, Pramod Kumar, take you back to the studios of Akashvani.
2: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे महेंद्र लालस और लिपिका दास। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेयः, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदयः च पुरस्कृताः। हरियाणा राजस्थानयोर्मध्ये दशकत्रयेभ्यः विलंबितायाः यमुना जलविभाजन विवादस्य अद्य समाधानं जातम्। सर्वोच्च न्यायालयेन राममंदिर दान प्रकरणस्य कथित वित्तीय अनियमिततायाः न्यायालय निरीक्षण अन्वेषणस्य त्वरा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन सांप्रतिकाय दशम वर्गाय त्रिभाषा नीतिः नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचना तंत्रं प्रवर्तयति। एसआईआर इति स्वस्तनात् देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकांतः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेयः, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह च अतिविशिष्ट सेवा पदकं प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्यः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणः च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अफ्रीका देशस्य यात्रायाः तृतीय दिने सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरस्थस्य नवशक्ति विनयगर देवालयं गत्वा प्रार्थनां कृतवान्। सः तत्र भारतीय प्रवासिभिः अपि मिलितवान्। पश्चात् अद्य पीस पार्क इत्यत्र स्थितायाः महात्मा गांधिनः प्रतिमायाः उपरि पुष्पाञ्जलिमपि अर्पितवान्। प्रधानमंत्री सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीयं सफलं भ्रमणं समाप्य भारतं प्रति प्रस्थितवान्। इतः पूर्वञ्च प्रधानमंत्री

0: मासस्य चतुर्थ दिनांक पर्यन्तं अभियोगाः आक्षेपाश्च निवेदयितुं शक्यन्ते। अंतिमा निर्वाचक सूची अक्टूबर मासस्य सप्त दिनांके प्रकाशिता भविष्यति।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन स्वस्तनं यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रे सिक्किम प्रदेशे च प्रचण्डतः अतिप्रचण्ड तरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बुधवासरं यावत् अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीत्यपि ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतम्। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबि श्रीकान्तः US ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। इति वार्ताः।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम, राम।
1: और शीतल कुछ कहना चाहती हैं आप?
0: जी,
1: जरूर।
0: बिल्कुल, महिलाओं का जमाना है, महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं, तो पहले महिलाओं को अवसर दें बात करने का।
1: जी, महिलाएं जब अवसर देती हैं तभी परिवार आगे बढ़ता है, परिवार में तरक्की होती है, और जितने भी मतलब जो प्रगति के केंद्र बिंदु हैं सब महिलाओं के पास हैं।
0: जी बिल्कुल जी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही विषय की जो ग्रामीण भारत की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है, और वो है ग्रामीण महिलाओं के लिए ऑनलाइन उद्यमिता।
1: जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और शीतल, अब वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है।
0: जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने गांव की महिलाओं को घर बैठे अपने उत्पाद पूरे देश में बेचने का अवसर दिया है, और इसी से ही संबंधित हम एक बातचीत अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे, ग्रामीण महिलाओं के ऑनलाइन उद्यमिता। और इसमें हिस्सा ले रही हैं डॉक्टर प्रतिमा जोशी, आप वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार AITC IAR न्यू दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रही हैं यमुना देवी। आइए सुनते हैं।
2: हाथों में हुनर, मन में आगे बढ़ने की चाह, लेकिन मंजिल का पता नहीं कि कैसे हम आगे बढ़ें। खासकर ग्रामीण महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, और ये सच है कि ग्रामीण भारत में महिलाएं कभी भी सिर्फ देखभाल करने वाली नहीं रही हैं। वो हमेशा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो मौन निर्माता रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो सरकार भी इस बात से अवगत है कि देश में महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और इसके लिए सरकार ने कई पहल भी की है और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया है। डिजिटल दुनिया की हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो जो व्यवसाय अगर कोई महिला शुरू करती है तो वो डिजिटल तरीके से बढ़ना चाहती है, ऑनलाइन जरिए अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती है, तो बहुत सी मुश्किलें भी आती हैं, बहुत सी समस्याएं उनकी शिक्षा को लेकर होता है, प्रशिक्षण को भी लेकर होता है। तो आज ग्रामीण महिलाओं में ऑनलाइन उद्यमिता को बढ़ावा कैसे दिया जा सके, और इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रतिभा जोशी जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रतिभा जी।

0: ऑनलाइन जो उद्यमिता है क्या है और ग्रामीण महिलाओं के लिए इसका क्या विशेष महत्व है?
1: धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा टॉपिक एक उठाया है कि ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता क्या होती है और डिजिटल उद्यमिता क्या कहेंगे हम इसे, तो इसके बारे में बहुत अच्छा आपने आज एक मुद्दा रखा है। सबसे पहले कि ऑनलाइन उद्यमिता क्या होती है, जो आपने पूछा है, तो ऑनलाइन उद्यमिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें इंटरनेट आधारित तकनीकों के माध्यम से कोई उत्पाद या कोई सेवा, प्रचार, विपणन और बिक्री की जाती है। इसमें हम ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल, आजकल जो कंटेंट का निर्माण चलता है वो, ऑनलाइन प्रशिक्षण और डिजिटल सेवाएं, ये सब इसमें शामिल होती हैं। और ग्रामीण महिलाओं की आपने बात करी, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो है ही महिलाएं। इसके साथ में ये महत्वपूर्ण भी इनके लिए है कि वे सीमित संसाधनों में रहती हैं और कम पूंजी में घर बैठे अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, जिससे उनकी आय में तो वृद्धि होगी ही होगी और एक आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूर प्राप्त होगी।
0: तो ग्रामीण महिलाओं में ऑनलाइन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
1: ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हम जानते हैं कि रोजगार के जो अवसर हैं वो बहुत सीमित होते हैं और कहें 50% जो आबादी है वो महिलाओं की है, तो बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से अपने परिवार के मुखिया पर ही निर्भर होती हैं। और यदि हम ऑनलाइन उद्यमिता का उन्हें प्रावधान दें तो वह उन्हें स्वरोजगार के अवसर जरूर प्रदान करेगी और इस माध्यम से कृषि उत्पादों, न सिर्फ कृषि उत्पाद बल्कि गाँव में हस्तशिल्प जो होते हैं उस पे खाद्य प्रसंस्कृत वस्तुओं और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक हम इससे पहुंचा सकते हैं। तो इससे आय, रोजगार तो हमने बोला ही कि ये बढ़ेगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण जो एक बहुत मुख्य बिंदु, बहुत मुख्य आयाम है, उस पर भी हम काम कर सकते हैं।
0: तो ये आवश्यकता ही आविष्कार कराएगी, आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे।
1: जी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो इसका एक श्रेय कोविड को भी जाएगा कि कोविड जैसे संकट, महासंकट काल से हम बाहर आए और उस महासंकट काल में जो हमारी जरूरतें थी उनको जो ऑनलाइन माध्यम है उद्यमिता, इसने जरूर आगे बढ़ाया है।
0: ऑनलाइन डिजिटल तकनीक की क्या भूमिका है, उससे क्या लाभ मिल सकता है?
1: जैसे डिजिटल तकनीक मुख्य आधारशिला है आज के टाइम में, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप का बिजनेस और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे महिलाएं अपने उत्पादों के प्रचार और विपणन के अवसर उसमें मिलते हैं महिलाओं को। वहीं बहुत सारे जैसे हमारे प्लेटफॉर्म है, जैसे UPI है, भीम है, गूगल पे है, फोन पे है और नेट बैंकिंग, ये सारी जो डिजिटल भुगतान की प्रणालियां हैं ये लेन देन को बहुत सरल बना रही हैं, सुरक्षित बना रही हैं और साथ ही पारदर्शी बनाती हैं। तो ई कॉमर्स जो भी प्लेटफॉर्म है उनको व्यापक बाजारों तक पहुंचाने में ये दोनों माध्यम, जैसे फेसबुक वगैरह जहां से हम बेच रहे हैं और पैसा लेन देन की प्रक्रिया जहां से हम प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी UPI, भीम, इस तरह के जो डिजिटल भुगतान प्रणालियां, ये दोनों ही आपस में हेल्प कर रही हैं।
0: जैसे आपने योजनाओं की बात की तो उस योजनाओं पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि टेक्निक के जरिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ सकेंगे, तो ऐसी क्या योजना है जो इसमें आकर के सहायता करेगी, लाभ देगी?
1: जैसे ग्रामीण महिलाओं की ऑनलाइन उद्यमिता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके साथ ही थी लखपति दीदी योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिला ई हाट, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बहुत सारी अवसंरचना कृषि से रिलेटेड जो निधि है ये प्रमुख योजनाएं हैं। ये सभी योजनाएं जो हैं इनके पोर्टल के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये प्रशिक्षण के साथ साथ ऋण, डिजिटल साक्षरता और विपणन में सहायता प्रदान करती है।
0: जो महिलाएं हैं सिर्फ वो घर के सामानों को बनाने तक ही सीमित नहीं है, देखा जाए तो वो मतलब खेती किसानी का भी काम बहुत बखूबी करती हैं और कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार के साथ जाकर के काम करती हैं। तो ऐसे में कृषि आधारित अगर हम बात करें तो कृषि आधारित ऑनलाइन जो व्यापार है उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं?
1: तो इसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि से आधारित जो भी उद्यमिता के बहुत सुनहरे अवसर हैं। इसमें हम जैविक खेती पे, जैसे आप कह रहे हैं हम दिल्ली में रहते हैं, तो आप ये देखिए यहाँ पर छत में काफी महिलाएं या काफी जो हमारा कुटुंब है ये बागवानी करता है, तो यहाँ पर जैविक खाद का उत्पादन किया जा सकता है, उसकी सप्लाई की जा सकती है। जैविक खेती के साथ साथ ही मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बीज उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, ये कृषि के विभिन्न आयाम हैं जिसमें महिलाएं अपना बहुत अच्छे से अपना लाभ भी पा सकती है। इसके सिवाय महिलाओं के हाथ में हुनर है, उसमें अचार, पापड़, ये सारी चीजों का, उत्पादों का बना सकती हैं और इसको ऑनलाइन बिक्री कर सकती हैं। तो इससे न सिर्फ सिर्फ कृषि

0: उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा, बल्कि उनकी आय में भी महिलाओं की वृद्धि रहेगी।
1: एक बात और है, जब कोई काम हम शुरू करते हैं तो शुरू करने में तमाम अड़चने भी आती है। ग्रामीण महिलाओं की जो ऑनलाइन जो व्यापार करने की चाह है, उसके सामने बहुत सी ऐसी चुनौतियां आती हैं, तो चुनौतियां क्या हैं, उनसे कैसे निपटा जाए?
0: ये ऐसा टॉपिक है कि उद्यमिता, हम एक सपने देख रहे हैं कि हमने उत्पाद बनाया और वो बाजार में बिक गया सीधे, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको महिलाओं को सामना करना पड़ता है। तो ऑनलाइन उद्यमिता के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को जैसे बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती है वो है डिजिटल साक्षरता का अभाव। महिलाओं को डिजिटल साक्षरता नहीं है, इंटरनेट की बहुत सीमित उपलब्धता है, वित्तीय संसाधनों की महिलाओं को कमी है, साइबर सुरक्षा का मैंने बताया एक बहुत बड़ा जोखिम है, और आज की तारीख में भी सामाजिक जो रूढ़ी है, रूढ़िवादियां हैं, वो भी महिलाओं को कहीं ना कहीं रोकती हैं। उसके साथ साथ परिवहन, प्रोडक्ट बन गया लेकिन जाए कैसे, तो परिवहन और लॉजिस्टिक संबंधित समस्याएं, साथ में ग्रामीण महिलाएं हैं तो इनको ब्रांडिंग और पैकेजिंग का भी जो अभाव है, ये बहुत मुख्य तौर समस्या है जिन पे काम करने की जरूरत है। इसी वजह से महिलाओं की जो है बाजार तक जो पहुंच है वो बहुत सीमित हो जाती है।
1: स्वयं सहायता समूह की बात करें तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, और कुछ भी शुरू किया तो उसके लिए उतना अमाउंट होता नहीं उनके पास, तो वित्तीय सहायता वो कैसे और कहाँ से ले, और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं होती तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, और किस तरीके से स्वयं सहायता समूह जो है इस व्यापार को आगे बढ़ा सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को?
0: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की जो संख्या की बात की जाए तो ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग है और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में तो हमारा क्या है कि अगर एफपीओ है, एफपीओ हमारे छोटे लेवल पे भी चल सकता है, वहां पर स्वयं सहायता समूह 8 से 10 महिलाएं जो है वो बना सकती हैं। परंतु जो हमारा मैदानी क्षेत्र है वहां पर हमारी 15 से 20 महिलाओं का अगर समूह रहेगा तो बहुत लाभप्रद रहेगा, उसमें महिलाएं अपने प्रोडक्ट बना सकती हैं। और इसका एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है विभिन्न महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह बना के अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं।
1: जो महिलाएं वाकई मतलब प्रशिक्षित नहीं है, घर में है, अगर वो जुड़ना चाहती है किसी संस्थान से, जैसे आपने कहा किसी संस्थान से जुड़ के कर ली, जैसे आप पूसा से हैं, तो अगर वो संस्थान से जुड़ना चाहती है तो उसके लिए वो कैसे पहुंचे वहां
0: केंद्र तक पहुंचने के लिए? इसके लिए जैसे पूसा संस्थान तो अपना कर ही रहा है, दूसरा है कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, हमारे परिषद के विभिन्न केवी के हैं, हर जिले में, देश के लगभग सभी जिलों में, सभी राज्यों में हमारे केवी के हैं, 700 से ज्यादा केवी के हैं, तो उन केवी के में इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते, कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे होते हैं इसमें हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो उस जिले की महिलाएं अपने निकटतम जो भी केंद्र है, केवी के है, वहां जाके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ विभिन्न संस्थानों ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थानों ने कुछ गांव भी अंगीकृत किए हैं, तो उस गांव का कृषि संबंधित संपूर्ण विकास पर भी हमारा परिषद है वो कार्य करता है। तो केवी के भी कार्य कर रहा है, आपका परिषद के संस्थान भी कार्य कर रहे हैं, विभिन्न जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एनजीओज हैं वो भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और साथ में हमारा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ हम करते हैं स्वयं आकर के जो करते हैं, तो वो भी इसको कार्य कर रहे हैं, और नाबार्ड है इनका, जैसे लक्षित है कि वो 10,000 एफपीओ बनाने हैं, तो एफपीओ के साथ साथ वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बनाते हैं, जो संगठन है बना करके, और वो भी विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो इसमें तकनीकी ज्ञान देते हैं, जानकारी प्राप्त करें, तकनीकी सीखें।
1: जैसे आप लोगों के बीच में रह रही हैं और आपने देखा कि महिलाओं में काफी परिवर्तन आया है डिजिटल तरीके से चलने से, तो अनुभव को जरूर शेयर करें। जो महिलाएं घर में बैठी हैं तो वो जब सुनेंगी कि हाँ इसके जरिए भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा जा सकता है, तो वो थोड़ा सा अनुभव आप शेयर करें कि क्या परिवर्तन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में इस डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर के नजर आ रहा है।
0: परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, क्या परिवर्तन नजर आ रहा है, बताऊंगी कि कुछ महिलाएं, जैसे कुछ क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो बहुत हिचकती थी कि किस तरह से डिजिटल में कोई मतलब साक्षरता नहीं है उनको, तो कैसे वो उस चीज को करें। जैसे मैंने बताया कि विभिन्न प्रशिक्षण क्षेत्र हैं, उनको प्रशिक्षण तो प्रदान किया ही जा रहा है, तो उससे वो काफी आगे आई है, और उनके जीवन में परिवर्तन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा शब्द है परिवर्तन लाना, किसी का पूरा जीवन बदल देना। तो इसमें उद्यमता के कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार

0: हुआ है। महिलाओं में आत्मविश्वास, और जैसे आपने शुरू में बोला था कि महिलाएं आजकल नेतृत्व कर रही हैं,
1: हाँ क्षमता रख रही हैं,
0: क्षमता रख रही हैं, तो नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है। आज के दौर में पारिवारिक निर्णयों में जो है महिलाएं भागीदारी करने लगी हैं, और लैंगिक समानता की जो हम बात करते हैं
1: जी,
0: तो वो महिलाओं में आ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक गतिविधियों में उनकी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत हुई है, तो इससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी उनका उद्धार हुआ है, और साथ साथ ही उनकी पहचान बहुत बड़ी है। सिर्फ गाँव में नहीं, आज वो क्षेत्र विशेष में जानी पहचानी जा रही हैं। तो मुख्य परिवर्तन यह होगा, परिवार के लोगों के साथ साथ बाहर के लोग उनको जानने लगे हैं, और उनकी एक वैल्यू होती है जो महिला की, उसको समझने लगे हैं आत्मनिर्भरता के रूप में।
1: कहने का मतलब है कि ग्रामीण महिलाओं की ऑनलाइन जो उद्यमिता है उसका भविष्य अच्छा होगा।
0: जी बिल्कुल, भविष्य बहुत अच्छा होगा। ऑनलाइन उद्यमिता का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है ऑनलाइन उद्यमिता की, और भविष्य में मैं उम्मीद करती हूँ कि अनेक महिलाएं जो है वो डिजिटल मंचों का उपयोग करेंगी, जैसे कृषि में ही नहीं, कृषि, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा क्षेत्र, इन सभी में सफल उद्यम करेंगी, और अर्थव्यवस्था को, एक हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको एक नई दिशा जरूर मिलेगी।
1: चलते चलते आप मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगी, जैसे परिवार का सदस्य भी साथ दे, परिवार का सदस्य अगर साथ देता तभी महिला आगे बढ़ पाती है, क्या कहना चाहेंगी मोटिवेशन के तौर?
0: जी, तो यहाँ पर पुरुषों का बहुत ज्यादा योगदान रहेगा कि घर के पुरुष, घर के बच्चे और साथ की साझी महिलाएं
1: जी,
0: चाहे सास हो, ननद हो, बहन हो, जेठानी हो, ये सभी महिलाएं और साथ में घर के पुरुष, अगर ये किसी महिला को आगे बढ़ाएंगे, वो महिलाओं के लिए एक सपना जो सबकी आंखों में रहता है आगे बढ़ने, पुरुष भाइयों से गुजारिश है और साथ में घर की महिलाओं से भी ये गुजारिश है, आगे बढ़े और बाकियों को भी बढ़ने दें, साथ में नारी तू है नारायणी वाले स्वप्न को जरूर पूरा करें।
1: डॉक्टर प्रतिभा जोशी जी, देखिए बहुत ही विस्तार में आपने बताया कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ऑनलाइन उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये हमारी बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी बातचीत थी, ग्रामीण महिलाओं के ऑनलाइन उद्यमिता का रास्ता खोलने वाली बातचीत थी, और इसमें विशेषज्ञ थी डॉक्टर प्रतिमा जोशी, आप वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार में, और इनसे बातचीत कर रही थी यमुना देवी।
3: तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने भाइयों का करवाते हैं मनोरंजन, और सुनते हैं श्रीनिवास शर्मा से ये रागिनी।

0: और साथियों, अभी आप सुन रहे थे श्रीनिवास शर्मा को और उनकी गाई इस रागनी को। और शीतल बहन, आज बड़ा एक खास दिन है। नाम तो इसका बड़ा लंबा चौड़ा सा है लेकिन इसका महत्व बड़ा अलग है। आज है अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस। अब आप कहोगे कि वीरेंद्र भाई ये होता क्या है, तो ये क्या है कि पृथ्वी की एक ऐसी स्थिति जहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं या क्षेत्र हैं, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है और पर्यावरणीय धरोहर है वो बड़ी अलग है। और उसी से पूरी पृथ्वी की जो 80% जनसंख्या है उसका पालन पोषण होता है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। तो आज इस दिवस को मनाया जाता है 29 जून को, और इसमें जो भी अनूठी चुनौतियां होती हैं उनके बारे में बातचीत की जाती है
1: और लोगों को जागरूक किया जाता है
0: जी, और सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाया जाता है
1: जी। बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगली रागनी सूरज सिंह अधाना की आवाज़ में।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे सूरज सिंह अधाना की आवाज में ये रागनी, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षिण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्त

0: साद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम। तो आज शीतल बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां आपके लिए और अपने किसान बहन भाइयों और युवाओं के लिए लेकर आए हैं हम।
0: जी बिल्कुल, पर श्रोताओं खासकर ध्यान रखें कि जैसे कि मौसम आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा गर्म है, लू चल रही है, मेरा खुद का भी गला खराब है क्योंकि ठंडा गर्म हो जाता है, मुझे भी हो गया है। आपको ख्याल रखना है खासकर, और इस समय जो आपको सेवन करना है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम एक बार गर्मियों में खाना हम कम खा लें चल जाएगा, लेकिन पानी हमें प्रचुर मात्रा में चाहिए ही चाहिए, चाहे वो हम पानी पिए या जूस पिए या कोई भी हम तरल पदार्थ लें। और ऐसे में क्या होता है, जो हमारी प्रकृति ने हमें सब्जियां दी हैं गर्मियों में, ऐसी सब्जियों का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो
1: जी।
0: तो फिर आज हम बात करेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि ग्रामीण युवा किस प्रकार बात करें
1: जी। और आज हम आपको बताने वाले हैं अर्बन फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग के बारे में, कि कैसे छोटी सी जगह में हम अपनी आवश्यकता की या बिक्री के लिए थोड़ी बहुत सब्जी फलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ग्रामीण युवाओं के लिए शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की कैसे व्यवस्थित तरीके से व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है, इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत कुमार
0: जी। बिल्कुल, आप वैज्ञानिक हैं केवी के बागपत से
1: जी।
0: तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: नमस्कार
0: जी। बिल्कुल सर, अब सर बताएं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो व्यवसाय के लिए उगा सकते हैं।
2: बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे जो पहले आपने शहरी और फार्मिंग की बात की है, हम शहरों में जो है किस तरह की खेती कर सकते हैं। देखिए, आजकल क्या है, सबको शहरों में ताज़ी सब्जियां और रसायन मुक्त सब्जियों की आवश्यकता आज बढ़ती चली जा रही है
1: जी।
2: तो ऐसे में जो हमारे छतें हैं, छत पे हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, और जो हमारी बालकोनीज है वहाँ भी हम अपने हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से और अपना जो है मल्टीलेयर फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं उसके माध्यम से जो है कर सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने घर में ही शहरों में जो हमारे छोटे छोटे मकान हैं या छत हैं उन पे जो है हम मल्टीलेयर फार्मिंग या हाइड्रोपोनिक्स के या एरोपोनिक्स के माध्यम से जी ताज़ा सब्जियां, रसायन मुक्त सब्जियां उगा सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं उसमें जो सीधे खड़े हुए गमले होते हैं उनके अंदर जगह जगह होल से होते हैं और उनके अंदर फार्मिंग होती है, कुछ ऐसी व्यवस्था होती है?
2: जी जी जी, वर्टिकल फार्मिंग इसे ही कहते हैं हम, जिसमें जो है हम लेयर में जो है परत दर परत जो है सब्जियां जो है उगाते

0: हैं पाइपों के माध्यम से, और इसमें कम जगह में, कम समय में और कम पानी में
1: जी
0: हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां जो है वो ले सकते हैं। और इस तरह से जो है हमारे जो एक आपने एक और प्रश्न किया था, उसमें आपने पूछा था कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम संरक्षित कर सकते हैं,
1: जी
0: जिसे जो है हम
1: हाँ
0: अच्छे से संरक्षित रख सकते हैं। तो
1: जी
0: उसमें अगर हम बात करते हैं डेली यूज में जो सब्जियां ज़्यादातर प्रयोग होती हैं, चाहे हमारा टमाटर हो, मिर्च है,
1: जी
0: आपका बैंगन है, लौकी, तोरई, करेला, ककड़ी, ये इस तरह की सब्जी जो ज़्यादातर ज़्यादा यूज़ में होती हैं, इन्हें हम आसानी से उगा भी सकते हैं और संरक्षित भी रख सकते हैं।
1: जी
2: जी सर, अच्छा शहरों में सब्जियों की सप्लाई का व्यवसाय ग्रामीण युवाओं के लिए क्या लाभदायक हो सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही आज की परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे ग्रामीण युवक हैं वो रोजगार के लिए शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, पर शायद उन्हें ये ध्यान देना है कि असली रोजगार वो गांव से ही प्रारंभ होता है, और उसके लिए आज शहरों में जो है ताजी सब्जियों की मांग, रसायन मुक्त सब्जियों की
1: जी
0: मांग,
1: जी
0: वो दिनादिन बढ़ती चली जा रही है।
1: जी
0: इसके लिए हर आदमी ये चाहता है, शहरों में रहने वाला, कि उसे ताजी सब्जियां, रसायन मुक्त सब्जियां अगर मिल जाए तो उसका जो है वो 2 से 3 गुना अधिक दाम भी देने को तैयार है।
1: जी
0: तो जो ग्रामीण युवक है वो गांवों से जो है ताजी और रसायन मुक्त सब्जियों को शहरों में ले जाके, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे होटलों में हो, वहाँ उनकी सब्जियाँ बेच के जो है वो अच्छा धन कमा सकता है। इसमें जो है जो उपभोक्ता है, जो शहरी
1: क्षेत्र में रहने
0: आदमी
1: वाले
0: हैं, उन्हें भी एक लाभ होगा। जो बिचौलियों के माध्यम से जो है वो सब्जी शहरों तक पहुंचती है, वो उसमें कई दिन लगते हैं, यहाँ हम सीधे ही ग्रामीण युवक से के संपर्क में आके ग्रामीण युवक गांव में जो है सब्जियां पैदा कराए, वहाँ एक समूह बना के वो सब्जियों को ताजी अवस्था में जो है शहर में लेके जाए, और डिमांड के अनुसार
1: जी
0: जो डिमांड उन्हें मिलती है उस पे जो है ला के जो है वहाँ सप्लाई देगा। तो जिससे जो है हम बिचौलियों में जो हमारा ज़्यादा पैसा जाता है
1: जी
0: वहाँ से भी हम बच सकते हैं, और रसायन मुक्त सब्जियां जो है हमें शहरों में अच्छे से मिल सकती है, और गांव
1: जी
0: के लिए युवाओं के लिए एक अच्छा रोजगार
2: जी
0: ये अच्छा साबित हो रहा है।
2: तो सर, क्या कोई ग्रामीण युवा इस व्यवसाय की शुरुआत अगर करना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना होगा?
0: बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीण युवा है उन्हें किस किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली तो बात यह है कि वो जो हरी सब्जियां जो शहर में तक ले जाएगा, हर आदमी फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फल, फ्रेश फूल, ये सब चीज़ पसंद करता है। तो उसे सबसे पहले जो है जो वाहन है वो इस तरह का बनाना पड़ेगा जिससे जो है वो शहर तक ले जाने में सब्जी एकदम ताज़ी बनी रहे। अपने जो ठेला है या जो भी वाहन का जिसका इस्तेमाल कर रहा है
1: जी
0: उसमें इस तरह का रेफ्रिजरेटर वगैरह उसमें रखा होना चाहिए, जिससे जो है शहर तक जाने में जो है हमारी सब्जियां जो
1: जी
0: है वो ख़राब ना हो,
1: जी ताजी बनी रहेंगी तो ज्यादा मूल्य मिलेगा
0: ज़्यादा
1: उनका।
0: ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिलेगा।
1: जी
0: दूसरी चीज़ डिमांड, मैंने कहा कि डिमांड के अनुसार आज डिमांड जो है वो प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक उत्पाद या जैविक उत्पाद का जो है
1: जी
0: वो 2-3 गुना ज़्यादा अधिक मिल रहा है। तो उसे
1: जी
0: जो है इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सब्जियां किस माध्यम से जो है शहर तक जाएंगी वो फ्रेश बनी रहे उसका इस्तेमाल उसे ज्यादा से ज्यादा करना है।
1: जी अभी आपने बताया कि वो जो ताजी सब्जियां हैं उनका मूल्य ज्यादा मिलता है, तो
0: जी
1: वो सब्जियों की गुणवत्ता भी इसमें अच्छी होती है, तो और ज्यादा
0: जी जी
1: उसमें वो
0: जी
1: मिलता
0: जी
1: है। ऑर्गेनिक खेती में जो सब्जियां होती हैं
0: जी
1: उनकी मतलब खाने की जो स्वाद की गुणवत्ता होती है वो
0: जी
1: अलग ही होती है।
0: देखिए
2: जी बिल्कुल
0: आजकल क्या हुआ है कि आज से 25-30 साल पहले अगर हम बात करें, जब घरों में सब्जियां बनती थी तो आप देखिए कि दूसरा तीसरा घर भी ये बताता था कि भाई आपके यहाँ लौकी बनी है,
1: जी
0: आपके यहाँ
1: जी
0: फूल गोभी बनी है, आपके यहाँ
1: जी
0: ये वाली सब्जी बनी है। पर आज क्या हो रहा है कि आज केमिकल जो रसायन जो है इतना ज़्यादा, इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड या फर्टिलाइजर इतना ज़्यादा
1: जी
0: इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों की बहुत सारे किसान नहीं सुन रहे हैं, वो अनाधुंध उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं,
1: जी
0: कीट आए या ना आए उसमें जो है इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं हमने जो है जो खुशबू थी तो वो जो है हमारी गायब हो गई है, और हम जो है जो उचित सब्जियां हमें मिलनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है वो शायद आज बहुत सारे किसान नहीं उगा पा रहे हैं
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जो ग्रामीण युवा है उस पर वो तकनीकी आती हैं, जैसे वो अपने गांव में क्या होता है कि गांव में तो बड़े बड़े खेत होते हैं, शहरों में जमीन का अभाव होता है
1: जी।
0: तो जो शहरों में भी हम ग्रामीण युवक टेरेस गार्डन ग्रो बैक लगा के ड्रिप इरीगेशन लगा के वहाँ भी जो है शहरी लोगों को वहाँ अपनी छतों पे उनकी छतों पे करने का तरीका भी बता सकता है और उसे भी करा के जो है वो आय अर्जित कर सकता है
1: जी।
2: सर जैसे कि आप बात कर रहे थे गुणवत्ता और ताजगी की बहुत बड़ी भूमिका होती है जब सब्जियां पहुंचती हैं शहरों वालों के पास, तो क्या इसमें परिवहन और पैकेजिंग और भंडारण की भी क्या कोई भूमिका होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ग्रामीण युवक को ये ध्यान देना है कि भाई मुझे डिमांड कितनी है उतनी ही सब्जी का वो भंडारण करें
2: जी।
0: भंडारण इस तरह से ना करें कि भाई हमें डिमांड जो है एक कुंतल की और हम दो कुंतल ढाई कुंतल लेकर रख लें तो उसकी गुणवत्ता जो है वो डाउन हो जाएगी, फिर उसकी मार्केट नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि पैकेजिंग आजकल इको फ्रेंडली का जमाना है
2: जी।
0: ठीक है ना, इको फ्रेंडली जो है पैकिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ हाइजीन का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है
2: जी।
0: इस तरह से पैकिंग की जाए एकदम शुद्ध, ताकि जो है वो शुद्धता बनी रहे, उसे खाने वाले बीमार ना हो, इस तरीके से रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो ताजी बनी रहे।
2: तो क्या सर देखने में भी थोड़ी सुंदर होनी चाहिए कुछ ऐसी भी पैकेजिंग, या फिर बस सिंपल एक पन्नी की तरह कुछ होती है?
0: पैकेजिंग की सुंदरता पे नहीं जाइए, सब्जी की सुंदरता पे जाइए, खाने की
1: ताजगी पे
0: जाइए, उसकी गुणवत्ता पे जाइए, वो रसायन मुक्त हो उस पे जाइए। ठीक है ना, पैकिंग मैंने कहा हाइजीन होनी चाहिए, पैकिंग ग्रेडिंग के हिसाब से होनी चाहिए। आजकल ग्रेडिंग का टाइम चल रहा है कि एक ही तरह की ग्रेडिंग जो है होनी चाहिए, अगर जिस साइज के फल है, जिस साइज के फूल हैं, जो भी है सब्जियां हैं, वो एक ही ग्रेड की जो है सब्जियां होनी चाहिए। ए ग्रेड है तो ए ग्रेड, बी ग्रेड है तो बी ग्रेड, सी ग्रेड है तो सी ग्रेड, तो ग्रेडिंग के अनुसार हमारी पैकिंग होनी चाहिए, जिसका मूल्य जो है हमें अच्छा मिलता है।
2: तो सर ग्रेडिंग के अनुसार ही मार्केट में सब्जी की बिक्री होती है कि ये ग्रेड की है तो उसके अनुसार आपको उसका?
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा जो अच्छी मार्केट है, जो अच्छे खरीदार है वो ए ग्रेड की सब्जियां खरीदेंगे। ठीक है ना, अगर आपने उस पर लेवल लगाया हुआ है कि ये जैविक उत्पाद है या प्राकृतिक उत्पाद है, तो उसका लेवल लगा हुआ जो है उसके खरीदार आपको अलग मिलेंगे। बी ग्रेड की जो सब्जियां हैं फल हैं, उसका जो है बी ग्रेड वाले लोग अलग मिलेंगे आपको, वो थोड़ा सा कम कॉस्ट वाले जो कम खर्च करने वाले लोग हैं। सी ग्रेड की सब्जियां हैं तो सी ग्रेड के खरीदार आपको अलग मिलेंगे। तो मार्केट में हर तरह का खरीदार है, आप किस क्वालिटी का आप बेचना चाह रहे हैं वो।
2: मतलब किसी भी किसान को या ग्रामीण युवाओं को नुकसान नहीं होगा, आपको हर तरह का ग्राहक शहरों में मिल
0: जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही आपको क्या करना है कि आजकल सोसाइटी में, मल्टीप्लेक्स में, आपके रेस्टोरेंट में पहले ही डिमांड लेनी पड़ेगी
1: जी।
0: अगर आप पहले से डिमांड नहीं लेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि फिर आप ऐसे घूमते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा
1: जी।
0: तो पहले से आपको डिमांड लेनी है और डिमांड के अनुसार आपको सप्लाई देनी है।
2: तो सर क्या इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग होती है? इस पे हम बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अपने भाइयों का करवाएंगे मनोरंजन और सुनेंगे राजेंद्र जाटक के आज में एक उपदेश।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र जाटव को, और हम अर्बन फार्मिंग की और टेरेस फार्मिंग की खास बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी जानकारी डॉक्टर अनंत कुमार ने हमें दी है, लेकिन अभी और भी जानकारी आपके साथ साझा करनी है। तो शीतल, आप भी अच्छी अच्छी सब्जियां खाती होंगी, तो आपको कभी इस विषय की याद आई कि भाई मैं भी थोड़ी बहुत खेती वेती कर लूँ छतवर पे?
1: लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कर लेना चाहिए, फायदा होगा
0: जी। डॉक्टर साहब आए हैं तो उनसे पूछ लो जो भी पूछना है।
1: तो सर, ये बताएं कि हम बात कर रहे थे कि फार्मिंग के बारे में, क्या सरकार या विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस प्रकार का कोई व्यवसाय अगर हम करते हैं तो कोई ट्रेनिंग या कोई लोन या कोई सहायता सरकार हमें देती है, ये अर्बन फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग को लेकर?
2: जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने पूछा है। देखिए, जब हम अर्बन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, शहरी खेती की बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं आपका टेरेस गार्डन की, उसमें बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की, उसमें बात करते हैं एरोपोनिक्स की, उसमें बात करते हैं हम वर्टिकल फार्मिंग की।
1: सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। आपने सर दो तीन बार ये शब्द इस्तेमाल किया, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स वगैरह।
2: जी जी जी,
1: वो क्या है सर, एक बार हमारे श्रोताओं को?
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कम क्षेत्रफल में पाइपों के माध्यम से उसमें केवल पानी और जो पोषक तत्व हैं वो मिला के जो है चलाए जाते हैं, जिसमें जो है जो पौधे को खड़ा करने के लिए हम कोकोपिट और परकोलाइट का इस्तेमाल उसमें करते हैं
0: जी।
2: इसमें बस पानी में पोषक तत्वों को हम चलाते रहते हैं, अलग से और कुछ नहीं डालते, मीडिया इसमें और इसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं। और ये हम अपने घरों की छतों में या बालकोनी में ये पाइपों के माध्यम से पूरा जाल बना लेते हैं, और उसी में जो है आप जो है जो सीजन की जो सब्जियां हैं वो बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि एकदम ताज़ी सब्जियां अपनी बालकोनी में से लीजिए, और उसमें रसायन मुक्त सब्जियां बड़े आसानी से उगाई जाती हैं, और शहरों में इसका चलन बहुत तेज़ी के साथ, इस आधुनिक तकनीकी का चलन जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसी तरीके से वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग में मैंने बताया कि इसमें जो है लेयर्स में, मतलब परत दर परत जो है हम अपने घरों में जो है या छतों पे जो है इस तरह का ढांचा तैयार करते हैं या रैक लगा लेते हैं, और रैक में जो है अपना गमला ये इस तरह से रख लेते हैं, या पाइपों में वर्टिकल फार्मिंग करते हैं
0: जी, जी।
2: तो जिस तरह का भी डिजाइन है आपको तैयार कराना है तो उस तरह का हम तैयार करा के इसमें हम सब्जियां, बिल्कुल ताज़ा सब्जियां, रसायन मुक्त सब्जियां जो है उगा सकते हैं। इसमें एक विधि मैंने और जिक्र किया है जिसमें मैंने बात की, एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या होता है कि इसमें

0: बिल्कुल जो है हम किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करते, बस न्यूट्रिएंट जो हैं, पोषक जो तत्व हैं,
1: जी
0: पौधे को जो 16-17 पोषक तत्व दिए जाने हैं,
1: जी
0: उसमें पौधे को एक बॉक्स में जो है उसकी जड़ें लटका दी जाती हैं हवा में, और वहाँ जो है भाप के द्वारा, फोक के द्वारा जो है वो पूरे पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे पौधा जो है जड़ों के माध्यम से ले लेता है। और इसमें जो हम आलू की खेती है वो बड़े आसानी से करते हैं, और इसके साथ जो आपका पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उसे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
1: जी
2: सर, एक एक सवाल और मेरा यह है कि अगर कोई युवा है, ग्रामीण युवा है, कोई मिलकर किसान उत्पादक संगठन जो कि FPO होते हैं,
0: जी,
2: या क्या किसी समूह के रूप में कार्य करे, तो क्या उसे अलग से कोई लाभ मिल सकता है?
0: देखिए बिल्कुल ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है इसका, आज के बातचीत का। देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे ग्रामीण युवक हैं वो अगर किसान उत्पादक संगठन अगर बना लेते हैं कि भाई हमें ये सब्जियां अपने क्षेत्र में उगवानी हैं, और इसे उगवाने के बाद हम शहरों में इसके डिमांड लेके जो है ये हम ताजिया रसायन मुक्त सब्जियां जो है सप्लाई देंगे,
1: जी,
0: तो इसका जो है आजकल क्रेज बहुत ज़्यादा है। FPO का आपने सुना ही होगा, FPO गांव गांव बनाए जा रहे हैं, तो उसमें जो है इसका विशेष तौर से अगर हमारे जो नए युवा हैं वो इस तरह से अपना एक संगठन बना के जो है ताजी सब्जियों को शहरों में आसानी से बेच सकते हैं, और अपना जो है आय का एक अच्छा स्रोत वो तैयार कर सकते हैं।
1: जी
2: सर, और सर अगर आपको कोई संदेश अगर देखना चाह रहे हो हमारे जो ग्रामीण युवा हैं या जो सपना देख रहे हैं कृषि आधारित उद्यम शुरू करने का या करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
0: देखिए जैसे मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ, तो मैं ये कहूँगा आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, पहले इसकी तकनीकी थोड़ी जानकारी लीजिए कि किस तरीके से जो है हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो अपने क्षेत्र में किस किस सब्जियों को आसानी से उगवा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो अपने नज़दीकी शहर हैं आप उस शहर में जाके जो है जो मल्टी स्टोरी हैं, सोसाइटीज़ हैं, आपके रेस्टोरेंट हैं या होटल्स हैं, उनमें जाके आप डिमांड लीजिए, फिर उसके आधार पर जो है अपने क्षेत्र में जो है सब्जियां तैयार कराइए। सब्जियां तैयार कराने के बाद फिर जो है आप वो सप्लाई दीजिए, और कोशिश करिए कि आपके पास ऐसे वाहन हों जिसमें जो है ताजी या सब्जियां शहर तक आसानी से पहुंच जाएं। खरीदार को ये लालच भी रहना चाहिए कि मुझे ताजी सब्जी मिल रही है, रसायन मुक्त मिल रही है, और साथ ही साथ जो किसान का जो है पैसा वो बिचौलिए पे ज्यादा जाता था, तो उसकी जो है सीधे जो है ग्रामीण युवक को सीधे बचत होगी, जिससे जो है वो FPO को बचत होगी, और FPO को सरकार से जो है लाभ मिलता ही मिलता है, ये सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे ग्रामीण युवा जो हैं वो अपनी आय का एक अच्छा स्रोत गांव में बैठे हैं जो है बना सकते हैं।
2: सर, कार्यक्रम के अंत में एक सवाल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई?
1: हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे छोटे किसान हैं वो भी क्या इन सब्जियों के उत्पादन में जुड़ सकते हैं शहरों से?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए सब्जियां जो है सबसे लाभकारी जो है एक उद्यम है। अगर वो सब्जियों की खेती करता है तो वो एक साल में 3-4 फसलें आसानी से ले सकता है, और आजकल क्या है मल्टी स्टोरी का जमाना आ गया। अब हम मल्टी स्टोरी जो है वो तैयार करा रहे हैं, एक ही साथ जो है वो 3-3, 4-4 फसलें लेवा रहे हैं, जिससे जो है छोटा किसान जो है एक साथ 3-4 फसलें लेकर जो है वो मार्केट के लिए अच्छी सब्जियां तैयार कर सकता है। और साथ ही साथ ये देखिए कि आजकल डिमांड बहुत तेजी के साथ जो है वो हमारी बढ़ रही है जैविक उत्पाद की, प्राकृतिक उत्पाद की, तो हमारे जो छोटे किसान हैं उस तरफ भी ध्यान दें कि कहाँ से हमें ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, तो उस तरफ जो है छोटे किसान जो है काम करेंगे, सब्जियों पर ज़्यादा काम करेंगे तो उन्हें ज़्यादा फायदा जरूर पहुँचेगा।
1: जी, तो डॉक्टर साहब बहुत ही लाभकारी रही है आपसे ये बातचीत, और विषय था ग्रामीण युवाओं के लिए शहरों में सब्जियों की सप्लाई और अर्बन फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग, और इस विषय पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अनंत कुमार, आप वैज्ञानिक हैं बागपत में।
2: जी बिल्कुल, और ये जो बातचीत हमारे साथ डॉक्टर साहब ने की, हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए शहरों में सब्जियों की सप्लाई के व्यवसाय से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यकीनन हमारे जो ग्रामीण युवा हैं और साथ के साथ जो हमारे शहरी युवा हैं जो अपने टेरेस पे छत पे अगर कुछ फार्मिंग करना चाहते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी।
1: डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, आपका आभार, धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
1: और इसी के साथ

0: साथियों, आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजलों का, जिसमें आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाजों में चंद गजल।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल।

0: Well done.
1: Business loan approved.
0: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए।
5: राष्ट्रपति द्वारा ये अलंकरण 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा, 30 परम विशिष्ट सेवा, 12 उत्तम युद्ध सेवा और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक कर्मियों को उनकी असाधारण उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए गए हैं। ये सम्मान देश में आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। एयर मार्शल तरुण चौधरी को अति विशिष्ट सेवा पदक, वाइस एडमिरल

0: बाकी के साथ ही ये कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लव।

समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। एयर मार्शल तरुण चौधरी को अति विशिष्ट सेवा पदक, वाइस एडमिरल तरुण सोपती को उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं परम विशिष्ट सेवा पदक से लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता

0: पुरस्कार प्रदान किए थे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी नीति को मंजूरी दी है। 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहने वाली इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, शून्य कार्बन उत्सर्जन और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
2: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
3: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड

0: जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कम होगी, परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT में आयोजित टेक फॉर फ्यूचर, फ्यूचर मेकर्स इनोवेटर्स बूट कैंप के ग्रैंड फिनाले और इनोवेशन शोकेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम श्री स्कूलों के विद्यार्थियों ने स्मार्ट सिटी, कृषि, आपदा प्रबंधन और सहायक प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर 20 नवाचारी तकनीकी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए।
2: समारोह के दौरान शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के चार प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय महिला तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ 3 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के अंतर्गत श्री स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा अन्य उभरती तकनीकों में विशेषज्ञ मार्गदर्शन और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री सूद ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और उन्हें नवाचार आधारित कार्यबल के रूप में तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अलका सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: श्री कुमार ने कहा कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दाखिल की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में आज सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में सहकारिता जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर सप्ताह भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की।
4: सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 के शुभारंभ के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सहकारिता सामाजिक सहभागिता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त माध्यम है। वहीं सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह सहित दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद भी उपस्थित रहे। श्री सिंह ने कहा कि सप्ताह भर दिल्ली में जागरूकता अभियान, सेमिनार, पैनल चर्चा, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिताएं तथा वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नरेला, द्वारका, रोहिणी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल सहकारिता व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमयन और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
5: एप्लीकेशन

0: This launch is going to play a very important role.
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
0: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली विधानसभा में कल डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी की 162वीं जयंती के अवसर पर बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी के संकलित भाषण नामक विशेष स्मारक ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहेंगे। इस स्मारक ग्रंथ में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के संसदीय भाषणों का पहली बार एक संकलित संस्करण प्रकाशित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी अब तक कुल 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी झारखंड के जामतारा और देवघर सहित राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आरोपी पीड़ितों को व्हाट्सएप द्वारा एपीके फाइल भेजकर उन्हें इंस्टॉल करने के लिए उकसाते थे, जिससे पीड़ित की बैंक से जुड़ी जानकारी आरोपी को हासिल हो जाती थी। वहीं पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1392 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले 9 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने इस दौरान यातायात पुलिसकर्मियों को जाम वाली मुख्य जगहों पर लक्षित कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं गलत दिशा में गाड़ी चलाने और बिना अनुमति पार्किंग जैसे उल्लंघनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने पर भी बल दिया। उपराज्यपाल ने पुलिसकर्मियों से स्थानीय निवासियों के साथ जनसंपर्क बढ़ाने और क्षेत्र के हिसाब से समाधान विकसित करने के लिए नागरिक केंद्रित प्रोजेक्ट संगम का भी उल्लेख किया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स एशियन जूनियर चैंपियनशिप में वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए युवा जिम्नास्ट अक्षत बजाज को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि अक्षत बजाज की मेहनत, अनुशासन और समर्पण देशभर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक और पद्म विभूषण डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर महालनोबिस की दूरदर्शी सोच ने आंकड़ों को प्रभावी नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास का सशक्त माध्यम बनाया। राजधानी में आज दिन भर तेज धूप रही और शाम के समय हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है और शाम के समय हल्की वर्षा, आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने आज साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और शासन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग के बढ़ते महत्व पर बल दिया। श्री मिश्रा ने नई दिल्ली में 20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक

0: वाहन नीति को मंजूरी दी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसकी

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 8 बजने को है, प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। कृपया इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: खेलों का आईना,

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
1: प्रतीक आनंद। नमस्कार श्रोताओं।
0: और आज खेल खिलाड़ी में क्या है खास, सबसे पहले वह जानेंगे। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में क्या रहा खास और कौन कौन सी टीमें पहुंची सेमीफाइनल में, वो आज हम जानेंगे। और क्रिकेट की ही बात को जारी रखते हुए, भारत और आयरलैंड के बीच हुआ दूसरा टी20 मैच पर रिपोर्ट भी आज आप सुनेंगे और साथ ही साथ एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे इस हार को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा बहुचर्चित लोकप्रिय फीफा वर्ल्ड कप की जानकारी कार्यक्रम के दौरान आपको दी जाएगी। 65वां इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में भी बताएंगे, कौन कौन से खिलाड़ी एशियन गेम्स में क्वालिफाई किया और कितने नेशनल रिकॉर्ड्स बने। इसके अलावा पेरिस डायमंड लीग की बात करेंगे, यूएस ओपन बैडमिंटन, विंबलडन और FIH प्रो लीग के बारे में भी आज कार्यक्रम में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से।

0: आइए अब बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की, जहां कल देर रात नॉकआउट स्टेज की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक और करो या मरो वाले दौर की, जहां इतिहास रचने और बाहर होने के बीच सिर्फ 90 मिनट का फासला है। कल कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर अगले राउंड में यानी राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। मुकाबला शुरुआत से ही बेहद कड़ा और रक्षात्मक रहा। शुरू से ही दोनों टीमों ने मौके बनाए मगर गोल दागने में असमर्थ रही, जिसकी बदौलत हाफ टाइम पर स्कोरलाइन 0-0 रही। दोनों टीमें पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में खेल रही थी, जिसका दबाव साफ नजर आ रहा था। दक्षिण अफ्रीका की बफाना टीम ने पूरे मैच में रक्षात्मक खेल दिखाया और उनके गोलकीपर कप्तान रॉनवेन विलियम्स ने कुल 5 शानदार बचाव किए। दूसरे हाफ में भी टीमों ने जुझारू खेल दिखाते हुए अपनी अपनी रक्षा पंक्ति को सजग रखा और गोल बचाव में अहम भूमिका निभाई। जब ऐसा लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, तभी खेल के अतिरिक्त समय में कनाडा के मिडफील्डर स्टीफन युस्ताकियो ने पेनल्टी बॉक्स के ठीक बाहर से एक शानदार हाफ वॉली गोल मारकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। उन्होंने अपनी तरफ आती बॉल को चेस्ट डाउन कर दाहिने पैर से एक दंदनाता शॉट सीधे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दे मारा।
1: This is dropping nicely. Ezequiel! Steven Ezequiel!
0: जिसने कनाडा को राउंड ऑफ 16 का टिकट दिला दिया। यह कनाडा के फुटबॉल विश्व कप इतिहास की पहली नॉकआउट जीत रही, साथ ही यह कनाडा का फुटबॉल विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। वहीं बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो भले ही वह हार गए, लेकिन ग्रुप स्टेज में दक्षिण कोरिया को हराकर राउंड ऑफ 32 में पहुंचना उनके विश्व कप इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। आइए अब नजर डालते हैं आज के नॉकआउट मुकाबलों पर। पहला मैच ब्राजील बनाम जापान होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से टेक्सास के ह्यूस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक तरफ सांभा मैजिक होगा, वहीं दूसरी तरफ समुराई ब्लू। जापान ने अक्टूबर 2025 में एक दोस्ताना मैच में ब्राजील को 3-2 से शिकस्त दी थी। अब देखना यह होगा कि क्या जापान ब्राजील

को चुनौती दे पाएगा। ब्राजील की टीम में निगाहें रहेंगी उनके स्टार खिलाड़ी विनीशियस जूनियर पर, जो अब तक 4 गोल दाग चुके हैं, साथ ही मथियस कुन्या पर, जिनके नाम भी 3 गोल हैं। वहीं बात करें जापान की, तो जापान की ओर से दाइची कमाडा और अयासे उएडा ने 2-2 गोल मारकर अपनी टीम को राउंड ऑफ 32 तक पहुंचाया है। अगर इस प्रतियोगिता की बात करें तो जापान का सबसे शानदार गोल कन्वर्जन रेट रहा है। बात करते हैं आज के दूसरे मुकाबले की, जो कि होगा जर्मनी बनाम पेरेगुए। यह मुकाबला मैसाचुसेट्स के बोस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार रात 2 बजे से शुरू होगा। जर्मनी के स्टार खिलाड़ी जोशुआ किमिच की कप्तानी में जर्मनी अगले राउंड में प्रवेश करना चाहेगी। कोच जूलियन नगेल्समैन की शानदार युवा टीम आज पेरेगुए से लोहा मनवाएगी। जर्मनी में स्टार खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जमाल मुसियाला, फ्लोरियन विट्स, काय हवर्त, लेरोय साने। वहीं पेरेगुए गुस्तावो गोमेज की अगुवाई में अगले चरण में खेलना चाहेगी, जहां उनके स्टार खिलाड़ी मिगेल अल्मेरॉन खेलते दिखेंगे। जर्मनी इस मैच में प्रबल दावेदार बनके उतरेगा, लेकिन उनकी चिंता का विषय यह है कि वह अपना आखिरी मैच दक्षिण अमरीकी टीम इक्वाडोर से 2-1 से हार गए थे। वहीं पेरेगुए की टीम बेहद रक्षात्मक खेल के लिए जानी जाती है, जिन्होंने 10 खिलाड़ी सहित खेलते हुए भी तुर्की को 1-0 से हराया था। यह मैच बेहद रोमांचक रहेगा। अब बात करते हैं आज के तीसरे मैच की, नीदरलैंड्स बनाम मोरक्को। यह मैच मेक्सिको के मोंटेरे स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार कल सुबह 6:30 बजे खेला जाएगा। यह मैच इस स्टेडियम का इस विश्व कप में आखिरी मैच होगा। हेड कोच रोनाल्ड कोमन और कप्तान वर्जिल वैन डाइक की अगुवाई में नीदरलैंड्स अगले चरण में प्रवेश करना चाहेगी। वहीं मोरक्को की टीम 2022 कतर विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने के बाद अब दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक गिनी जाती है। नीदरलैंड्स के स्टार खिलाड़ी ब्रायन ब्रॉबी अब तक 3 गोल मार चुके हैं, वहीं कॉडी गैको अब तक 2 गोल दाग चुके हैं। वहीं बात करें मोरक्को के स्टार मिडफील्डर इस्माइल साइबरी पर सबकी निगाहें रहेंगी, जो अब तक 3 गोल कर चुके हैं।

0: और फीफा के बाद अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत के बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत का यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार सफर रनर अप के साथ खत्म हुआ। मेंस सिंगल्स के फाइनल में उन्हें चीनी ताइपे के सुलियांग से 3 गेम के कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले 33 साल के किदांबी ने पहला गेम हारने के बाद वापसी करते हुए मैच को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया, लेकिन अपने से 9 साल छोटे और दुनिया के 46वें नंबर के खिलाड़ी से हार गए।
1: I feel like I played okay. Could have played a little better maybe in the opening set. Otherwise, I feel I've played okay. You know, the second half of third set, it was just hitting really well all of a sudden. But probably I should have maybe played a little better in the opening set. I just feel like whatever I've been doing is working. I just have to keep working hard. Probably I feel like I'm there. It's just about being able to. He's been playing really well. You know, last few months he's been playing really well. So just it's another day where he kind of played exceptionally well in the during the points that really matter.
0: एक घंटे से ज्यादा चले इस मुकाबले में श्रीकांत को आखिरकार 15-21, 21-16, 9-21 से हार मिली। मुकाबले के शुरुआत में श्रीकांत अच्छी लय में नजर आए, लेकिन शुरुआती रैलियों में हुई एक गलती उन पर भारी पड़ गई और नेट के पास शॉट खेलते समय उनका रैकेट नेट के दूसरी तरफ चला गया, जिसके बाद सुलियांग ने लगातार अंक जुटाकर 7-2 की बढ़त बना ली। हालांकि श्रीकांत ने शानदार वापसी करते हुए अगले 11 में से 8 अंक अपने नाम किए और स्कोर 10-10 के बराबर कर दिया। मिड गेम ब्रेक तक उन्होंने 11-10 की मामूली बढ़त भी बना ली थी, लेकिन ब्रेक के बाद सू ने खेल की रफ्तार बढ़ा दी और श्रीकांत से लगातार गलतियां करवाते हुए 17-12 की बढ़त हासिल कर ली। आखिरकार पहला गेम 21-15 से सू

0: यांग के नाम रहा। वहीं दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। 4-4 की बराबरी के बाद श्रीकांत ने लगातार 3 अंक जीतकर 7-4 की बढ़त बनाई। सू ने स्कोर 8-8 कर दिया, लेकिन श्रीकांत ने बेहतरीन नेट प्ले की बदौलत ब्रेक तक 11-8 की बढ़त कायम रखी। इसके बाद सू ने कुछ शानदार स्मैश लगाए, लेकिन श्रीकांत ने धैर्य बनाए रखा और स्कोर 18-13 तक पहुंचा दिया। विरोधी खिलाड़ी की कुछ गलतियों के बाद उन्हें 7 गेम पॉइंट मिले। सू ने 3 गेम पॉइंट जरूर बचाए, लेकिन श्रीकांत ने दमदार डाउन द लाइन स्मैश लगाकर दूसरा गेम 21-16 से जीत लिया और मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। वहीं तीसरे गेम से सू ली यांग ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और लगातार सटीक स्मैश लगाते हुए 4-1 की बढ़त बना ली। और श्रीकांत ने बीच बीच में अच्छे शॉट खेले, लेकिन लगातार हो रही गलतियों का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और मिड गेम ब्रेक तक सू ने 11-7 से बढ़त बना ली थी। इसके बाद उन्होंने बढ़त को 15-7 और फिर 18-8 तक पहुंचा दिया और श्रीकांत के कई शॉट कट से कोर्ट से बाहर चले गए, जिससे सू को 12 चैंपियनशिप पॉइंट मिल गए और श्रीकांत एक पॉइंट बचाने में सफल रहे। लेकिन अगली रैली में सू ने अंक हासिल कर मैच और खिताब दोनों अपने नाम कर लिया और यह सू ली यांग के करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब रहा, जबकि श्रीकांत के लिए यह सीजन का पहला फाइनल था।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप आइए बात करते हैं ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की, जहां कल देर शाम एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। कहानी कल लॉर्ड्स के एक ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के महामुकाबले की, जिसने ना सिर्फ करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ा बल्कि इस टूर्नामेंट की दिशा ही बदल दी। यह मुकाबला भारत के लिए करो या मरो का था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स की पिच पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का साहसिक फैसला लिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 170 रनों का मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, लेकिन सामने 6 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवरों में ही 4 विकेट खोकर 172 रन बना दिए और 6 विकेट से इस रोमांचक मैच को जीत लिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप इतिहास का सबसे सफल रन चेस दर्ज कर एक नया कीर्तिमान रच दिया। भारतीय पारी की शुरुआत शानदार रही। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधना 38 रन और शेफाली वर्मा 34 रन ने पहले विकेट के लिए 66 रनों की आक्रामक साझेदारी की। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैदान पर आते ही तबाही मचा दी। उन्होंने विपक्षी कप्तान सोफी मॉलिनॉक्स के आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ते हुए महज 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो महिला T20 विश्व कप में किसी भी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक है। हरमनप्रीत ने 207.41 के स्ट्राइक रेट से 27 गेंदों पर नाबाद 56 रन बनाए, जिसमें 6 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जेमिमा रॉड्रिगेस ने भी 34 रनों का बखूबी योगदान दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 19वें ओवर में रिटायर आउट होकर पवेलियन लौट गई। 171 रन का पीछा करते ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत की तेज गेंदबाजी रेणुका सिंह ठाकुर ने मैच की पहली गेंद पर ओपनर जॉर्जिया वॉल को LBW का पहला झटका दिया। इसके बाद भारतीय स्पिनर श्री चरणी और दीप्ति शर्मा की किफायती गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम 9.1 ओवर में 68 रन देकर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, लेकिन इसके बाद मैदान पर शुरू हुई एलिस पेरी और एशले

0: एलिस पेरी ने 38 गेंदों में 56 रन बनाए और उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि एशले गार्डन ने 29 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से नाबाद 53 रनों की तूफानी पारी खेली। 19वें ओवर में जॉर्जिया वेरम ने विनिंग बाउंड्री लगाकर ऑस्ट्रेलिया को अजय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। अब बात करते हैं होने वाले सेमीफाइनल्स की। पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज़ खेला जाएगा, जो कि 30 जून को भारतीय समयानुसार 7 बजे से खेला जाएगा। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में अब तक अजय रही है। उनकी बल्लेबाजी गहराई और पेरी गार्डनर की फॉर्म उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज़ की तरफ काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। वह अपने आखिरी ग्रुप मैचों में इंग्लैंड और आयरलैंड से हार गए थे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण श्रीलंका को पछाड़कर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। वेस्टइंडीज 10 साल पुराने अपने 2016 के खिताब के सूखे को ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन हेली मैथ्यूज की कप्तानी वाली इस टीम के लिए अजय कंगारुओं को रोकना एक हिमालयी चुनौती होगी। बात करें दूसरे सेमीफाइनल की, तो इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, जो कि 2 जुलाई को खेला जाएगा भारतीय समयानुसार 11 बजे से। मेज़बान इंग्लैंड की टीम इतिहास के एक अद्भुत आंकड़े के साथ मैदान पर उतरेगी। ICC के अनुसार इंग्लैंड ने आज तक कभी मेज़बानी में कोई भी T20 या वनडे विश्व कप नहीं हारा है। वह अपने सभी 5 ग्रुप मैच जीतकर प्रचंड फॉर्म में है, जहां डैनी वाइट हॉज न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 89 रन की पारी खेलने के बाद और सोफी एकल्सटन जैसी खिलाड़ी कमाल कर रही हैं। वहीं पिछले 2 संस्करण की उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने पहले विश्व कप की तलाश में है। हालांकि ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटीज टीम थोड़ी संघर्ष करती दिखी थी, लेकिन मरिजान कैप की शानदार ऑलराउंड फॉर्म और भारत के खिलाफ मिली बड़ी जीत के उनके हौसले 7वें आसमान पर पहुंचा दिए हैं। यह मुकाबला पूरी तरह से इंग्लैंड के घरेलू बादशाह बनाम दक्षिण अफ्रीका की खिताबी भूख के बीच होगा।
1: और क्रिकेट से जुड़ी ही खास एक खबर भी आ रही है। जी हाँ, ये क्रिकेट और ओलंपिक से जुड़ी खबर है। ओलंपिक्स में 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में क्रिकेट खेला गया था, जो आखिरी बार था, और उसके बाद अब 128 साल बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इसकी वापसी हो रही है। और इसके ICC और IOC ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स के लिए क्रिकेट की आधिकारिक क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की पुष्टि भी कर दी है। इसके तहत पहली बार ICC ओलंपिक क्वालिफायर का आयोजन 2027 में होगा और पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया से कम एक टीम की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और 5 स्थान ICC टूर्नामेंट और T20 इंटरनेशनल रैंकिंग के आधार पर तय होंगे, जबकि अंतिम स्थान 2027 में होने वाले पहले ICC ओलंपिक क्वालिफायर से मिलेगा। और महिला वर्ग में 2026 T20 विश्व कप के प्रदर्शन के आधार पर ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, भारत और दक्षिण अफ्रीका पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। प्रत्येक टीम 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड चुन सकेगी। प्रतियोगिता में 2 ग्रुप होंगे और जिनमें 3-3 टीमें रहेंगी, और ग्रुप चरण के बाद शीर्ष 2 टीमें स्वर्ण पदक के लिए भिड़ेंगी, जबकि तीसरे और चौथे स्थान की टीमें कांस्य पदक मुकाबला खेलेगी। पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताओं को मिलकर कुल 28 मैच खेले जाएंगे, जिनका आयोजन कैलिफोर्निया के पोमोना के विशेष रूप से बनाए गए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और क्रिकेट की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच की रिपोर्ट जानते हैं प्रतीक से।
0: अब बात करते हैं भारत बनाम आयरलैंड दूसरी T20 इंटरनेशनल की। श्रोताओं, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला उदाहरण कल बेलफास्ट के सिविल सर्विसेज क्रिकेट क्लब मैदान पर देखने को मिला। 28 जून 2026 की यह तारीख क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मौजूदा T20 विश्व चैंपियन भारतीय टीम को आयरलैंड के हाथों दूसरे T20 में महज 1 रन से

इसका सबसे बड़ा सबसे हैरान करने वाला उदाहरण कल बेलफास्ट के सिविल सर्विसेज क्रिकेट क्लब मैदान पर देखने को मिला। 28 जून 2026 की है तारीख, क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मौजूदा T20 विश्व चैंपियन भारतीय टीम को आयरलैंड के हाथों दूसरे T20 में महज एक रन से बेहद रोमांचक हार का सामना करना पड़ा। इस दिल थाम देने वाली जीत के साथ ही आयरलैंड ने भारत को इस सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। इसी के साथ

0: चाहिए थे तब प्रिंस यादव ने एक शानदार छक्का भी जड़ा। हालांकि टीम को जीत दिलाने में वह काफी नहीं रहा। दूसरी तरफ आयरलैंड के युवा सनसनी जय मुंदना ने इस मैच में तबाही मचा दी। उनकी घातक गेंदबाजी के लिए न सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बल्कि पूरी सीरीज में शानदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। श्रोताओं, इस मुकाबले ने क्रिकेट जगत में कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए। क्रिकेट इतिहास में पहली बार है जब आयरलैंड ने भारत को किसी भी फॉर्मेट की सीरीज में व्हाइट वॉश किया है।
1: जी हाँ, भारत सीरीज हार गई है 2-0 से। और जाना हमने कि एक्सपर्ट्स का कहते हैं इस हार पर और किस तरह से वो इस टीम के कॉम्बिनेशन और वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाने के बारे में कहते हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैचेस जो इंग्लैंड में हुए हैं, थोड़ा भारतीय टीम ने उसको कैजुअल, मैं कहूंगा कुछ अप्रोच कैजुअल थी। देखिए, वहां की विकेट्स का और कंडीशंस का बहुत फर्क होता है। उस कंडीशंस में खेलना, क्योंकि अभी ये हार्ड विकेट के गए हैं, वहां पर थोड़ा स्पंजी बाउंस होता है उन विकेट्स पे, खासकर इंग्लैंड आयरलैंड में। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज, खैर सभी प्रोफेशनल प्लेयर हैं और इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, पर जो खेल का एक नियम होता है ना, कि अभी उनका बैट उसी हिसाब से चल रहा है जो अभी आईपीएल खत्म हुआ, आईपीएल के हिसाब से खेले, तो कहीं ना कहीं वो फर्क इनको नजर आया देखने में, जिसकी वजह थी ये दोनों मैच लूज कर गए।
3: टीम कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं, बॉलर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं, सर क्या कहेंगे आप?
2: देखिए, जब टीम हारती है तो सवाल तो उठेंगे ही, और जब टीम हारती है तो हर एक चीज गलती नजर आती है। और अगर यही जीत लास्ट बॉल पे, जैसे अगर हर्षित राणा का वो छक्का लग जाता तो फिर वो जीत में सब कवर हो जाता। तो ये चीजें देखिए स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में चलती रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि देखिए कॉम्बिनेशन क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन खेल रहा है। मेरे एज ए क्रिकेटर मैं तो नहीं समझता कि कोई गलत कॉम्बिनेशन है। देखिए, एक आयरलैंड की जो टीम है, अभी नई टीम है, तो उसके अगेंस्ट हर कोच, हर टीम एक चाहती है कि मैं नए प्लेयरों को मौका दूं, उनको उस मौके को वो बनाए। तो यही स्ट्रेटजी इंडिया की टीम की भी रही है।
3: वर्ल्ड कप जीतने के एकदम बाद कैप्टन का बदल जाना और वैभव सूर्यवंशी का इन दोनों मैचेस में ना खिलाना, उसको कैसे देखते हैं?
2: देखिए, वैभव सूर्यवंशी के पास बहुत टाइम है और यंग लड़का है, नो डाउट कि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। तो देखिए, हम अगर उसको बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी जा सकती है ये बात, और उस बच्चे में प्रेशर भी आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि टाइमली अगर वो फीड अप टीम में फीड हो जाएगा तो कोई इसमें बुराई नहीं है। अब शायद देखिए इंग्लैंड के अगेंस्ट उनको चांस मिलेगा ही मिलेगा, वैभव सूर्यवंशी को। जी देखिए, इस टाइम तो वो स्टार बना हुआ है, और मुझे याद है जब हमारा खेलने का टाइम था तो सचिन तेंदुलकर आया था उस टाइम 16 साल में, अब ये बच्चा तो 14 साल में ही आ गया। तो कहीं ना कहीं जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो इसके साथ है, और जो इसने प्रदर्शन आईपीएल में करा है वो काबिले तारीफ था। और ऐसा नहीं कि खाली आईपीएल में, इसने इंडिया ए के लिए भी करा, अभी श्रीलंका में भी करा, इंडिया अंडर 19 में भी इसने 100 रन बनाए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए वो प्लेयर बड़ी फॉर्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जानना चाहूंगा या कहना चाहूंगा आपको कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है ना, उसका एक प्रेशर अलग होता है। जब कंट्री टू कंट्री मैच होते हैं उसका प्रेशर एक अलग होता है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या कितना खरे उतरते हैं वैभव।
1: बिल्कुल। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर बंटू सिंह जी, और इनका कहना है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट होता है तो उसका असर जो है और उसका प्रेशर जो है वो खिलाड़ियों पर अलग होता है। तो प्रतीक, और क्या है खास इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी खबर?
0: जी हाँ, मैं श्रोताओं आपको बता दूं कि बेन स्टोक्स ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर को अलविदा कह देंगे, जो कि बेन स्टोक्स के फैन के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है।
1: और अब बात कर लेते हैं एथलेटिक्स की। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में 24 से 29 जून तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारतीय एथलेटिक्स के लिए ऐतिहासिक साबित हुई, और इस प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे और कई खिलाड़ियों ने एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफिकेशन मानक भी हासिल किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। एनसी सोजन, इन्होंने महिला लंबी कूद में ये उपलब्धि हासिल की, और इनका रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड जो बना है वो 6.88 मीटर का बना है। पुराना रिकॉर्ड था 6.88।

0: की बात करें तो सिंधु श्री जी ने महिला पोल वॉल्ट में भी रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक हासिल किया है। 4.24 मीटर का इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा अगर हम जो एशियाई खेलों में क्वालिफाई करे हैं उनकी अगर बात करें तो वो है सिंधु श्री, इन्होंने महिला पोल वॉल्ट में, देव मीना पुरुष पोल वॉल्ट में, एनसी सोजन महिला लंबी कूद, सर्वेश कुशारे पुरुष ऊंची कूद, ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़, अनुष्का यादव महिला हैमर थ्रो, रोहित यादव पुरुष भाला फेंक, मुरली श्रीशंकर पुरुष लंबी कूद और समरदीप सिंह पुरुष गोला फेंक और विशाल टी के पुरुष 400 मीटर, मनु टी एस पुरुष 400 मीटर। और अब जान लेते हैं हॉकी में क्या है खास।
1: जी हाँ श्रोताओं, हाल ही में समाप्त हुई FIH प्रो लीग में कल यानी 28 जून को लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में भारतीय टीम ने अपने इस अभियान का अंत करा बेहद ही थ्रिलर मैच के साथ। मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया ये मैच निर्धारित समय तक 0-0 की बराबरी पे था, लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ पेनल्टी शूटआउट में, जहां भारत ने इंग्लैंड को 3-2 से मात दी और एक बोनस पॉइंट अपने नाम किया। अगर हम पूरे प्रो लीग सीजन के बारे में भारत की सफ़र पर नज़र डालें तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। भारत ने कुल 16 मैच खेले जिसमें से 4 में सीधी जीत मिली, 5 में ड्रॉ, 7 में हार का सामना करना पड़ा।
0: और अब पेरिस डायमंड लीग की बात कर लेते हैं। पेरिस डायमंड लीग दुनिया के कई दिग्गज एथलीटों का शानदार प्रदर्शन किया, उनमें से कुछ खास प्रदर्शन आपको बताते चलते हैं। पोल वॉल्ट में डुप्लांटिस का दबदबा जारी रहा, स्वीडन के विश्व रिकॉर्डधारी इस खिलाड़ी ने 6.13 मीटर की छलांग लगाकर एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की। वहीं महिलाओं की 800 मीटर रिकॉर्ड बनाया स्विट्जरलैंड की युवा धाविका ऑड्रे वेरो ने, और वो क्या कहती हैं अपने इस रिकॉर्ड पे, आइए सुनते हैं।
2: Yeah, I'm really happy with my performance today. And yes, it was really hard to run at the pace of the world record, but still a really good time at the end. It's not the world record, but I'm still really happy with my time and with my performance today. I think I was a little bit late at the 600 meters passage, so I was a little bit late on the green light. So at this moment, I just tried to catch up the light, but it was hard because, yeah, we cannot have a delay in such a race. So I think for the next time, I can stay more with the light.
0: और इनके अलावा चीन की यान जी जो 18 वर्षीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की जेवलिन स्पर्धा में खिताब अपने नाम किया, गोल्ड मेडल जीता और 67.44 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका और अपने पहले प्रयास में इतने मीटर का थ्रो किया और इस जीत से इन्होंने 2026 डायमंड लीग फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब विंबलडन के लिए चलते हैं प्रतीक के पास।
1: जी हाँ, अब चर्चा करते हैं टेनिस जगत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर प्रतियोगिता की। 1877 में ऑल इंडिया लोन टेनिस के नाम क्लब से शुरू हुई यह प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम इतिहास की पहली और सबसे पारंपरिक प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 22 जून से हुई है और इसके जिसमें आज पहले राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले राउंड में अगर बात करें तो यानिक सिनर हमको देखने को मिलेंगे मियामिर केकोमानोविच के खिलाफ, वहीं डैनियल मेदवेदेव देखने खेलते दिखेंगे मारिन सिलिच के साथ। नोवाक जोकोविच 7 बार के विंबलडन चैंपियन सर्बिया के और चीन के वू यिबिंग से खेलते दिखेंगे, वहीं वर्ल्ड नंबर 2 अरीना साबलंका खेलती दिखेंगी थियोडोरा कोस्तोविक के साथ।
0: और इसके अलावा चलते चलते एक और खास खबर आपको बताते चलते हैं। हमारे पैरा शटर प्रमोद भगत ने ब्रिटिश और आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में पुरुषों के सिंगल्स SL3 में गोल्ड मेडल और मिक्स्ड डबल्स में मनीषा रामदास के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये एक इन्होंने नया कीर्तिमान अपने नाम किया और भारत का नाम रोशन किया। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को और
1: मुझे प्रतीक आनंद को
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संस्कृत सौरभम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इस वक्त रात के 8:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत सुप्रिया जोशी और रवि त्रिपाठी की आवाजों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभर

0: समझौते के अंतर्गत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित

0: भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर

0: मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at defense investiture ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared

0: seeds China in the semi-final. In US Open badminton, Indian shuttler Kidambi Srikanth secured the silver in the men's singles after facing defeat in the final against Su Li Yang of Chinese Taipei. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of Northeast, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज

ने कल मुल्क के शिमाल मशरिकी इलाकों, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में कहीं कहीं शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज शाम मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब के दूसरे मरहले में दिफाई अफवाज और भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते के अहलकारों को बहादुरी एजाजात अता किए। इस मौके

0: उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 56 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स अदा किए। अति विशिष्ट सेवा मेडल पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने और वाइस एडमिरल आनंद वाई सारदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। इसी तरह वाइस एडमिरल संजय वसायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल अदा किए गए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये एजाजात मस्कूरा एहलकारों को उनकी गैरमामूली और नुमाया खिदमात के एतराफ में दिए गए। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका 3 रोजा सेशल्स का दौरा निहायत कामयाब रहा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर उस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत, पायदार तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली से इबारत है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: अपने दौरे के आखिरी दिन जनाब मोदी ने विक्टोरिया के नवाशक्ति विनायकार मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वहां उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने पीस पार्क में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वें योम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी, हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल्स की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम बन गए हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन UPI, ज़राअत, जहाज़रानी, खलाई ताउन, मुलजमान की हवालगी और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। न्यूज़ डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में हुकूमत हिंद की मजमूई सरमायाकारी अब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये इकदाम मुल्क में बुनियादी ढांचे और कौमी अहमियत के हामिल दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। पिछले हफ्ते मरकजी काबीना ने मजकूरा फंड में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी थी ताकि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में सरमायाकारी में तेजी लाई जा सके और मुल्क में घरेलू और बैन अलाक़वामी इदारा जाती सरमायाकारों को रागिब किया जा सके। वजारत खजाना के मुताबिक ये इजाफी रकम सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF के बुनियादी ढांचे पर मरकूज दूसरे फंड के क्याम के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जो साबिका अहम फंड की जगह लेगा। सनअती पैदावार के इशारिये IIP के मुताबिक मई 2026 के दौरान भारत की सनअती पैदावार में सालाना बुनियाद पर 5.1% का इजाफा हुआ। इससे कबल अप्रैल में सनअती पैदावार की शरह नमू 4.9% थी। मई के आदादोशुमार अप्रैल के आदादोशुमार के बाद जारी किए गए हैं, जो कि नए बुनियादी साल 2022-23 के तहत 8.9 तश्कील शुदा IIP सीरीज के पहले आदादोशुमार थे, जिसमें जदीद तरीन मसनूआत की फहरिस्त, वजन और मुख्तलिफ शोबों की ज्यादा जाम शमूलियत शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली ने आज मगरबी बंगाल अवामी तहफ़ और समाजी मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में अमन अमान कायम करने के से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी। मजकूरा बिल की हिमायत में 176 वोट हासिल हुए, जबकि मुखालफत में 41 वोट पड़े। वहीं 20 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के तहत ऐसे अफराद को जिनकी समाज मुखालिफ सरगर्मियों से आवाम की सलामती, अमन अमान और नज्म व नस्क को खतरा लाहक हो सकता हो, उन्हें एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना

0: करना, उन्हें सख्त सजा देना और उनकी साजिशी मंसूबाबंदी को नाकाम बनाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने आज नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तामीर और उस पर अमल दरामद के लिए एक मफाहमत नामे से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उसूल मुजाकिरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहिदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 जेरे जमीन पाइपलाइंस के जरिए यमुना कनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाइपलाइंस से दोनों रियासतों के आवाम को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इस दौरान जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने कहा कि इस मुआहिदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के निजाम के रास्ते बिछाई गई जेरे जमीन पाइपलाइन के जरिए फराहम किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: दिल्ली काबीना ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले 4 साल मरहलेवार रोल आउट के लिए मुकर्रर कसीर जहती फ्रेमवर्क 31 मार्च 2030 तक कौमी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कार्बन के सिफर इखराज की तरफ मुंतकिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े मालियाती अखराजात का अहद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों की कारकर्दगी, जवाबदेही और बरवक्त अमलावरी के लिए DRDO DFP 2026 को मालियाती इख्तियारात का एक वफ जारी किया। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि DFP 2026 दिफाई अफवाज में तहकीक और तरक्की के एक निज़ाम से निकलने वाले निज़ाम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तेज तर पैदावार और शमूलियत में सहूलत फराहम करेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निज़ाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निज़ाम के दरमियान राबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद यूनान के एथेंस में एक आला सतही भारतीय कारोबारी वफ्द की क्यादत कर रहे हैं। जनाब गोयल ने आज यूनान के तरक्यात के वजीर टाकिस थियोडोरी काकोस से मुलाकात की। जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तजारत, सरमायाकारी, सनती तावुन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान इक्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुस से तिजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकिरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकिरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत जलजले के मुतासिर वेनेजुएला में तैनात भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में भारतीय सिफारत खाने ने कहा कि तजुर्बेकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल भारतीय तिब्बी टीम ने कराकस में इंटरनेशनल ला रिंकोनाडा रेस्ट्रेक पर एक कैंप कायम किया है। उसने कहा कि मेडिकल कैंप अब मुकम्मल तौर पर

0: काम कर रहा है और खिदमात 24 घंटे खुली रहती हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शिमाल मशरिकी इलाकों, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे में कल शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 2 रोज के दौरान उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवासाल के अख्ताम तक ICC की मर्दों की T20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अवी क्रिकेट काउंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन T20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। US ओपन बैडमिंटन में भारतीय सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में चीनी ताइपे के सूली यांग से हार गए और उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस हार में BWF के खिताब के लिए श्रीकांत के इंतजार को और बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने 2017 में BWF सुपर सीरीज के दौरान फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी बैन अवी खिताब जीता था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों, जैली हिमालयी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत, विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444।

0: याद रखें इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज़्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं। धर्मवीर जी
2: जी नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए
0: जी।
1: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
0: जी।
1: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
0: दी है।
1: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
0: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते।

0: सकते हैं, और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
1: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूँगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो आरबीआई की लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, तो हमने आरबीआई से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है, और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
0: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्रांट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
0: जी।
1: आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला, ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
0: अच्छा।
1: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपये है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज़ जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है, अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें, ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
0: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
1: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज़ निहित है। दूसरी बात यह कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या एमएसएमईज की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
0: है। जी, हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई हिमाचल प्रदेश।
0: जी
3: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है एमएसएमई के लिए लोन लेना चाहते, तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
0: जी
1: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम रहती है। ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे सीजीटीएमएससी का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
0: जी, मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
4: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्कार,
4: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान।
0: जी,
4: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न हैं कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए, थैंक यू।
1: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं एमएसएमई में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है, और 125 करोड़ मीडियम के लिए। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमईज के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
0: जी, हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन जी।
5: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार।
5: मैम मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं? क्योंकि अगर पहले ही

0: लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
1: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
2: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस लिहाज से?
1: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 MSMEs हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से MSMEs थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, MSME एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि MSME सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि MSMEs जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट हैं, और काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर SMA 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो SMA 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो SMA 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो NPA करार दिया जाता
2: है। और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
1: देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है वो भी काफ़ी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाती
2: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
3: संजीव मैडम जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनको भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे MSME होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं, तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेज
1: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है,

0: तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनके अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफ़ी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
2: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
2: जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं, और हमारे MSMEs जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि MSMEs की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि RBI रेगुलेटेड है, तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो हैं वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है। और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज़ है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800-1806-7-6-3 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
3: हेलो
1: जी। हाँ, अपना सवाल पूछे।
3: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
3: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
3: अच्छा, एक्चुअली में हमारा ना बुटीक है
1: जी
3: सिलाई का, तो उसमें हमारे पे 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है?
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे मैंने बताया

0: हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे एमएसएमईज को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सकें, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाएँ बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी एपीआई बैकिंग है, जिसके अंदर हम जीएसटी, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहाँ पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: चाहते चाहते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को 15,000 रुपये का टूल किट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी,
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

0: पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रख रखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का बुधवार को अनंतपुरम स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने कल रात अफगानिस्तान सीमा के पास हवाई हमले किए। इनमें पक्तिका और कुनार प्रांतों के इलाकों को निशाना बनाया गया। अफगान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिक मारे गए और 163 अन्य घायल हो गए। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister

खुमार बारा बंकवी एक मशहूर शायर और उनकी ये बहुत मशहूर गज़ल की सदी का मज़ा हमसे पूछिए। और ये अब जो आप अगली गज़ल सुनेंगे ये इस कार्यक्रम की आखिरी गज़ल होगी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज आप सुनेंगे सरोद वादन पंडित प्रभात कुमार से। राग है पहाड़ी झंझूटी। तबले पर संगत दे रहे हैं श्री प्रदीप सरकार।

0: अभी आपने राग रंजन कार्यक्रम के अंतर्गत सुना सरोद वादन पंडित प्रभात कुमार से, और अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को

0: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included

दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नजर आता है मुझे। रात का वक्त है, सूरज है मेरा रहनुमा, रात का वक्त है, सूरज है मेरा रहनुमा, देर से दूर से ये कौन बुलाता है मुझे। मेरी इन आँखों को ख्वाबों से परेशानी है, मेरी इन आँखों को ख्वाबों से परेशानी है, नींद के नाम से जो हौल सा आता है मुझे। दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स पे क्या क्या नज़र आता है मुझे। जी तसव्वुर है, ख्यालात हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसान की आंखों पर एक अलग सा रंगीन चश्मा चढ़ा देती हैं। पर्दा कहूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, चश्मा इसलिए कि आर पार कुछ कुछ दिखता है, कभी कुछ धुंधला, कभी कुछ बहुत साफ, और कभी ऐसा कि देखने को जीना चाहे, और कभी ऐसा भी कि बस आँख की पलक झपके नहीं और मुसलसल लगातार आप बस देखते चले जाएं।

जी, किसी किसी का जाना सिर्फ जाना नहीं होता, और उसके जाने के बाद ये जानना और भी मुश्किल हो जाता है कि वो सिर्फ खुद नहीं गया है, वो अपने साथ अपने पास आपकी बहुत सारी चीज़ें ले गया है। और मज़े की बात यह है कि जो आपकी सारी चीज़ें गई हैं वो आपकी ही दिल की चादर में लपेट कर अपने साथ ले गया है। उसमें आपका सुकून, आपका चैन, आपकी नींद, आपके ख्वाब, आपके एहसास, हर चीज़ वो उस पोटली में बांध कर ले गया है। अब वो दिल की जगह खाली हो गई है, वो कभी बहुत ज़ोर से धड़कती है तो आवाज़ आती है, कभी वो मध्यम पड़ जाती है तो खामोशी सी छाने लगती है, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ कोई हलचल नहीं होती।

जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ तलत। तो शुरुआत करते हैं उन मैसेजेस की जो हम तक पहुंच चुके हैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी और अभी तक लगातार आ रहे हैं। आपकी इस बेशुमार मोहब्बत के लिए और इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास मैसेज आया है इशरत खान का और आपने हमें कहा है कि कोई भी गीत सुनवा दें। यासीन अनजान हमें मैसेज कर रहे हैं और आपने गीत सुनना चाहा है तो पूरी कोशिश रहेगी। इसके साथ साथ मैसेज है विजय चौहान का हमारे पास और आप हमें शाहपुर से मैसेज कर रहे हैं। नारायण खर्चे जी आज भी बिल्कुल पुरजोश तरीके से लगे हुए हैं हमें मैसेजेस करने में। आपके साथ हैं पूजा नंदिनी और बबीता रघुवंशी। आप हमें इंदौर से मैसेज कर रहे हैं, लगातार आप बहुत सारे मैसेज करते हैं। किशन सबकल हमें मैसेज कर रहे हैं और आपकी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है किशन जी। आकांक्षी पाहवा ने हमें मैसेज किया है और साथ साथ मैसेज आया है हमारे पास मल्होत्रा टीडी का और आप हमें मोहाली से मैसेज कर रहे हैं। एक और मैसेज है हमारे पास और ये मैसेज जो हम तक पहुंचा है ये है गगनदीप थांडी जी का और कमल का हमारे पास मैसेज आया है। महेंद्र प्रसाद मोदी जी ने हमें मैसेज किया है और संजय साहू पोटिया कला ने हमें मैसेज किया है। दुर्ग से आप हमें मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं शशांक साहू। स्वर्ण सिंह ने हमें मैसेज किया है ठाकुरावाला से, आपके साथ हैं दिलजीत सिंह और राजदीप सिंह। सुदर्शन शाह का भी हमारे पास मैसेज पहुंच चुका है, आप चाहते हैं गीत सुनना तो जनाब पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए। पटेल नगर मलोट से हमें मैसेज कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया और सुदर्शन मुखी ने हमें मैसेज किया है, आपके साथ हैं अनीता सिमरन और आप शांति नगर सोनीपत से मैसेज कर रहे हैं। अकरम हुसैन सीतामढ़ी बिहार से हमें मैसेज कर रहे हैं और चंडीगढ़ से हमें मैसेज मिला है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा का। अनिल कुमार गंवानकर जी का भी हमारे पास मैसेज आ चुका है। हरजिंदर शिंदा जी ने हमें मैसेज किया है पंजाब से और जसवीर जस्सी आपके साथ हैं। नंदकिशोर घाटे जी ने भी हमें बहुत अच्छा सा मैसेज कर दिया है, एक अच्छे से गीत की फरमाइश की है। मुझे लगता है बहुत सारे नाम ले लिए हैं, अब एक बहुत खूबसूरत सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

जी, कभी कभी दिल कहीं लगता नहीं है, और फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं आपकी लिस्ट में जहां पर आपका दिल पहले कभी लगा करता था, लेकिन अब उस दिल ने अपना ठिकाना कहीं और ही बना लिया होता है, और वो कहीं भी लगने और चिपकने को तैयार ही नहीं होता। मैसेज हमारे पास आया है नंद किशोर घाटे जी का, और आप महाराष्ट्र से हमें मैसेज कर रहे हैं। राजकुमार डूडी ने हमें

मैसेज किया है फ्रांसी हिसार से, माफ कीजिएगा हिसार से आप हमें मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार। राजेश वर्मा का मैसेज है हमारे पास उत्तर प्रदेश से। फागुराम यादव ने हमें मैसेज किया है और इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है सतीश अनेजा का, और बहुत शुक्रिया कि आप हमें प्रोग्राम में खैर मकदम कर रहे हैं, ये आपकी बड़ी बात है। आप लोगों का हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में कि आप लोग शामिल हों, अपनी पसंद के गीत ज़रूर ज़रूर सुने। अनिल मोहन ने हमें मैसेज किया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। सतेंद्र जी ने हमें मैसेज किया है जालौन से, और दिग्दर्शन गौड़ ने हमें मैसेज किया है आपके साथ हैं कविता गौड़। दीपेश वर्मा का मैसेज है छत्तीसगढ़ से, और सिराज अहमद कह रहे हैं कि सूरज के साथ साथ ये प्रोग्राम है, और सूरज तो नहीं, अब तो ये चांद का वक्त है तो सूरज की तो बात अलग है। साथ में हमारे पास मैसेज आया भूषण खेरा का, और अहमद फूलवाले ने हमें मैसेज किया है आपकी बेशुमार दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमें मैसेज मिला है पीएस नवहानकर का, और आपने गीत की फरमाइश की है। सोम दत्त ने हमें मैसेज किया है पटियाला पंजाब से, आपके साथ हैं कौरव ज्योति रानी और गुरमंत कौर। शिषपाल ने हमें मैसेज किया है और आप एक गीत का सुनने की ख्वाहिशमंद हैं, आप हमें गाज़ियाबाद से मैसेज कर रहे हैं। संतोष नामदेव ने हमें मैसेज किया है और आपकी फरमाइश उम्मीद है कि आपने सुन ली होगी। हिमकेश्वर साहू ने हमें मैसेज किया है, और साथ साथ मैसेज आया है हमारे पास गोविंद वैष्णव जी का भी। तो सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत जो है फिल्म उत्सव से।

कुछ गीत बिल्कुल आखिर तक सुनने में ही मज़ा आता है, ऐसा ही ये गीत है कि आखिरी सेकंड तक इसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और बात कितनी सच्ची और अच्छी है कि आधी रात जो है, जो कि अब कुछ लगभग 16 मिनट बाद होने वाली है, यानी कि 12 बज जाएंगे, तो दिन की आधा जो वक्त है वो एक तरह से कहा जाए तो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक दिन की शुरुआत हो जाएगी 12 बजकर कुछ सेकंड बाद ही। सोच पर डिपेंड करता है कि आप किसको आधा और किसको शुरू समझ रहे हैं, और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं सिचुएशन पर भी कि आप उस वक्त किस सिचुएशन में हैं, आप उस पहर क्या सोच रहे हैं, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, उसी के हिसाब से आप दिन को आधा या फिर पूरा या फिर शुरुआत मान लेते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं। हमारे पास खिटौनी से मैसेज है, साबिर हुसैन, अमीना बेगम और तबस्सुम तरन्नुम तराना हिना सीमा का, और आपके साथ हैं मुकेश भट्टा, और आप हमें मोहल्ला पटियाला से मैसेज कर रहे हैं। बिट्टू गगनेजा ने हमें मैसेज किया है जलालाबाद वेस्ट से। प्रकाश वर्मा का हमारे पास मैसेज आया है और बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश की है, पूरी कोशिश रहेगी। फरमाइशें सारी ही बहुत अच्छी हमारे पास आती हैं और तभी हमारे प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा वैरायटी हो जाती है कि आप अलग अलग एरा के, अलग अलग फिल्मों के और अलग अलग जॉनर के गीत सुन पाते हैं। भगवत वर्मा ने हमें मैसेज किया है, आपके साथ हैं शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। इसके साथ राजपाल शर्मा ने हमें मैसेज कर दिया है, दारा सिंह चौटाला से हमें मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। सतीश जी ने आज हमें लगातार कई बार मैसेज कर लिया है, और मैसेज हमारे पास आया है सुखविंदर सिंह जौड़ा जी का, आपके साथ हैं सिटी दीवान, और दिनेश वर्मा ने हमें मैसेज किया है, ये भी बहुत खूबसूरत गीत है। और मैसेज है हमारे पास अश्वनी चुग का, आप हमें पंचकुला से सुन रहे हैं, और आपने कहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको बहुत पसंद आता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी कि आपने कार्यक्रम सुना, पसंद किया और हमें मैसेज करके बताया भी। उत्तम नगर दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं बोधराज कुरवाल जी। सिद्धार्थ कुंडानी जी ने हमें मैसेज किया है और आप ये गीत सुनना चाहते हैं। जावेद अख्तर ने हमें मैसेज किया है और आपने कहा है कि किसी भी गीत में हम आपको शामिल कर लें, तो लीजिए आप शामिल हो गए हमारे हर एक गीत में। हाजी मज़र ने हमें मैसेज किया है और आपने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें, और इसी के साथ अब सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत।

और अब लगभग हमारे पास 10 मिनट बचे हैं इस कार्यक्रम के खात्मे की तरफ बढ़ते हुए, और अगला मैसेज जो हमारे पास पहुंचा है वो है बसंत कुमार सिन्हा जी का, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे गीतों की फरमाइश हम तक पहुंची है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे बोलना कम चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोली तो फिर वो सारे नगमे रह जाएंगे।

और हमारे पास एक मैसेज आया है, हमारे बहुत ही करीब से लिखने वाले ने कहा है कि आपके बहुत करीब से हम मैसेज कर रहे हैं, और लिखने वाली हैं उषा मोहन, आपका कार्यक्रम पसंद आ रहा है, मैसेज भी किया और बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी करीब होने का और भी शुक्रिया। इसके साथ हमारे पास मैसेज आया है इंद्रभान सिंह का, आप हमें मैसेज कर रहे हैं चिरमिरी कुरासिया कलारी से, आपके साथ आपके साथी भी हमें सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया कि आपने कार्यक्रम को पसंद किया, हमें मैसेज किया और आप सुनते हैं आकाशवाणी। आपसे ये रिक्वेस्ट भी है, ये गुजारिश भी है कि आप आकाशवाणी ज़रूर सुनते रहिए, क्योंकि आकाशवाणी एक वो जगह है जहां आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद शायद कहीं और नहीं होंगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सच्चाई है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़िलहाल मुझे यानी तलत को दीजिए इजाज़त।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं।

संरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में टेक्सास में ब्राजील और जापान के बीच कांटे का मुकाबला जारी है। मैच में जापान ने 1 गोल की शुरुआती बढ़त ले ली, लेकिन हाफ टाइम के बाद ब्राजील ने बराबरी का गोल दागकर मैच में अभी 1-1 गोल की बराबरी कर ली है। इस नॉकआउट मुकाबले में पराजित होने वाली टीम विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 12:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम सुरों के सफरनामा का और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। लाई हूँ आपके लिए बेहतरीन सुरों का खजाना और कार्यक्रम का आगाज़ उस खूबसूरत सी आवाज़ के साथ जिसका आप लगाइए अंदाज़ा कि आज कौन है हमारे सुरों के सफ़रनामा के सरताज।

दोस्तों रात का मदहोश समय है, पलकें भारी होने लगी हैं और शहर खामोश हो रहा है, लेकिन आपके दिल में किसी कोने में पुरानी यादें अगर अभी जाग रही हैं तो जी हाँ, जुड़ जाइए आपके साथ, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ आज आपकी अमनवा, आपकी दोस्त आज सरिता, लेकर आई हूँ आपके लिए मनपसंद शो सुरों का सफरनामा। आज की रात बहुत खास है दोस्तों, और ये जो खूबसूरत सा गीत

गीत जिससे हमने कार्यक्रम का आगाज किया, आप समझ ही चुके होंगे कि आज शुरू के सफरनामा की कौन है सरताज। जी हाँ, कुमार सानू, ये वो आवाज़ जो हर दिल अजीज है। जब रात इतनी गहरी हो तो दिल सिर्फ एक ही आवाज़ को सुनना चाहता है, और वो आवाज़ जिसने हमें 90 के दशक में मोहब्बत करना सिखाया, वो आवाज़ जो आज भी हमारे दिलों की धड़कनों को बढ़ा देती है। जी हाँ, आज की रात हमारी और आपकी तन्हाई को खूबसूरत बनाने आ रहे हैं द किंग ऑफ मेलेडी, कुमार सानू। तो डूब जाइए इस सुरीले सफ़र में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम शुरू 1990 की उस फिल्म से जिसने आशिकों को एक नया ठिकाना दिया। लेकिन उससे पहले बात करें अगर हम कुमार सानू की, तो उनका जन्म कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनका झुकाव संगीत की तरफ बचपन से ही था, क्योंकि उनके पिता पशुपति भट्टाचार्य खुद एक जाने माने वोकलिस्ट थे और साथ ही साथ म्यूजिक कंपोजर भी थे। पिता ने ही सानू दा को शास्त्रीय संगीत और तबला बजाने की शुरुआती तालीम दी। और हम जब बात कर रहे थे, अभी हमने जिक्र किया था 1990 के दशक का, तो हम इस गीत को कैसे भूल सकते हैं। आइए एक संगीत में विराम लेते हैं, और उस संगीत में विराम के उस पार हम आज बात करेंगे सुरों के सफरनामा में कुमार सानू की।

दोस्तों, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपने ईमेल्स के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, कुमार सानू के खूबसूरत गीत के साथ साथ अगर आपका साथ भी हमारे साथ हो तो क्या बात है।

क्या बात है, सांसों की ज़रूरत है जैसी, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। दोस्तों, कुमार सानू दा की आवाज़ में वो कशिश है जो सीधी हमारी रूह तक पहुंच जाती है। पता है दोस्तों, जब 1990 में ये गाना आया था ना, तो सानू दा ने बैक टू बैक 5 साल फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा था। उनकी आवाज़ में वो दर्द भी था, वो सुकून भी था, जो उस वक्त आधी रात को हमारे अकेलेपन को सबसे ज़्यादा हमारा साथी महसूस होता था। चलिए, यादों के सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको भी अपनी पहली मोहब्बत की याद आ रही है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं आप। जी हाँ, अपने ईमेल के ज़रिए भी अपनी पहली मोहब्बत के बारे में हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iprradio@gmail.com। जी हाँ, ये वो माध्यम है जिसके ज़रिए जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। तो आप जल्दी से ईमेल टाइप कीजिए, साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और जानते तो हैं ही आप, आज जो हमारा सिलसिला चला है कुमार सानू के गीतों का, तो आप मेल हम तक पहुँचाइए। तब तक एक खूबसूरत सा गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज सरिता के साथ। और आज की जो हमारी रात है वो सच रही है कुमार सानू की आवाज के साथ। खूबसूरत गीत, खूबसूरत पेशकश। जी हाँ, अब हम आपको लिए चलते हैं एक और खूबसूरत से गीत की तरफ जो हर दिल को पसंद आएगा। जी हाँ, खूबसूरत सा गीत है ये, रात के सन्नाटे को और गहरा करता हुआ। कुमार सानू की आवाज़ का जो जादू था वो इतना नशीला था कि कोई उस नशे से दूर नहीं जा सकता था। ऐसा करते हैं, एक और संगीत में विराम लेते हैं और गीत के उस पार हम बात करेंगे कुमार सानू की।

दोस्तों आप बात कर रहे हैं हम सुरों के सफरनामा में कुमार सानू की, और अब आपको ले चलती हूँ मैं 1993 की एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसके गाने आज भी हर टूट

दिल की दवा है। फिल्म का नाम है बाजीगर और जहां अदाकारी हो शाहरुख खान की, अंदाज हो शाहरुख खान का और सानू दा की आवाज़। जी हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है ये उस ज़माने का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हुआ करता था। और ऐसा करते हैं, बाजीगर फिल्म का ही अगला गीत सुनते हैं। इस खूबसूरत से गीत को सुनिए और खो जाइए, जी हाँ, सानू दा की आवाज़ में।

दोस्तों, रात का सन्नाटा और गहरा हो गया है और कुमार सानू दा का जादू और भी नशीला। सानुदा का सफ़र, जब हम बात ही कर रहे हैं सानुदा के सफ़र की और एक फिल्म का जिक्र ना हो, उस फिल्म का नाम हो 1942 अ लव स्टोरी। जी हाँ, बहुत बेमानी हो जाएगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उन पर आधारित कार्यक्रम हो और इस फिल्म के गीत को ना शामिल किया जाए। आर डी बर्मन यानी कि पंचम दा का आखिरी म्यूजिकल एल्बम, और उस एल्बम में कुमार सानू की मखमली आवाज। कहते हैं जब सानू दा ने इस फिल्म का गाना रिकॉर्ड किया तो पंचम दा ने उन्हें कहा, तुमने इस गाने में वो पार्ट डाल दी है जो मैं चाहता था। दोस्तों, आइए उसी गर्माहट को हम महसूस करते हैं इस लाजवाब नगमे के साथ।

दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम तो नहीं है, कभी कभी मोहब्बत में जुदाई भी होती है, अधूरापन भी होता है, और जब दिल टूटता है तो सानुदा की आवाज़ हमारे आंसू पोंछने आ जाती है। जी हाँ, उनके बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमारे गम के साथी बनते हैं।

दोस्तों, चमक दमक की दुनिया से दूर कुमार सानू के एक अनछुए पहलू से आपको हम रूबरू कराएं। जी हाँ, वो पहलू है उनकी समाज सेवा। वो कोलकाता में कुमार सानू विद्या निकेतन नाम के का जो गरीबों के जो वंचित और गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल चलाते हैं और इस स्कूल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म दी जाती हैं और ये सब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं सानुदा। सानुदा अक्सर इस स्कूल का दौरा भी करते हैं, बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। कहते हैं ना कि जो इंसान दिल से जितना सच्चा होता है उसकी आवाज़ में उतना ही दर्द, उतनी ही मेलोडी होती है। सानुदा ने अपनी ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब भी वो माइक के सामने खड़े हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटा। और दोस्तों, फिलहाल तो वक्त का पता ही नहीं चला है और रात के 1 बजने को आए हैं। अब घड़ी की सुइयाँ मुझे इशारा कर रही हैं कि सरिता अपने श्रोताओं से विदा लेने का वक्त आ गया है। आज की रात कुमार सानुदा के गानों के साथ बेहद खूबसूरत गुजरी और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आई होगी। फिर आपसे यही मुलाकात का वादा करते हैं हम

कि सुरों का सफरनामा किसी नए फसाने और पुरानी यादों के साथ हम फिर मिलेंगे। और फिलहाल एक खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। स्टूडियो की घड़ी में रात 1 बजने को है। आप समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय

इस विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि यह समिति शादी, तलाक और गोद लेने जैसे कुल 9 विषयों पर अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच देर रात 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लाते हैं वो खूबसूरत सदाबहार गीत जो कभी पुराने होते ही नहीं। और आज अपने गीतों का पिटारा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत के साथ। आवाजें लता मंगेशकर की हैं और साथ ही साथ मुकेश कुमार की। गीतकार इंदिवर हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म प्यार का मौसम से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरूर सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म किस्मत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर की और गीतकार हैं नूर देवासी। संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। गीतकार हैं प्रकाश मेहरा और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: में सनम हम गम तेरे और दिल पर सोनिए।
1: खूबसूरत गीतों की लड़ी में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है दो कलिया, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीत यह है रवि ने।

0: लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।
1: कभी हम

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

तुमसे अच्छा। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है प्रिंस, आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है आदमी और इंसान। आवाज़ें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। संगीत दिया है रवि ने।

0: गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त, नमस्कार, लेकिन जुड़े रहिए एआर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल के साथ, क्योंकि आपसे थोड़ी देर में ठीक 2 बजे पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेज़ी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्य के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान कानून के पालन के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार संहिता तैयार करेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी

0: गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को एक मुकाबले के 2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals are awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of the armed forces, were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 60,000 crore rupees. This undertaking shows the centre's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyse institutional capital into the country. The Ministry of Women and Child Development convened the 3rd preparatory meeting of the BRICS Women Track under India's BRICS chairship virtually in New Delhi yesterday. The meeting focused on advancing discussions on the priority areas and the key outcomes, including the digital repository of best practices and the BRICS Women's Capacity Building Guidelines. During the event, BRICS member countries shared their valuable inputs and reaffirmed their commitment to collaborative and consensus-based outcomes. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi yesterday. The launch includes Arogya Setu 2.0, Ayushman Sarathi chatbot, Ayushman app, eSushrut clinic, National Health Claims Exchange and health standards to strengthen India's digital public infrastructure for health. The Health Minister also addressed the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi yesterday.
2: Applications launch is going to play a very important role. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many new initiatives have taken place in the past 12 years. The National Health Authority and PM Jai Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has expanded the health facility and made it accessible and affordable throughout the length.

0: जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखिए ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत पहाड़, नॉनस्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और

जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई इस गज़ल के बाद लीजिए, एक बार फिर से सुनिए जगजीत सिंह को इस गज़ल में, देर लगी आने।

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

खूबसूरत सी गज़ल के बाद लीजिए, अब आपके लिए पेश है शशि लता विक्र की आवाज़ में ये गज़ल, जिंदगी किस मकाम से गुजरी।

गजलों के बाद लीजिए, अब सुनिए कर्नाटक संगीत का ये कार्यक्रम।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनूरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं TV मणिकंदन। आपने प्रस्तुत किया है रागम पूर्वी कल्याणी जो आदि ताल में निबद्ध है। संगीत दिया है रामानंद श्रीनिवास अयंकर ने और मृदंगम प्रसाद दिया है N पद्मनाभन और वलन पर G राघवेंद्र ने। तो लीजिए सुनिए TV मणिकंदन का गाया रागम पूर्वी कल्याणी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टीवी मणिकंदन का गाया रागम पूर्वी कल्याणी, जो आदिताल में निबद्ध था। संगीत दिया था रामानंद श्रीनिवास अयंकर ने और मृदंगम प्रसाद दिया था एन पद्मनाभन ने और वालन प्रसाद दिया था जी राघवेंद्र ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीत का और 5:30 सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे चंद्रिमा मजुमदार का सरोद वादन, आप सुनेंगे राग भटियार।

पर 10 मिनट का समय रहेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का चिंतन सुनिएगा 6:40 पर। आज आप सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत के विचार। 6:45 का समय रहेगा रामचरित मानस से पाठ का। आज प्रस्तुत होगा बालकांड का भाग 102। 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुबह 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। इसके अंतर्गत आज शब्द प्रसारित किए जाएंगे बलजीत सिंह की आवाज में। 7:30 समय रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे स्मित तिवारी का सरोदवादन। आज आप सुन सकेंगे राग अहीर भैरव। नौ बजकर 15 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आज का विषय रहेगा मॉलिक्यूलर आणविक ऑन्कोलॉजी में वैज्ञानिक प्रगति। 9:30 मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। प्रस्तुत करेंगी इंद्रप्रीत कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 11:10 पर सबरिस प्रसारित किया जाएगा और 11:30 सुनिएगा हिंदुस्तान

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोपाल सिंह का गिटार पर बजाया राग तोड़ी। साथियों, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल के समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का भी दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारे कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।